शुभ सवेरा, नमस्कार। ९०.८ मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। आज सुबह सवेरे हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, आज मंगलवार है, विक्रम संवत 2083 के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सातवीं तिथि और शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तीसवीं तिथि, तदनुसार 21 जुलाई सन 2026। इस समय 7:04 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आनंददायी हो, यही कामना आप सबके लिए हमारी।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, मानसून तो देश में आ चुका, लेकिन हमारे आसपास बारिश की कुछ कमी महसूस हो रही थी। लेकिन आज सुबह सवेरे बारिश की बूंदें कुछ यूं मुस्कुराईं कि धरती खिल उठी, महक उठी। जी हाँ, रिमझिम बारिश की फुहारें इस वक्त पड़ रही हैं और इसका आनंद भी आप ले रहे होंगे। अगर आप जाग चुके हैं तो जाहिर सी बात है। तो इस खूबसूरत से मौसम में अपना ख्याल रखिएगा और पानी की बर्बादी को भी रोकिएगा। और पानी के महत्व को तो पानी ने खुद ही समझा दिया है, इसे ज़रूर समझें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ बढ़ें, जल संरक्षण करें। तो ये तो मॉनसून में हमारा आपसे एक वादा ज़रूर लेने का रहता है कि भाई हम आपसे वादा लें कि आप ज़रूर जल संरक्षण करेंगे। इसके अलावा आज का जो दिन है वो राष्ट्रीय जंक फूड दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जाहिर सी बात है, बारिश के आते ही कुछ चटपटा खाने का मन तो करता ही है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। कभी कभी हमें कुछ स्वादिष्ट और थोड़ा शरारती खाने का मन ज़रूर होता है, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य पर कैसा असर करेगा इसका ख्याल रखें। ध्यान रखें कि जो भोजन है वो आपके शरीर को बनाने के लिए हो, शरीर को स्वस्थ करने के लिए हो, न कि उसे बीमार करने के लिए हो। और जंक फूड जो है उसमें कैलोरीज इतनी होती हैं, इतना फैट होता है, और बाहर की चीज़ें जब भी आप खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें किस तरह का तेल प्रयोग में लाया गया है ये भी आप नहीं जान पाते हैं। तो बहुत सी बातें हैं जो आपको नुकसान कर सकती हैं, और बारिश के मौसम में तो विशेष रूप से बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। ताज़ा खाना खाइए, घर पर बना खाना खाइए, और जो भी आपको इच्छा हो रही है कि कुछ स्वादिष्ट खा लें, कुछ चटपटा खा लें, वो खुद घर पर बना कर खाइए, जंक फूड की तरफ ना जाएं। क्योंकि जंक फूड आपको बीमार करता है, आपका वज़न बढ़ाता है और बहुत तरह से हानिकारक है। और ख़ास तौर पर आजकल जो बच्चे हैं उनका रुझान इस ओर बहुत ज़्यादा हुआ है, तो माता पिता की ये जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को समझाएं भी, और साथ में घर में जो आपकी रसोई है उसे कुछ इस तरह से प्लान करें, कुछ इस तरह से अपने घर में व्यंजन आप बनाएं कि बच्चे बाहर के खाने की तरफ ना मुड़ें। तो ये तो था आज के दिन का संदेश। और अब आपको बता दें कि क्या कुछ खास लेकर हम उपस्थित हुए हैं आज की इस प्रसारण सभा में। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ, उसके बाद अक्षय निधि, और फिर भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा। वतन का राग कार्यक्रम में सुबह 8 बजे हम बात करेंगे डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी की। प्रकृति की पुकार कार्यक्रम में सुबह 8:30 बजे हमारी चर्चा होगी प्रकृति और मनोविज्ञान पर। योग संवाद कार्यक्रम 9 बजे प्रसारित होगा। आज की चर्चा का विषय श्री राम द्वारा तत्वगान उपदेश हेतु प्रार्थना। विशेष कार्यक्रम में कलापिनी कोमकली का भक्ति गायन सुनिएगा सुबह 9:30 बजे। 10 बजे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा। 10:30 बजे हिंदुस्तान हमारा कार्यक्रम में आप सुनेंगे आज़ाद हिंद फौज पर केंद्रित कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे सुबह 11 बजे, और इसमें बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता आनंद आपको जानकारी देंगी कि जंक फूड से किस तरह के नुकसान होते हैं। और 11:30 बजे सुनिएगा धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। खूबसूरत सा मौसम है, रिमझिम बारिश है, और आपके साथ हमारा ये सफ़र सुबह सवेरे शुरू हो चुका है। हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे बातें करते चलेंगे, आपको बहुत से कार्यक्रम सुनवाएंगे, और आप अपने काम करते हुए रेडियो का आनंद लेते रहिए। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ।
2: जीवन सौरभ।
3: रामायण की घटना है। श्री राम जी का राज्याभिषेक होना था। श्री राम भी ये बात जानते थे। घोषणा उनके पिता दशरथ जी ने की थी, तो इसके बदलने की संभावना भी नहीं थी। सब कुछ ठीक था। राज्याभिषेक से पहले वाली रात केकई ने मंथरा की संगत की। मंथरा ने अपनी बातों में केकई को उलझा लिया, भरत को राजपाट देने और राम भगवान को वनवास भेजने के लिए तैयार कर लिया। केकई ने दशरथ जी से ये दो वर मांग लिए और अपनी इच्छाएं पूरी करवा ली। दशरथ जी ने जब भगवान राम को बुलवाया और ये बातें बताई, तो वे धैर्य के साथ सारी बातें सुनते रहे। पिता के वचन को पूरा करने के लिए भगवान राम वनवास जाने के लिए वहां से चल दिए। उस समय दशरथ जी ने केकई से कहा, तुम राम को वनवास जाने से रोक लो। इसने जीवन में कभी भी धैर्य नहीं खोया है। ये हर काम शांति से ही करते हैं। अगर तुम ये सोच रही हो कि वनवास भेजकर राम को कोई सजा दे रही हो, तो ये सोच गलत है। राम किसी से कोई शिकायत नहीं करेगा और चुपचाप वन में चला जाएगा। राम जैसे लोग कभी विचलित नहीं होते हैं। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसका पिता हूँ, बल्कि मैं राम को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए ये बातें कह रहा हूँ। हुआ भी ऐसा ही। भगवान राम पूरी सहजता के साथ वनवास चले गए। यहाँ श्री राम ने ये सीख दी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हो। कभी कभी जैसी हमारी सोच होती है वैसा नहीं होता, बल्कि उल्टा ही हो जाता है। ऐसे हालात में भी धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए, यही धैर्यवान इंसान की निशानी है।
2: जीवन सौरभ।

0: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीवन सौरभ। धीरज पर एक छोटा सा प्रसंग आपने सुना। उम्मीद है इस प्रसंग की रोशनी आपको भीतर तक आलोकित करेगी। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। ये है रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज।
1: जी भर के देखा न कुछ।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम अक्षय निधि का। हमारे वेद पुराण में जो ज्ञान दिया गया है, अब वो मन उसे पढ़ने का, उसे आत्मसात करने का हमें समय नहीं होता, तो अक्षय निधि है ये। यही अक्षय निधि हम आप तक पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का अंक।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 169 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा वरुणी, देवता हैं इंद्र, छंद है त्रिष्टुप और चतुष्पदा विराट।
2: महश्चित्वमिंद्र यत एतान महश्चिदसि त्यजसो वरुता स नो वेधो मरुताम चिकित्वान सुम्ना वनुष्व तव हि प्रेष्ठा। हे इंद्रदेव, आप महान देवताओं के एवं त्याग की प्रतिमूर्ति मरुदगणों के भी संरक्षक हैं। हे ज्ञान संपन्न इंद्रदेव, आप हमसे परिचित हैं, अतः मरुदगणों और अपनी प्रिय सामग्री हमें प्रदान करें। अयुज्रंत इंद्र विश्व कृष्टीर विदानासो निष्दो मर्यत्रा मरुताम प्रत्सुतिर हासमाना स्वर्मीडहस्य प्रधनस्य सातौ। हे इंद्रदेव, जिन मरुदगणों की सेना युद्ध के प्रारंभ होने पर विशेष हर्षित होती हुई सुख की अनुभूति करती है, शत्रुओं को दूर भगाने वाले वे संपूर्ण मनुष्यों के ज्ञाता मरुदगण सर्वोत्तम आपका ही सहयोग करते हैं। अम्यक्सा त इंद्र ऋषिष्ट रस्मे सनेम्य भुवं मरुतो जुनन्ति अग्निश्चिदद्धि स्मातसे सुसुक्वानापो न द्वीपं दधति प्रयांसि। हे इंद्रदेव, आपके द्वारा सृजित हमें उपलब्ध हो, ये मरुदगण सदैव जल वृष्टि करते हैं। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ को और जल द्वीप को धारण करता है, उसी प्रकार मरुदगण अन्न अर्थात पोषण प्रदान करते हैं। त्वं तू न इंद्र तम रईम दा ओजिष्ठया दक्षिणयेव रातिम स्तुतश्च यास्ते चकनंत वायोः स्तनम न मध्वः पीपयंत वाजैः। हे इंद्रदेव, मधुर दूध से जिस प्रकार स्तन परिपुष्ट होते हैं, वैसे ही हमारी स्तोत्र वाणियों से प्रसन्न होकर आप अभीष्ट अन्नादि से हमें परिपुष्ट करें। दक्षिणा में प्राप्त धन की तरह ही हमें धन संपदाओं से संपन्न बनाएं। त्वे राय इंद्र तोषतमाह प्रणेतारह कस्य चिद्रितायोः ते शूणो मरुतो मृणयन्तु ये स्मा पुरा गातु यन्तीव देवाः। हे इंद्रदेव, आपके पास ऐसी धन संपदा है जो यजमानों को संतुष्ट करके उन्हें यज्ञीय सत्कर्मों की ओर प्रेरित करती है। हे इंद्रदेव, जो मरुदगण प्राचीन काल से ही यज्ञीय सत्कर्मों के पूर्वाभ्यासी हैं, वे हमें सुख सौभाग्य प्रदान करें। प्रतिप्रयाहीन्द्र मीडहुषो नृन्महः पार्थिवे सदने यतस्व अधयदेशाम पृथुबुध्नास एतास्तीर्थे नारियः पौंस्यानि तस्थुः। हे इंद्रदेव, आप व्यापक स्तर पर जल वृष्टि के लिए अग्रणी मरुदगणों के समीप जाएं और उनके साथ मिलकर भूमंडल में पराक्रम का परिचय दें। युद्ध में पराक्रम करने के समान मरुत के अश्व आक्रमण करते हैं। प्रति घोराणामेतानामयासाम मरुताम श्रृण्व आयता मुपब्धिः ये मर्त्यम प्रतनायन्त मूमैर्कृणावानम न पतयन्त सर्गैः। जिस प्रकार ऋणी मनुष्य को अपराधी मानकर दंडित किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रदेव के सहयोगी मरुदगण भी युद्धाकांक्षी असुरों को शस्त्रों के प्रहार से जकड़कर जमीन पर पटक देते हैं। तब भयंकर शीघ्र गमनशील आक्रमणकारी और शत्रुओं को घेरने वाले इन मरुतों का शब्दनाद सुनाई देता है। त्वं मानेभ्य इंद्र विश्वजन्या रदा मरुद्भिः शुरुधो गो अग्राह स्तवाने भी स्तवसे देव देवैर विद्यामेशं व्रजनं जीरदानुम। हे इंद्रदेव, आप मरुतों के सहयोग से अपनी विश्व उत्पादक सामर्थ्य से अपनी प्रतिष्ठा के लिए गौओं को आगे रखकर युद्ध लड़ रही शोषणकारी शत्रु सेना का संहार करें। हे इंद्रदेव, आपकी प्रार्थना स्तुत्य देवताओं के साथ ही की जाती है। हम आपके सहयोग से अन्न बल और विजयश्री प्राप्त करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 169 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी। श्रोताओं, वेदों की ज्ञान परंपरा को आप तक पहुंचाता ये था कार्यक्रम अक्षय निधि। बने रहिए हमारे साथ। भक्ति संगीत का कार्यक्रम लेकर बस कुछ ही पलों में हम उपस्थित होंगे। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारी देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। श्रद्धा, भक्ति और मधुर संगीत का एक पावन सम्मेलन है ये। आइए इन पलों में हम अपना हृदय प्रभु के चरणों में समर्पित करें। श्रोताओं, जब मन प्रभु के स्मरण में डूबता है तो जीवन की सारी व्याकुलता स्वयं ही शांत होने लगती है। आइए कुछ पल अपने अंतर्मन को भक्ति के सुरों से आलोकित करें और ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करें।

श्रोताओं, भक्ति का मार्ग सरल है क्योंकि इसमें मन का समर्पण सबसे बड़ा साधन है। जब हृदय में विश्वास हो तो हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। आइए इसी भाव के साथ भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।

श्रोताओं, जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन भक्ति हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहना सिखाती है। ईश्वर का स्मरण मन को धैर्य और आत्मविश्वास से भर देता है।

श्रोताओं, सच्ची प्रार्थना शब्दों की मोहताज नहीं होती है। निर्मल भाव ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सहज मार्ग है। आइए इसी भाव को मन में धारण करते हुए सुनते हैं अगली भक्ति रचना।

श्रोताओं, भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, वो हमारे व्यवहार, विचार और कर्म में प्रतिपल दिखाई देती है। जब जीवन में करुणा हो, प्रेम हो, तभी आराधना सार्थक होती है।

श्रोताओं, मन की अस्थिरता के साथ भक्ति संभव नहीं है। जब मन शांत होता है, विचारों की लहरें स्थिर हो जाती हैं, तभी भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। भक्ति का संगीत उसी आंतरिक शांति की ओर ले जाने वाला मधुर सेतु है। आइए इसी सेतु पर चलते हुए अपने आराध्य को सुनने का प्रयास करें।

श्रोताओं, भक्ति का सबसे सुंदर स्वर वही है जो मन में प्रेम, विनम्रता और सेवा का भाव जगाए। यही भाव जीवन को समृद्ध और सार्थक बनाते हैं। भक्ति के इन सुरों के साथ आज की ये संगीतमय यात्रा अब यहीं विराम लेती है। उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद भी आया होगा और इन मधुर क्षणों ने आपके मन को शांति, विश्वास और नई ऊर्जा से भरा होगा। ईश्वर का स्नेह और कृपा आपके जीवन में सदैव रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ अब अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग। आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी पर केंद्रित है।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं पद्म भूषण डॉक्टर मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी का।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

नारी हूं मैं जीवन हूं, कभी माँ मैं कभी बहन, कभी बेटी तो सही होगी। नारी हूं मैं जीवन हूं, सृष्टि की अनमोल धरोहर, अखिल विश्व का हूं भविष्य। मुश्किल हालातों से लड़ती, दुर्गम राहों से गुजरती, शक्ति का हर रूप हूं मैं। नारी हूं मैं जीवन हूं, नारी हूं मैं जीवन हूं। अपनी आंतरिक शक्ति से भिज्ञ एक ऐसी ही सशक्त महिला, चिकित्सा व्यवसायी, समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता थीं डॉक्टर मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी। वो भारत की महिला विधायक होने के साथ साथ देश की पहली महिला सर्जन भी थीं। उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने देश में व्याप्त देवदासी प्रथा का विरोध किया तथा देश की आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी का जन्म 30 जुलाई सन 1886 को तमिलनाडु के पुद्दुकोट्टई में हुआ था। उनके पिता नारायण स्वामी अय्यर महाराजा कॉलेज में प्रोफेसर थे और उनकी माँ देवदासी समुदाय से थीं। देवदासी से विवाह करने के कारण ही उनके पिता को उनके परिवार से बहिष्कृत कर दिया गया था। इस तरह मातृपक्ष के परिवार से घनिष्ठ संबंध होने के कारण बचपन से ही मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी देवदासी समुदाय और उनके मुद्दों के प्रति बहुत संवेदनशील हो गईं। उनके पिता नारायण स्वामी अय्यर अत्यंत उदार विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने तत्कालीन परंपरा को तोड़ते हुए मुत्तु लक्ष्मी को स्कूल भेजा, लेकिन उनकी पढ़ाई आसान नहीं थी। उन्हें सामाजिक विरोध के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा। बावजूद इसके पिता और शिक्षकों का भरपूर सहयोग रहा। मुत्तु लक्ष्मी को उन्होंने घर पर ही पढ़ाया। वो परीक्षा में सर्वाधिक अंक अर्जित कर प्रथम स्थान पर रहीं। सीखने के प्रति उनका उत्साह इतना अधिक था कि उनके शिक्षकों ने उन्हें पिता द्वारा स्वीकृत विषयों के अलावा अन्य विषयों की भी शिक्षा दी। उनकी माता जल्द ही उनका विवाह करना चाहती थीं, लेकिन मुत्तु लक्ष्मी अपनी अलग सोच के साथ आगे बढ़ रही थीं। उन्हें महिलाओं पर पुरुषों का वर्चस्व स्वीकार्य नहीं था और न ही वो महिला पुरुष के भेदभाव को सहन कर पाती थीं। इस तरह महिलाओं के समान अधिकारों के प्रति उनके मन में अटल भावनाएं थीं और अपनी इसी इच्छा शक्ति की बदौलत वो आगे बढ़ने लगीं।

मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने जब मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की तो उन्होंने महाराजा कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया। लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल हों, छात्र हों या छात्रों के अभिभावक, सभी ने एक स्वर में उनके आवेदन का विरोध किया। इसका एक कारण उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी तो दूसरा कारण उनका लड़की होना। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच पुद्दुकोट्टई के महाराजा ने हस्तक्षेप किया और उन्हें न केवल कॉलेज में प्रवेश दिलवाया बल्कि उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की। मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के पिता उन्हें स्कूल की अध्यापिका बनाना चाहते थे, लेकिन मुत्तुलक्ष्मी की महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं। अब उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1912 में पढ़ाई पूरी कर वो चेन्नई में महिलाओं और बच्चों के सरकारी अस्पताल में हाउस सर्जन बन गईं। वो अपने अधिकारों के प्रति सदा सजग थीं। जब सुंदरा रेड्डी से उनका विवाह हुआ तो उन्होंने यही शर्त रखी कि सुंदरा रेड्डी प्रेम के साथ साथ उन्हें अपने बराबर का सम्मान भी देंगे तथा उनकी इच्छाओं और सपनों के आड़े कभी नहीं आएंगे। मैट्रिक की परीक्षा की टॉपर, मद्रास मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग की पहली भारतीय लड़की, कॉलेज में सर्जरी विभाग की टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट, ये सभी उपलब्धियां उनके पास थीं और फिर उनका चयन इंग्लैंड जाने के लिए भी हुआ था। लेकिन उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य करने का मन बनाया। दरअसल कॉलेज के वर्षों के दौरान ही उनकी भेंट सरोजनी नायडू से हुई थी और तभी से वो महिलाओं की बैठक में भाग लेने लगी थीं। महिलाओं की सामाजिक स्थिति, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, ऐसे अनेक मुद्दे थे जो उन्हें आंदोलित करते थे। लड़के और लड़की के प्रति भेदभाव को उन्होंने अपने जीवन में स्वयं देखा था, इसलिए इन मुद्दों पर वो खुलकर अपने विचार रखती। इस तरह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध एक प्रबल विद्रोह की उनकी यात्रा आगे बढ़ती रही।

मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का बहुत गहरा असर था। इसके साथ ही वो महात्मा गांधी और एनी बेसेंट से भी बहुत अधिक प्रभावित थीं। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और गांधी जी के विचारों का ही ये असर था कि मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने उस समय महिलाओं की मुक्ति और विकास के लिए काम किया जब महिलाएं घर की चार दीवारी तक ही सीमित रहा करती थीं। उन्होंने विमेंस इंडिया एसोसिएशन के लिए सघन रूप से काम किया। ये वो समय था जब बाल विवाह का चलन था। मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने इसका प्रबल विरोध किया तथा विवाह के लिए तय न्यूनतम आयु को बढ़ाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने बच्चियों के साथ होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी को सन 1927 में मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल से देश की पहली महिला विधायक बनने का गौरव भी हासिल हुआ। वो विधान परिषद की उपाध्यक्ष भी रहीं। उन्होंने महिलाओं के लिए नगरपालिका और विधायी मताधिकार के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्हें अनाथ बच्चों, विशेषकर लड़कियों की बहुत चिंता थी। उन्होंने उनके लिए निशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था की और चेन्नई में अव्वई होम की शुरुआत की। उन्होंने सभी स्कूल और कॉलेज में छात्रों के व्यवस्थित चिकित्सा निरीक्षण की भी सिफारिश की थी। देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी को कट्टर समूहों का प्रबल विरोध सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने मद्रास विधान परिषद के समक्ष प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि देवदासी प्रथा एक सामाजिक बुराई है, ये एक अपराध है जिसे जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए। मद्रास विधान परिषद ने सर्वसम्मति से उनका समर्थन किया और केंद्र सरकार ने इसकी सिफारिश भी की। सन 1930 में गांधी जी जब जेल गए तो मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने विरोध स्वरूप मद्रास विधानमंडल से इस्तीफा दे दिया। जब उनकी छोटी बहन की मृत्यु कैंसर से हुई तब उन्हें गहरा सदमा लगा। इसके बाद सन 1954 में उन्होंने अडियार कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो आज दुनिया के सबसे बड़े कैंसर अस्पतालों में से एक है। मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने एक महत्वपूर्ण पत्रिका रोशनी के संपादन का कार्य भी किया। उनकी किताब माई एक्सपीरियंस एज अ लेजिस्लेटर समाज सुधार की दिशा में उनके उठाए सार्थक कदमों का वर्णन करती है। मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी आजीवन अपने सिद्धांतों, अपने मकसद और अपनी विचारधारा के लिए लड़ती रहीं। उनकी सराहनीय सेवाओं के सम्मान में भारत सरकार ने उन्हें सन 1956 में पद्म भूषण से अलंकृत किया। 80 साल की उम्र में भी वो अत्यंत ऊर्जावान, जीवंत और सक्रिय थीं। देश और समाज को अपने जीवन का पल पल समर्पित करते हुए उन्होंने 22 जुलाई सन 1968 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम प्रकृति की पुकार में मैं हूँ मनीषा, और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर पारुल ऋषि, जो पर्यावरण मनोविज्ञान, जलवायु परिवर्तन और व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में जानी मानी शिक्षाविद और शोधकर्ता हैं। आप पिछले 32 वर्षों से भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM में प्रोफेसर और सेंटर फॉर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की चेयरपर्सन हैं। पर्यावरण और मानव व्यवहार के संबंधों पर उनके 110 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं, और इस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। डॉक्टर पारुल ऋषि जी, आपका हार्दिक स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद मनीषा जी।
1: आज हम सबसे पहले यहीं से बात शुरू करते हैं कि अक्सर हम सुनते हैं कि प्रकृति के बीच में समय बिताने से मन शांत होता है, इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारण क्या है?
2: देखिए, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हर समय हम लोग मोबाइल और स्क्रीन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, और उससे जो किरणें निकलती हैं वो हमारे दिमाग पर किसी न किसी तरह से प्रभाव डालती हैं। तो उसका जो प्रभाव है वो हम देखते हैं हमारे व्यवहार में। आजकल हम देखते हैं टीनएजर्स के व्यवहार में चिड़चिड़ापन, और अगर आप उनसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करें तो वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम प्रकृति के पास होते हैं तो आप उन्हीं बच्चों का व्यवहार जब आप देखेंगे कि वो प्रकृति के पास हैं, वो पेड़ों के साथ हैं, वो नदी के किनारे बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यवहार आपको उनका नहीं मिलेगा। तो ये सच बात है कि प्रकृति के साथ रहने से हमारा व्यवहार शांत होता है, हमारे मन को शांति मिलती है, हम एक अपनेपन की अनुभूति करते हैं कि जैसे हम अपने साथ हैं। तो मनोविज्ञान में अपने साथ होना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। हम लोग दुनिया के लिए तो बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन हम अपने व्यक्तित्व के साथ हैं, अपने बारे में कुछ कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, ये अनुभूति हमको प्रकृति के साथ जो है ये काफी अच्छे तरीके से होती
1: है। मैडम, माइंडफुलनेस कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि इस पर भी आजकल बहुत बातें हो रही हैं, इवन सोशल मीडिया पर हम ये चीजें बहुत देखते हैं, माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट है क्या?
2: ये माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट ओरिजिनली बुद्धिस्ट फिलोसफी से आया है, और इसका जो है पहले तो इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा था, थेरेपीज़ के लिए यूज़ हो रहा था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि पर्यावरण से संबंधित विषयों में भी माइंडफुलनेस के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं। एक वैम्सलर ने स्वीडन में काफ़ी स्टडी माइंडफुलनेस के कॉन्सेप्ट पर की है। इसका मतलब यह है कि आप जिस परिस्थिति में जहाँ हैं आप वहीं पर हैं, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति मिला तो हम, या किसी हम परिस्थिति में हैं, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत खराब है, ये पर्सन अच्छा नहीं है, इस तरह का जो हमारा एक इवैल्यूएटिव टाइप का, जजमेंटल टाइप का एटीट्यूड जो होता है ना, इसका ऑपोजिट इज माइंडफुलनेस, कि हम हर परिस्थिति को वैसे देखें जैसी वो है। सो तथागत का जैसे कॉन्सेप्ट होता है कि इट इज एज इट इज, तो इसमें हम हर समय इवैल्यूएशन नहीं करते हैं, हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं डालते हैं, क्योंकि बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे भी होते हैं। तो माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट यही है कि हम जो भी परिस्थिति है उसमें खो जाएं, उसी में एब्जॉर्व हों अपने आप को। तो नेचर में जब हम होते हैं, तो जब हम नेचर बेस्ड माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस बहुत सारी होती हैं, तो उसमें हम जब पेड़ों के साथ हैं, हम जब नदी के किनारे बैठे हैं, नर्मदा के किनारे बैठे हैं, तो हम उस पूरे एनवायरनमेंट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लें। तो दिस इज व्हाट माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट। तो इससे हमारा जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं उनसे कनेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, और हम लोग एक परिस्थिति में अपने आप को एब्जॉर्व करने की कोशिश करते हैं।
1: एक चीज और है कि आपकी बात से ही मुझे वो स्थिति प्रज्ञ हमारे यहाँ बोला जाता था कि स्थिति प्रज्ञ हो जाइए तो सारी स्थितियाँ अपने आप ठीक हो जाती हैं। एक बात और मैडम आती है कि जब हम बहुत थक जाते हैं और ऐसे वक्त पे अगर हम ठंडे पानी में पैर डाल लें या हम किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं, तो कहीं ना कहीं हमें सुकून मिलता है।

0: पेशेंट्स को ऐसे रूम में रखा जहाँ खिड़की से पेड़ पौधे और हरियाली दिख रही थी, और एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को रखा कि जिनको एक कंक्रीट की वॉल दिख रही थी खिड़की से। तो दोनों ग्रुप्स की उन्होंने फिर बाद में उनकी मनस्थिति को और सर्जरी से उनका पोस्ट सर्जरी जो रिकवरी हुई तो उसको उन्होंने कंपेयर किया। तो उन्होंने देखा कि जो पेशेंट्स हरियाली देख रहे थे खिड़की से, उनकी रिकवरी सेम सर्जरी से ज़्यादा फास्ट हुई इन कंपैरिजन को वो लोग जिनको कंक्रीट की वॉल दिख रही थी। तो इस रिसर्च से उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि हम लोग जब नेचर के पास होते हैं तब हमारा जो है वो साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों तरह की हेल्थ जो है और वेलबींग को जो है वो नेचर प्रमोट करती है। सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नेचर के साथ रहना हमारे लिए जो है वो खाली एक सुखद अनुभूति नहीं है, बल्कि ये हमारे शारीरिक रोगों को भी कम करती है, रोगों के प्रभाव को कम करती है, और हम एक अच्छी फीलिंग हमारे अंदर जो है ना ये प्रोवाइड करती
1: जी
0: है।
1: मैडम, दूसरी तरफ ये भी सुनने में आता है कि कोई पेड़ मान लीजिए सूख रहा है और उससे आप प्यार से जाकर उस पेड़ पर हाथ फेरने लगें या उससे बातें करने लगें। कई लोग करते भी हैं ये कि पेड़ के नीचे गए और बातें भी कर रहे हैं। क्या पेड़ों का भी कोई मनोविज्ञान होता है?
0: देखिए, इस क्षेत्र में मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए मैं मनुष्यों के मनोविज्ञान के बारे में ही जानती हूँ। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य जो है वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है। सो हम लोग जब पर्यावरण के साथ होते हैं तो पर्यावरण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, उससे हमारी मनस्थिति जो है वो इम्प्रूव करती है। तो मैं ये मानती हूँ कि ऐसा भी होता होगा कि हम अगर पेड़ों के साथ अच्छे तरह से व्यवहार करेंगे और उनका ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस तरह की रिसर्च स्टडीज तो काफी हुई हैं। एक हॉर्टिकल्चर थेरेपी आजकल काफी पॉपुलर है। हॉर्टिकल्चर थेरेपी में यह है कि आप जब पेड़ पौधों के साथ होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, बागवानी करते हैं। एनिमल्स के साथ तो हम लोग देखते ही हैं कि लोग जो पेट्स रखते हैं या गायों का जो है देखभाल करते हैं, तो ये सारा आप देखेंगे कि उनकी साइड से भी एक उसी तरह की रिस्पॉन्स आती है। तो जब हम लोग पेड़ों को प्रभावित करते हैं तो पेड़ भी हमको प्रभावित करते हैं। इस तरह की एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। तो बागवानी वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हॉर्टिकल्चर थेरेपी, वो यही है कि जो लोग बागवानी में जुड़े रहते हैं, पेड़ों का ध्यान रखते हैं। आपने कई बार सुना होगा, कहते हैं कि माली रखते हैं तो पेड़ उतने अच्छे ग्रो नहीं करते, लेकिन अगर आप खुद भी साथ में देख रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो पेड़ों की ग्रोथ बेटर होती है, क्योंकि
1: जी
0: आपकी फीलिंग्स और आपका उनके साथ एक रिश्ता बन जाता है,
1: जी
0: और रिलेशनशिप जो है ये पेड़ों की ग्रोथ को डेफिनेटली प्रभावित करता
1: जी
0: होगा।
1: मैडम, आपने चूंकि अभी पेट्स की बात की, तो घर में अगर कोई पालतू जानवर रखते हैं तो क्या उससे भी चिड़चिड़ापन मनुष्यों में और कहीं ना कहीं अवसाद कम होता है?
0: मनोविज्ञान तो डेफिनेटली है, क्योंकि आप पेट्स रखते हैं तो आप ज्यादातर हम लोग जो देखते हैं कि कुछ लोग जो जिनका मनुष्यों के साथ बहुत अच्छा जो है वो बातचीत खुल के नहीं कर पाते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, अंतर्मुखी उनका जो व्यवहार होता है, तो उन लोगों को लगता है कि वो अपने आप को बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपना पेट्स के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, और डेफिनेटली पेट्स भी उसको रेसिप्रोकेट उसी तरह से करते हैं।
1: जी
0: सो मेरा मानता है कि डेफिनेटली ऐसा होता होगा।
1: आपने जो कहानी सुनाई कि कुछ लोगों को बंजर जमीन दिखाई गई, एक वॉल दिखाई गई, और कुछ लोगों को हरियाली, ये तो एक थेरेपी के तहत किया गया और रिसर्च के तहत किया गया। लेकिन आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स बने जा रही हैं और हरियाली कम होती जा रही है, तो आपको लगता है जो हिंसा है, जो चिड़चिड़ापन है लोगों में, क्या उसका रीजन कहीं ना कहीं प्रकृति से दूरी है? आप मानती हैं?
0: बिल्कुल है, और ये चीज रिसर्च से प्रूव हो चुकी है। आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज का भी कॉन्सेप्ट आजकल वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो जो वार्म कंट्रीज हैं वहां पर वायलेंस ज्यादा है। हाँ, और आप देखेंगे कि समर मंथ्स में वायलेंस के इंसिडेंट्स जो हैं वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ये वायलेंस और ज्यादा बढ़ रहा है जितना हम टेक्नोलॉजी के करीब आते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ज्यादातर समय, जो समय तो वही 24 घंटे है, अब हम उसमें अगर ज्यादातर समय अपने मोबाइल और स्क्रीन के साथ निकालेंगे तो जो समय, और वर्क तो आपको करना ही है जो भी आप काम करते हैं, तो जो समय कम होता है वो प्रकृति के साथ रहने का ही समय कम होता है, और उसी का ही प्रभाव किसी ना किसी तरह से हमारे मनोस्थिति पर पड़ता है। और डेफिनेटली बच्चों में जो चिड़चिड़ापन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बच्चों में क्राइम बढ़ रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, मतलब माँ बाप भी बच्चों को जितना टाइम देते थे वही मोबाइल से ही वही टाइम कर्टेल हो रहा है हर जगह। तो कुल मिला के हम देखें कि आपसी रिश्तों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, प्रकृति के साथ रहने का समय कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ये दो चीजें मुझे मनोवैज्ञानिक की उससे समझ में आ रही हैं कि हम लोग प्रकृति के साथ स्पेंड करने वाला टाइम और अपने रिश्तों को सुदृढ़ करने में लगने वाला टाइम, ये दो टाइम्स हमारे सबसे ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, और उसके लिए हमको बहुत सीरियसली
1: सोचने की जरूरत है। और यहाँ पर एक बात मैं आपकी बात में और जोड़ना चाहती हूँ कि हम प्रकृति को भी स्क्रीन पे ही देख रहे हैं। कई बार मैंने जब इस तरह की बातें करूँ कि पेड़ों के पास बैठो, तो मैं देखती हूँ कई घरों में बच्चे एक धीमा सा संगीत लगा लेंगे और स्क्रीन पे पेड़ आते रहेंगे या बहुत अच्छी हरियाली या पहाड़ दिखते रहेंगे। तो स्क्रीन की प्रकृति से तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है।
0: बिल्कुल, स्क्रीन की प्रकृति से आप ये मान सकते हैं कि जिन लोगों को ये सुविधा नहीं है, जो ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहाँ पर प्रकृति उपस्थित नहीं है, हालांकि प्रकृति तो सभी जगह उपस्थित होती है, लेकिन इतना आपके पास समय नहीं है कि आप स्पेंड कर सकें, तो एक सब्स्टिट्यूट की तरह से वो लोग यूज करते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअली में प्रकृति के साथ हैं, तो जो प्रकृति की सुगंध आप अनुभव करते हैं, जो पक्षियों का कलरव आप उनको साथ में देखते हुए अनुभव करते हैं, वो सारी चीजें स्क्रीन से सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, लेकिन हम कह सकते हैं 10-20% कंपनसेशन उसका जो है वो स्क्रीन के थ्रू हो सकता है।
1: मैडम, आप बच्चों के बीच में बहुत, क्योंकि IFM में है तो बहुत सारे बच्चे आते होंगे, बहुत आपका क्या अनुभव है इन चीज़ों को लेकर, बच्चों को लेकर? क्योंकि आपने पहले भी कहा कि बच्चे आजकल थोड़ा सा बात करने से बचने लगे हैं, कटने लगे, नई जनरेशन जो है उसको डील करना थोड़ा टफ होता जा रहा है, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बच्चों को आजकल आप टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर सकते, ये स्थिति को आपको समझ लेना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी के साथ ही हम उनको किस तरह से प्रकृति से जोड़ सकते हैं, यही हमको सोचना है। तो ज़्यादातर फैमिलीज में अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट हो कि मॉर्निंग वॉक में कम से कम साथ में जाएं, भोपाल जैसे शहर में तो हम कह सकते हैं इस तरह की बहुत सुविधाएं हमको उपलब्ध हैं कि हम अपने घर से बाहर निकले और आपको एक बहुत छोटे से एरिया में जाके ही आपको प्रकृति के साथ आपका जो है संबंध हो सकता है। तो पेरेंट्स अगर साथ में बच्चों के साथ जाएं, प्रकृति के साथ वॉक करें, वहां पर आप बर्ड्स को रिकॉग्नाइज करें। आजकल बर्ड वॉचिंग भी एक माइंडफुलनेस के लिए हम लोग एज थेरेपी की तरह से यूज करते हैं। आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं या आप किसी भी नेचुरल एरिया में, अर्बन एरिया में जा रहे हैं और वहां पर आप पक्षियों को देख रहे हैं, और पक्षियों के फोटोग्राफी भी करते हैं लोग बर्ड्स की, लेकिन उसके अलावा पक्षियों को देखना, उनकी आवाजों को सुनना और उनकी आवाजों के अंतर को पहचानना, ये चीज आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है कि आप वॉइस साउंड्स में डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं कि ये एशियन फ्लाई कैचर की साउंड है, ये गोल्डन ओरियल की साउंड है, ये आउल की साउंड है। तो ये साउंड्स का डिफरेंशिएशन जो होता है ये कॉग्निटिव एबिलिटी को शार्प करता है
1: जी।
0: उसके अलावा जब हम प्रकृति में होते हैं तो एक फीलिंग ऑफ फ्रीडम हमको फील होती है। जैसे हम घर में होते हैं तो हम देखते हैं चारों साइड वॉल्स हैं, हाँ। तो वो हमारे थॉट प्रोसेसेस को किसी तरह से लिमिट करता है कि ये हमारी बाउंड्री है। लेकिन जब हम खुला आसमान देखते हैं, पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, नदी को देखते हैं, नदी के बहाव को फील करते हैं कि नदी बह रही है, तो उससे हमको लगता है कि हाँ, हम एक फ्री वर्ल्ड में जिंदा हैं और एक लाइफ में एक फ्लो हमको फील होता है। तो उससे हमारी मनस्थिति और हमारे व्यवहार और हमारी सोचने, समझने और निर्णय करने की क्षमता, इन सारी चीजों में हमारा बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है
1: जी। उन्मुक्तता भी आती है लोगों में वहां जाकर। मैडम, आपने माइंडफुलनेस की एक थेरेपी तो हमको जैसे बर्ड वॉचिंग बताई, माइंडफुलनेस की और भी थेरेपीज होती होंगी, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी।
0: एक ब्रीदिंग माइंडफुलनेस काफी ज्यादा यूज होता है। हम लोग को लगता है सांस लेना एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है और हम दिन भर सांस लेते ही रहते हैं, लेकिन एक माइंडफुलनेस ब्रीदिंग एक टेक्निक है। तो उसमें हम लोग अपनी सांस को फॉलो करते हैं कि जैसे हमने सांस ली, हाँ। तो हमारा पूरा ध्यान जो है वो उस सांस के साथ, हमने जैसे ब्रीद इन किया तो हमारा ध्यान भी हमारी सांस के साथ साथ जो है वो गया, और फिर उसके बाद ब्रीद आउट किया। सो ये सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया के साथ जब हमारी मनस्थिति भी इसके साथ में जुड़ी होती है, सांस लेने और छोड़ने के साथ साथ, तो वो एक माइंडफुलनेस थेरेपी होती है कि हमारा ध्यान इधर उधर जाने की जगह हम अपनी सांस को फील कर रहे हैं और उससे किस तरह से हमको एक ठंडक की अनुभूति हो रही है सांस को बाहर निकालते हुए, और गर्माहट की अनुभूति हो रही है सांस को अंदर लेते हुए। तो इस फीलिंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करना और ऐसे रिपीटिशंस करना, ये भी एक ब्रीदिंग माइंडफुलनेस जो है ये कहलाता है। इसके अलावा वॉकिंग माइंडफुलनेस भी होता है, जिसमें जब आप वॉक कर रहे हैं तो आप अपने एक हर एक स्टेप को फील कर रहे हैं कि आपने जमीन पर एक स्टेप रखा, फिर आपने दूसरा रखा, तो आपका मन उस हर स्टेप के साथ आगे बढ़ रहा है। सो ये एक वॉकिंग माइंडफुलनेस कहलाता है। तो मेरी एक रिसर्च एक मेरे स्टूडेंट ने करी थी, PhD स्कॉलर ने थोड़े साल पहले, तो उन्होंने इस माइंडफुलनेस थेरेपी को पेरेंट्स के साथ यूज किया था जिनके बच्चे हाइपर एक्टिव थे, तो उनको मैनेज करने में उनको बहुत चैलेंजेस आते थे तो उनको माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज के थ्रू उनको ट्रेन किया था, तो उससे उनका बच्चों के साथ जो व्यवहार था, हाइपर एक्टिव बच्चों को डील करना काफी डिफिकल्ट होता है, उनका व्यवहार बहुत इंप्रूव किया इससे, और उनके जो रिलेशनशिप बच्चों के साथ बहुत स्पॉइल हो गए थे क्योंकि वो हर समय कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते थे जिससे कि वो तनाव में आ जाते थे, तो वो उनका तनाव कम हो गया और बच्चों के साथ डील करने की उनकी एबिलिटी और इंप्रूव करी और बच्चों के व्यवहार में भी उससे अंतर आया। सो माइंडफुलनेस थेरेपी मल्टीपल फॉर्म्स में जो है वो यूज होती है और इंडस्ट्रीज में जो यूज होती है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, कि अगर आपके एम्प्लॉयज माइंडफुल है, उनको माइंडफुलनेस ट्रेनिंग दी गई है, तो वो बेटर परफॉर्मेंस देंगे, कम समय में बेटर परफॉर्मेंस देंगे।
1: तो मैम वर्क प्लेस पे ये कैसे काम, क्योंकि 10-10, 12-12 घंटे का आपका वर्क स्टेशन पे आपको रहना होता है, ऐसे में लोग क्या कर सकते हैं कि उनके काम में सुधार आए या क्या ऐसे साइकोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें।
0: देखिए वर्क प्लेस में आजकल बहुत कॉमनली एक वेलनेस प्रोग्राम्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसी वेलनेस प्रोग्राम में ही माइंडफुलनेस को उन लोगों ने इंटीग्रेट किया है। कुछ अच्छी कंपनीज जो हैं वो इस तरह के प्रोग्राम्स अपने एम्प्लॉयज के लिए स्पेशली करवाती हैं जिसमें माइंडफुलनेस ट्रेनिंग देती हैं, तो बहुत ज्यादा समय का इशू नहीं है, ये बहुत कम समय में इट्स अ ट्रेनिंग, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि वो एक पर्टिकुलर तरह से सोचने की अपनी आदत बनाए और करंट मनस्थिति में रहे। अदरवाइज तो आपने बाकी इंडियन फिलॉसफी में ये बताया हुआ है कि मन एक घोड़े की तरह है, हाँ। अगर आपने उसको लगाम नहीं लगाई तो वो कहीं भी भागेगा, तो वही स्थिति है। तो हम माइंडफुलनेस के थ्रू बेसिकली अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं और उसको ट्रेन करते हैं, कंट्रोल भी नहीं करते हैं, हम उसको ट्रेन करते हैं कि वो जिस समय जो काम कर रहा है वो उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्व होके उसको करे। सो इससे डेफिनेटली परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि जब वो फिर उसका रिवर्स सिचुएशन ये होगी जब वो वर्क का काम कर रहा है, जब वो अपने ऑफिस में है और ऑफिस में जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज उनको दी गई हैं वो उसमें भी ऑब्जॉर्व होकर काम करेगा। सो ये एक दूसरी परिस्थिति में भी ट्रांसलेट होता है, जब अपने फैमिली के साथ है, अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर रहा है तो उसमें भी वो एब्जॉर्व होकर करेगा। अदरवाइज आपका वर्क प्लेस का स्ट्रेस घर में ट्रांसफर होता है, घर का स्ट्रेस वर्क प्लेस में ट्रांसफर होता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट होती है।
1: मैडम आपकी ही बात में से एक बात अभी मुझे ध्यान आ रही है और वो ये है कि पहले हम लोग कहते थे कि तेज़ी से भागो, दुनिया के साथ भागो, अभी कुछ एक चीज़ें सुनने में आ रही कि थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा

0: धीमे चलो, थोड़ा धीमे हो जाओ, जिंदगी में इतना मत भागो, रुक जाओ, ठहर जाओ। ये जो
1: कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने स्ट्रेस को

0: रिड्यूस करने के लिए, बर्नआउट के बहुत ज्यादा केसेस आजकल सुनने में आ रही है, उनको कार लेनी है, उनको घर बनाना है, जो भी चीजें हैं, तो एस्पिरेशंस जो हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं. और इसमें मैं कहूंगी कि बहुत हद तक इंटरनेट से जो एक्सपोजर हुआ है लोगों को, जो दूसरे लोगों की स्टोरीज वो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अरे उसने तो इतनी जल्दी ये सब कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर पाया, तो इसमें एक वो उनको लगता है अच्छा मैं कुछ और ज्यादा तेजी से कर लूंगा तो शायद मुझे भी ये मिल जाएगा. तो ये एक दौड़ने की टेंडेंसी और रशिंग टेंडेंसी लोगों में इसकी वजह से डेवलप होती जा रही है, और उसको पॉज करने की बहुत जरूरी है. हर पर्सन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो बहुत अर्ली स्टेज में बहुत ज्यादा कमा के बहुत हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाए, और आपको ये भी नहीं पता कि अगर वो पहुंच भी गया तो क्या वो वहां खुश है, क्या वो वहां संतुष्ट है, क्या हमारे मन की संतुष्टि ज्यादा जरूरी है या भागकर लाइफ में कुछ बहुत कुछ अचीव कर लेना ज्यादा जरूरी है. तो उस परिस्थिति को अगर हम देखते हैं तो पॉज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा ये नहीं सिखा सकते लेकिन फिर भी जो है एटलीस्ट एक एडवांस मिडिल एज पे आके कम से कम आपको कि पॉज लेना, कि लाइफ में प्रकृति को देखना, अपने आसपास के एनवायरमेंट को एब्जॉर्व करना, उसके साथ एक खुशी की फीलिंग होना और अपने रिलेशनशिप्स के पर फोकस करना, ये सारी चीजें जो है ये बहुत जरूरी है.
1: आपका इंस्टीट्यूट आम लोगों की जिंदगी में इस तरह की कोई मदद कर सकता है, जो लोग चाहें कि उन्हें प्रकृति के निकट आकर अपने अवसाद को या किसी भी तरीके के तनाव को दूर करना है, तो उसमें आपके इंस्टीट्यूट की कोई भूमिका होती है?
0: देखिए भारतीय वन प्रबंध संस्थान, इसका नाम ही है कि ये वन के प्रबंध का संस्थान है, और ये हमारा इंस्टीट्यूट एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और जिसके आसपास काफी जंगल है, और हम लोगों का एक क्लब भी, हम लोगों का एक एडवेंचर क्लब भी है, एक नेचर क्लब है. तो नेचर क्लब इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो करता रहता है, कि जिसमें बर्ड वॉचिंग के लिए जो है वो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स आते हैं तो उनको भी बर्ड वॉचिंग के लिए उनको गाइडेड विजिट कराना फॉरेस्ट का. एक नेचर ट्रेल हमारे यहाँ बनी हुई है, नेचर ट्रेल में जाके बर्ड वॉचिंग कराना, हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जो बर्ड वॉचिंग के एक्सपर्ट्स हैं तो वो, और हमारी फैकल्टीज भी हैं तो वो साथ में उनको ले जाके एंड गाइडेड टूर इंस्टीट्यूट का कराते हैं. उसके अलावा और भी बर्ड वॉचिंग के ग्रुप्स हैं और नेचर ट्रेल्स के ग्रुप्स हैं तो उनके साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं. तो इस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स को हम लोग नेचर के क्लोज लाना और नेचुरल वाइल्ड एनिमल्स और नेचर और बर्ड्स, उनके साथ एक कनेक्ट की फीलिंग डेवलप कराना, उसमें हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, करते भी हैं और आगे और भी कर सकते हैं.
1: जी बिल्कुल. सेंटर फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप चेयरपर्सन हैं, हम उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे. आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या है वो और कैसे काम करता है?
0: देखिए सेंटर फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2018 में हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया था. एक इंडस्ट्रीज के लिए एक जो कॉर्पोरेट लॉ है उसके अंडर 2% ऑफ प्रॉफिट दे हैव टू स्पेंड इन CSR एक्टिविटीज. तो उसमें बहुत सारी जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सो उनसे लेके कुछ कुछ एक्टिविटीज हैं जो इंडस्ट्रीज कर सकती हैं, और वो अपना 2% के अंदर उनको कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप करने होते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को समाज के लिए और पर्यावरण में सुधार के लिए उनको उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है. सो हमारी संस्था जो हमारा जो सेंटर है, सेंटर फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग इन प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं. इतना मनी जो है वो सारे कॉर्पोरेट्स का आता है जो CSR के लिए उनको स्पेंड करना है, लेकिन क्या ये पैसा सही जगह इस्तेमाल हुआ? जिन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने इस पैसे को लगाया उन प्रोजेक्ट्स ने एक्चुअली में सोसाइटी को कुछ इम्पैक्ट दिया या नहीं दिया? तो इसका आकलन जो है ये एक साइंटिफिक टेक्निक रहती है. सोशल साइंटिस्ट जो हैं हम लोग इन प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं. सो बहुत सारी कंपनीज के जो CSR प्रोजेक्ट्स थे सो उनके इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए हम लोगों ने काफ़ी इस सेंटर में पिछले सालों में काम किया. इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग्स भी देते हैं, जैसे कॉर्पोरेट्स में जो लोग काम करते हैं वो CSR के लिए किस तरह से इक्विप्ड हैं, उनको नॉलेज है या नहीं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, किससे सोसाइटी को ज़्यादा बेनिफिट होगा, कैसे उनको बेसलाइन स्टडी करें कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नीड बेस्ड हों, कि जो सोसाइटी के लोग चाहते हैं उसी हिसाब से प्रोजेक्ट्स हों.
1: एक और आखिरी सवाल मैडम, कि कुछ बच्चों को प्रकृति के निकट रहना, बर्ड वॉचिंग, कई बच्चों को बड़ा शौक होता है, लेकिन वो इसे अपना प्रोफेशन कैसे बनाए, उसमें IFM क्या हेल्प कर सकता है या किस तरह के कोर्सेज हैं, अगर आप उसके बारे में बताना चाहें।
0: देखिए, बर्ड वॉचिंग तो एक हॉबी की तरह से है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: कुछ लोग इसको प्रोफेशन बना लेते हैं अगर उनकी फोटोग्राफी स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं, और उसके अलावा बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन वो लोग कर लेते हैं, उनको पता होता है कि कौन कौन से बर्ड्स का क्या नाम है, क्या उनका नेचर है, किस सीजन में वो आते हैं। जैसे अभी इस सीजन में एशियन फ्लाई कैचर जो है वो भोपाल में आई हुई है, तो सारे बर्ड वॉचर्स जो है वो उनके नेस्टिंग का टाइम है एंड उनके चिक्स वगैरह देखने के लिए काफी जो है, मुझे भी बहुत शौक है, मैं भी जाती हूँ। और पिट्टा इस समय आया हुआ है, तो ये साउथ से आता है, तो ये इनके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। हमारा इंस्टीट्यूट जो है, हम लोगों के यहाँ 4 कोर्सेज MBA प्रोग्राम्स चलते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट डीम टू बी यूनिवर्सिटी अभी 2 साल पहले हम लोग डिक्लेयर हुए थे, 3 साल पहले। तो हम लोग एक कोर्स है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम MBA इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एक प्रोग्राम है MBA इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, और 2 और प्रोग्राम्स हम लोगों ने नए लास्ट ईयर ही स्टार्ट किए हैं। एक है डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल फिनेंस और एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये प्रोग्राम्स जो हैं, इसमें हम लोग मैनेजमेंट एजुकेशन तो स्टूडेंट्स को देते ही हैं, जो कि सारे ही मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस मैनेजमेंट एजुकेशन को हम फॉरेस्ट्री के फील्ड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं
1: जी,
0: इंडस्ट्रीज जो हैं वो सस्टेनेबिलिटी के फील्ड पे कैसे अप्लाई कर सकती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का क्या एप्लीकेशन हो सकता है। आजकल क्लाइमेट फाइनेंस और ग्रीन फाइनेंस के बारे में बहुत बात हो रही है, तो हमारा डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल फाइनेंस का कोर्स जो है वो मैनेजमेंट एजुकेशन बट अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सो इस तरह से ये 4 कोर्सेज हमारे हैं, और हमारा काफ़ी अच्छा, मैं प्लेसमेंट चेयरपर्सन भी हूँ, और काफ़ी अच्छा इंडस्ट्रीज़ का रिस्पांस इसके लिए रहता है। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं आजकल सारी इंडस्ट्रीज़ को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करना जो है वो कंपलसरी है। सो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और हमारे एल्यूमिनाय जो हैं पास्ट के, वो बहुत कंपनीज़ के, कंसल्टिंग कंपनीज़ के पार्टनर्स हैं और CEOs हैं और सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर्स हैं एंड चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर्स तक हैं, या कंपनीज ओन करते हैं। सो बिकॉज इस इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री जो है वो काफ़ी पुरानी है, 1982 का ये इंस्टीट्यूट है, सो काफ़ी अच्छा इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स का सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करने की एक हिस्ट्री रही है।
1: डॉक्टर पारुल ऋषि जी, आप इतने व्यस्त समय में से हमारे लिए इतना समय निकाला और हमें बहुत बहुत सरल शब्दों में ये बताने की कोशिश भी की कि किस तरीके से पर्यावरण हमारे मनोविज्ञान पर असर डालता है। और हमें दोस्तों उम्मीद है कि ये बातचीत सुनने के बाद निश्चित ही आप अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से भले ही आधा घंटा निकालें, पर कहीं ना कहीं प्रकृति के करीब जाइए, क्योंकि जैसा आपने मैडम की बातों में सुना कि अगर आप नदी के पास जाते हैं तो आपके भीतर उन्मुक्तता का भाव आता है, जब आप अपनी 4 दीवारी के बीच में से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आप में आज़ादी की भावना आपको अच्छी लगती है और आप उसी की तरीके से जीवन जीने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच मैडम, आप यहाँ पर आए और आपने इतना समय दिया। थैंक यू।
0: थैंक यू मनीषा जी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: प्रकृति की पुकार। अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम योग संवाद। उसके पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, जब संसार का समस्त वैभव भी मन को तृप्त न कर सके, जीवन प्रश्नों से घिर जाए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल अनुभव और आत्मबोध में दिखाई दे, तब सत्य की खोज आरंभ होती है। और यही खोज अयोध्या के राजकुमार श्री राम को वैराग्य की उस भूमि तक ले आई है, जहां उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के श्री चरणों में बैठकर तत्व ज्ञान की याचना की। योग वासिष्ठ का ये प्रसंग केवल गुरु और शिष्य का संवाद नहीं है, बल्कि मानव चेतना के जागरण की दिव्य यात्रा है। तो आज योग संवाद कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे श्री राम द्वारा तत्व ज्ञान उपदेश हेतु प्रार्थना पर, जहां एक जिज्ञासु शिष्य की विनम्र प्रार्थना आत्मज्ञान के अमृत द्वार खोल रही है। इस बातचीत के लिए हमारे बीच हमेशा की तरह उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग संवाद के आज के अंक में।
2: नमस्कार।
0: श्री राम द्वारा तत्व ज्ञान उपदेश हेतु प्रार्थना, यहाँ पहुंच गए हैं हम योग वासिष्ठ के पन्ने पलटते हुए। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि संसार के विषयों का भोग होता कैसा है?
2: संसार के विषयों का भोग अत्यंत दुखदायी होता है
0: जी।
2: अगर आप अनुभव करें, अपने अनुभव को देखें, तो राम जी जैसे विवेकवान जो लोग हैं, उन्होंने संसार में हमेशा अनित्यता, परिवर्तनशीलता का दर्शन किया है
0: जी।
2: और वो ये कह रहे हैं कि संसार का कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिस सुख के बाद दुख की अनुभूति न हो। तो यहाँ जो सुख दुख है ये आगमापाई है, आता जाता है
0: जी।
2: तो ऐसे में राम जी कहते हैं कि इस संसार के दुखद और परिवर्तनशीलता को देखते हुए मेरा चित्त जो है इस विषय भोग रूपी अग्नि में जल करके दग्ध हो गया है और एकदम निर्मल हो गया है
0: जी, जी।
2: तो ऐसे में ये संसार कभी भी सुख प्रदान करने वाला नहीं है, तो मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश दें जिससे कि मेरा चित्त शांत हो सके और संसार के विषयों में जो राग द्वेषात्मक इसकी प्रवृत्ति है
0: जी, जी।
2: इस प्रवृत्ति से सर्वथा मुक्त रह सके।
0: यही भगवान श्री राम महात्माओं के संग पर भी बातचीत कर रहे हैं
2: जी।
0: तो क्या लाभ होता है महात्माओं के संग का?
2: हाँ, महात्माओं के संग को वो कहते हैं कि मुनीश्वर विविध चिंताओं से परिपूर्ण भोग समूहों और राज्यों की अपेक्षा चिंता रहित महात्मा पुरुषों द्वारा स्वीकृत एकांत सेवन ही मेरा सबसे अच्छा स्थान है और ऐसे जगह पर मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूं। अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि एकांत सेवन, एकांत सेवन का अर्थ ये कभी नहीं हुआ कि हम समाज से कटकर अपने को अकेला कर लें
0: जी, जी।
2: क्योंकि चिंता रहित होकर के एकांत में रहना, जबकि आप संसार को अगर देखें तो संसार का व्यक्ति जब एकांत में होता है तो और चिंताग्रस्त होता है, उसका मन और विषयों और तरह की कल्पनाओं में घूमता फिरता है। महात्मा एकांत में एकांत का सेवन करता है क्योंकि वो चिंता रहित रहता है। तो चिंता रहित हुए बिना आप एकांत में रह करके भी इतनी भीड़ से भी भयावह स्थिति में रह सकते हैं।
0: जी जी जी।
2: इसलिए आप देखेंगे कि आदमी अकेले होने से डरता है। अकेले होने से डरता क्यों है? क्योंकि जब वो अकेला होता है तब उसके पास ऐसे निरर्थक और ऐसे पता नहीं कितने कितने समय के विचार और कितने भविष्य की योजनाओं को लेकर के वो चिंतित होता रहता है। तो राम जी कहते हैं कि ऐसा महात्मा जो सभी प्रकार की चिंताओं से रहित हो और एकांत का सेवन कर रहा हो, यानी उसका एकांत किसी चिंता से युक्त नहीं है।
0: बहुत ही सुंदर शब्द है एकांत सेवन।
2: जी, जी।
0: बिल्कुल सही आपने कहा कि आज के समय में जो एकाकीपन है उसको एक समस्या की तरह देखा जाता है, अकेले हो जाने को, और कितनी समस्याएं उस अकेलेपन से पैदा होती हैं। लेकिन यहाँ वो एकांत सेवन की जो बात कर रहे हैं वो चुना हुआ एकांत है।
2: बिल्कुल,
0: जिंदगी की परिस्थितियों से आया हुआ एक एकाकीपन नहीं है।
2: नहीं है
0: जी।
2: वो जिंदगी से पलायन किया हुआ एकांत नहीं है।
0: जी, जी, जी।
2: वो एकांत है विषय भोग दुख रूप और अनित्य विषय दोष दर्शन रूपी दावानल से दग्ध होकर के जो चित्त शुद्ध हुआ है उसका एकांत सेवन है वो।
0: जी जी।
2: यानी उस चित्त में निर्मलता है और यहाँ एकांत में हमारा चित्त मलिन होता है, इसलिए हम एकांत में जाने से भयभीत होते हैं या एकांत से बचना चाहते हैं।
0: या तो हम समस्याओं में हैं तब एकांत में जाते हैं
2: जी,
0: या एकांत में जाते हैं तो समस्याएं हो जाती
2: हैं। हो जाती हैं जी।
0: दोनों बातें होती हैं जीवन में, लेकिन यहाँ एकांत के सेवन की बात हो रही है।
2: हाँ, एकांत सेवन की बात कहते हैं। ऐसे महात्माओं का संग मुझे प्रिय है। जबकि संसार में हम क्या देखते हैं, संसार में जो विषयों में जितने अधिक डूबे हुए लोग हैं, विषयों का जो जितना अधिक संग्रह किया हुआ
0: जी,
2: है
0: जी।
2: ऐसे व्यक्ति हमारे आदर के योग्य होते हैं या ऐसे व्यक्ति का हम अनुकरण करते हैं। जबकि राम जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति में मेरी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि अंततः वो विषयों में दग्ध ही होगा, अपने चित्त को शुद्ध न करके बल्कि चित्त में एक असंतोष पैदा करेगा। आप कभी विचार करके देखें तो संसार में विषयों का सेवन असंतोष का कारण बनता है,
0: जी, जी,
2: संतोष का कारण कदापि नहीं बनता।
0: जबकि हम संतोष के लिए ये करते हैं
2: जी,
0: लेकिन वो मिलता नहीं।
2: हाँ, क्योंकि संतोष से सुख मिलता है। देखिए, ऋषियों ने कितना गहरा शोध किया है, वो ये कहते हैं कि सुख विषय सेवन में नहीं है, विषय सेवन में तो दुख है, क्योंकि विषय सेवन का परिणाम असंतोष है, और जो सुख है वो संतोष की वजह से मिलता है। और यहाँ पर संसार में जब संतोष की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि एक प्रकार का विकास से कटना हुआ, या फिर आप एक ऐसी उदासीन विचारधारा के साथ अपने आप को विकसित कर रहे हैं जहां पर आप तो अपने पूरे विकास को ही अवरुद्ध कर देंगे। ऐसा नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर संतोष के परम सुख का अनुभव हो रहा है, और वो सुख स्थाई है, क्योंकि संतोष के बिना सुख और शांति कदापि संभव नहीं है।
0: जी, जी,
2: ये ऋषियों का शोध है।
0: अच्छा, मनुष्य हमेशा से ही राज्य आदि भोगों में लिप्त रहा है, उसकी आकांक्षा रहती है
2: जी,
0: तो क्यों संबंध रखना चाहता है वो ऐसे राज्य आदि भोगों से?
2: देखिए, सामान्य तौर पर आपको देखेंगे तो राज्य और जो विषय भोग हैं, ऐसा लगता है कि ये हमारी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए हैं। लेकिन सच ये है कि आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच भेद कर पाना मनुष्य के लिए बड़ा कठिन कार्य है। कई बार हम अपनी इच्छाओं को भी आवश्यकताओं का नाम दे पड़ते हैं।
0: जी, जी, जी।
2: आवश्यकताएं हर जीव की पूरी होती हैं, लेकिन इच्छा और लालच एक आदमी की भी पूरी करने में ब्रह्मांड का सामर्थ्य नहीं है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य जो है अहंकार वश इन राज्य भोगों में आकर्षित होता है, न कि सुख की आकांक्षा में। राज्य भोगों का सुख जो है वो अहंकार को तुष्ट करता है।
0: जी, जी,
2: तो राम जी कहते हैं अहंकार वश ही मनुष्य इन राज्य आदि से संबंध रखता है, किंतु मेरा अहंकार ही गल गया है, अतः मेरे लिए इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, नहीं बची है अब। क्योंकि जिसका अहंकार नहीं है, अहंकार का आशय ये है कि जिस भी विषय व्यक्ति वस्तु के साथ आप अपने आकार को पुष्ट करते हैं वो अहंकार है।
0: जी,
2: तो
0: जी।
2: ऐसे में हमारे आकार को पुष्ट करने का कोई विषय वस्तु व्यक्ति अब साधन ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा अहंकार ही गल गया है। इन विषयों के साथ मेरा अहंकार कोई रूप नहीं लेगा, और संसार में लोगों का अहंकार वो रूप लेता है, तो उस रूप के नाते इन विषयों के भोग में लोग आकर्षित होते हैं, जबकि उनको लगता है कि हम अपने आवश्यकता या अपनी इच्छाओं के लिए हम जुड़ रहे हैं। सच ये नहीं है, वो एक प्रकार से आपके अहंकार का पोषण है, और अहंकार का जन्म ही अविद्या से होता है, और अविद्या से जो युक्त पुरुष है वो निश्चित ही अहंकारी होगा, और अहंकारी व्यक्ति को राग द्वेषात्मक वृत्तियों का निरंतर सामना करना पड़ेगा, सतत उसका क्रम चलता रहेगा, उस चक्र से कभी बाहर नहीं आ सकता,
0: वो आनंद की स्थिति में आ नहीं सकता।
2: जी।
0: अच्छा, इसमें अज्ञानी जो मनुष्य है उसके मन की स्थिति बताई गई है, किससे बंधा रहता है उसका मन?
2: राम जी कहते हैं विष जो संसार में होता है, इस विष से एक शरीर नष्ट होता है अगर इसका पान कर लिया
3: जी,
2: जाए
3: जी, जी।
2: लेकिन कहते हैं कि विषय रूपी विष जन्म जन्मांतर तक मृत्यु का कारण बनते हैं। तो उन्होंने विषय को विष का नाम दिया और वो कह रहे हैं कि जो अज्ञानी का मन है वो इस संसार में सुख दुख, मित्र भाई बंधु, जीवन और मरण, इन बंधनों से बंधा रहता है। अब आप देखें तो हम इन्हीं को पुष्ट करने और इन्हीं को बनाए रखने के लिए पूरे जीवन यत्न करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर रामचरितमानस में भरत जी के माध्यम से वो बात कही है कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हां निलाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। वो कहते हैं कि अज्ञानी जो लोगों का मन है वो हां निलाभ जीवन मरण यश अपयश इसी से बधा रहता है। और चूंकि इससे क्या होता है, इसका जुड़ाव किससे है, अहंकार से। तो ऐसे में अहंकारी होने के नाते यानी अविद्या से अहंकार जन्म लेता है और अहंकारी होने के नाते हम संसार के इन विषयों में जुड़े रहते हैं, बधे रहते हैं।
3: जी, जी।
2: जो ज्ञानी का मन है वो ऐसा नहीं होता, वो इनसे बिल्कुल मुक्त रहता है। ज्ञानी पुरुष के चित्त को ये बांधनित्य नहीं है जिसमें अज्ञानी पुरुष का चित्त बंधा रहता
3: जी,
2: है।
3: जी जी जी। तो एक तरह से भगवान श्री राम के मन में बहुत से प्रश्न हैं और स्वयं वो देखकर भी बहुत कुछ समझ रहे हैं और एक विचलन की स्थिति है।
2: जी जी।
3: और
2: जी।
3: वो गुरु वशिष्ठ से तत्व ज्ञान की प्रार्थना करते हैं। तो मेरे मन में एक सवाल था कि तत्व ज्ञान से क्या आशय है।
2: देखिये, तत्व ज्ञान से आशय ये है कि आप उस तत्व का अनुसंधान करें जो तत्व का ज्ञान नहीं होने की वजह से भूत और भविष्य का बराबर हम चिंतन करते रहते हैं और वर्तमान में जिसमें हम रहते हैं उसको हम जी ही नहीं पाते।
3: अच्छा।
2: और हमारा पूरा समय जिसको हम कहें काल, काल को हम मृत्यु से भी परिभाषित करते हैं। तो काल का मतलब ये हुआ जिसने आपके समय को नष्ट कर दिया। तो आप देखें तो आपके समय को नष्ट किसने किया, आने वाले कल ने या बीते हुए कल ने। तो बीता हुआ कल जिसे हम भूत कहते हैं और आने वाला कल जिसे हम भविष्य कहते हैं, ये कल हमारे समय का काल बन गया और हमारे वर्तमान को खा गया और वर्तमान में हमने जीने का कौशल ही पैदा नहीं कर पाया अपने जीवन में और हम पूरे समय इसी में उलझे रहते हैं। इसीलिए राम जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप प्राचीन और अर्वाचीन बातों को जानने वाले महात्माओं में श्रेष्ठ हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि भूत को भी आप जान रहे हैं और आने वाला जो समय है उसको भी जान रहे हैं। तो उनसे उन्होंने तत्व ज्ञान को जानने की चेष्टा की। ऐसे लोगों से तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त नहीं किया जा सकता जो न भूत को जान रहे हैं न भविष्य को जान रहे हैं, बल्कि भूत और भविष्य को न जानने के कारण भूत और भविष्य के चिंतन में ही उलझे हुए हैं।
3: जी जी जी,
2: है ना। और संसार का आदमी देखें तो अपने भूत की स्मृतियों को लेकर के अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए ऐसे गुणीजन या ऐसे ज्ञानियों के पास, ज्योतिषियों के पास जाता है कि मेरा भविष्य क्या है और पहले ये हुआ और ऐसी इस पर बातें होती हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे लोग तत्वदर्शी नहीं हैं। तो पहले तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को ही कहा कि आप तत्वदर्शी हैं क्योंकि आप प्राचीन अर्वाचीन बातों को जानने वाले महात्माओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए जिस प्रकार में शोक भय और खेद से मुक्त होकर यथार्थ ज्ञान से संपन्न हो जाऊं वैसा उपदेश मुझे शीघ्र प्रदान कीजिए। राम जी के चित्त में अब इतनी निर्मलता आ गई है कि वो कहते हैं कि अब तो ये संसार के विषय अब हमारे चित्त में कोई स्थान तो पा नहीं रहे हैं। तो ऐसे में जिससे मेरा शोक भय और खेद ये पूरी तरह से नष्ट हो जाए, और ये तभी होगा जब हम यथार्थ ज्ञान से संपन्न होंगे। अब एक चीज देखिए, यथार्थ ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा ज्ञान जिसका संबंध भूत और भविष्य से नहीं है।
3: जी।
2: वो जो वर्तमान में है जिसको आपको जीना चाहिए लेकिन आप जीना इसलिए नहीं जानते क्योंकि पूरे समय में आपने भूत और भविष्य को अपने वर्तमान का काल बना दिया। गोस्वामी जी ने भी यही लिखा था मीरा जी को शायद कि अबलो नसानी अबना नसही हो। तो अभी तक तो हमने मतलब अपना नष्ट किया किसमें, भूत के चिंतन और भविष्य के योजनाओं में। तो अब इसको नष्ट नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए और वो तत्व ज्ञान दीजिए। तो तत्व ज्ञान का वो प्रार्थना करते हैं कि जिससे हम यथार्थ ज्ञान से संपन्न हो सकें और ऐसी काल्पनिक ज्ञान जो अभी है ही नहीं जिसके बारे में सोच करके भविष्य की कितनी भी योजनाएं आज आप बना लें, क्या आप भविष्य में जो योजनाएं आज आपने बनाई हैं उसका सामना करने के लिए ऐसे ही रहेंगे? मन स्थिति बदल सकती है। परिस्थितियों के बारे में तो आपने सोचा, लेकिन जिस मन स्थिति में सोचा, उस मन स्थिति के बदल जाने के बाद वो उन परिस्थितियों का सोचा हुआ ज्ञान काम नहीं आता, मेल नहीं होता। यही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो मन स्थिति और परिस्थितियों के बीच तालमेल बनाना नहीं जानता। अर्जुन को भी विषाद इसी स्थिति में हुई है, है ना, कि वो युद्ध का कौशल तो जानते हैं लेकिन ऐसा कौशल जिसमें अपने ही युद्ध क्षेत्र में विपरीत पक्ष में खड़े हो जाएं, तो इसलिए वो विषाद से ग्रस्त हो गए। राम जी ने जगत को देखा कि जगत में कैसे व्यक्ति इस संसार के विषय विसूचिका में, इसमें वाल्मीकि जी कहते हैं विषय विसूचिका, विषय का हैजा फैला हुआ है, हैजा जिसको कहते हैं, लगातार वो संक्रमित होता जा रहा है व्यक्ति, हैजा एक संक्रमण की बीमारी है। तो ऐसे ही संसार के व्यक्तियों का सानिध्य जो है वो विष की विसूचिका है, वो विष का संक्रमण करेगी। एक व्यक्ति अगर जिसने आपसे अधिक अर्जित कर लिया, वो आपको और अधिक अर्जित करने के लिए प्रेरित करेगा, संक्रमित करेगा। तो इसीलिए राम जी कहते हैं कि चिंता रहित महात्मा का संग मुझे प्रिय है, क्योंकि संसार में तो चिंतित लोग ही मिलेंगे और चिंतित लोग आपको चिंतित करने के संक्रमण से ग्रसित करेंगे, संक्रमित होंगे आप। और इसलिए संसार में चिंता मुक्ति नहीं होती,
3: चिंतित व्यक्ति चिंता ही फैलाएगा,
2: और हम लोग चिंतित का सानिध्य करके और अपनी चिंता बढ़ाते हैं, न कि चिंता से मुक्त होने का प्रयास करते हैं।
3: अच्छा, ये बताएं कि संसार की जो सारी दुश्चिंताएं हैं कैसे नष्ट होती हैं?
2: संसार की सारी जो दुश्चिंताएं हैं वो नष्ट होती हैं उत्तम अंतःकरण के महात्माओं के संग से।
3: अच्छा,
2: जो राम जी ने कहा मुझे प्रिय है, क्योंकि इसी संसार में हमारे ही जैसा शरीर लेकर के वो महात्मा भी है, लेकिन उसके जीने का ढंग, उसके किसी चीज को परसीव करने का जो प्रोसेस है
3: जी,
2: वो हमसे बिल्कुल अलग है
3: जी।
2: तो कैसे वो उन विपरीतताओं में भी अपने को बिना संक्रमित किए हुए, वो जैसे कहते हैं कि कमल कीचड़ में अलिप्त रह करके अपने सौंदर्य को बनाए हुए है, तो ऐसे वो महात्माओं का संग जब हमें मिलता है तो उस संग का हम अनुकरण करते हैं। क्योंकि मनुष्य के अंदर एक जो सीखने की प्रवृत्ति है, जिसमें वो सामाजिक संज्ञान सीखता है, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि उसमें एक अनुकरण विधि है। जॉन बेंडुरा नाम का एक मनोवैज्ञानिक हुआ, उसने कहा कि जो सोशल कॉग्निशन जो मतलब आदमी को होता है वो होता है अनुकरण, इंटीमेशन, मतलब वो आदमी किसी चीज को देखता है और देख करके सीखता है। तो ऐसा महात्मा जिसका उत्तम अंतःकरण है, उसका अगर संग किया जाए तो उसके संग से संसार की दुश्चिंताएं नष्ट होती
3: हैं।
2: जी, और वो कहते हैं जैसे आयु वायु से टकराई हुई मेघों की घटा से झरते हुए जल बिंदु के समान क्षणभंगुर है। अब देखिए कितनी बड़ी सुंदर उपमा देगी। आयु को कहते हैं कि जैसे मेघों की घटा से झरते हुए जल बिंदु के समान क्षणभंगुर है, और हमारे कई संतों ने भी इसको कहा है कि ये कागज की नाव जैसा है, मतलब ये जीवन जिसको हम बहुत स्थायी समझते हैं कि कब वो पानी पड़ा और डूब गया उसमें,
3: या पानी के
2: बुलबुले की तरह है। लेकिन ये सब हम लोग एक दूसरे को सुनने और सुनाने के लिए कहते हैं, सुनता कोई नहीं है इसे, अमल कोई नहीं करता। तो कहते हैं कि जब इन महात्माओं का संग मिलता है तो उनके संग में, उन महात्माओं के जीवन में इस ज्ञान का दृश्य दिखाई देता है कि इस ज्ञान के साथ कैसे वो जीते हैं।
3: जीते हैं, यानी सत्संग बहुत आवश्यक है।
2: हाँ, सत्संग, लेकिन सत्संग उन तत्वदर्शी महात्माओं के संग में होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति सत्संग कर रहा हो जो उन्हीं चीजों से ग्रस्त है जिससे आप ग्रस्त हैं, तो फिर वो बातचीत का विषय बन के रह जाएगा, वो व्यवहार का विषय नहीं बनेगा। और कोई भी ज्ञान जब तक आपके व्यवहार को परिमार्जित और परिवर्तित नहीं करता, तब तक वो ज्ञान महज एक बोझ है। जिसको कई बार कई संतों ने कहा भी है कि जैसे गधे के ऊपर चारों वेद लाद देने के बाद भी वो गधा ज्ञानी नहीं हो सकता, ऐसे ही ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान को सिर्फ आपने ढो रखा है, ढो रहे हैं, क्योंकि वो परंपरा से चली आ रही है, सदशास्त्रों का ज्ञान है, और उसका कोई आपके जीवन में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म में वो ज्ञान है ही नहीं आपके, तो फिर ऐसे में वो ज्ञान आपके लिए भी बोझ है। बल्कि और तो बात छोड़िए, मैंने तो ये तक देखा है कि कई बार ऐसे लोगों से ज्ञान भी लोगों की अरुचि का कारण बन जाता है जो लोग उस ज्ञान से अपने जीवन को प्रकाशित नहीं कर पाते।
3: बिल्कुल, देखिए ये अंतःकरण, उत्तम अंतःकरण के जो संत हैं
2: जी,
3: उनके सानिध्य की बात हुई, तो इसे मैं इसी तरह से देख पा रही हूँ जैसे हम संगीत के जो लोग हैं
2: जी,
3: कहा जाता है कि संगीत कितना भी सीखा जाए लेकिन गुरु के साथ मंच पर बैठकर जब तक उनके साथ न गाया जाए
2: जी,
3: तो वो बात नहीं बनती है।
2: बिल्कुल,
3: तो ये वैसा ही है कि ऐसे उत्तम अंतःकरण के जो महात्मा है उनके साथ है जीवन के संगीत को गाया जाए, तभी हम उसको सही तरीके से गा सकेंगे,
2: क्योंकि जीवन का संगीत सुर में उनके जीवन से परिलक्षित होता है।
3: जी जी,
2: मुझे एक प्रसंग याद आ गया, समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी के बीच का है वो, कि एक बार क्या हुआ कि शिवाजी को, छात्रपति शिवाजी को, उनको शिक्षा देने के लिए कि राजा को राज्य कैसे करना चाहिए, समर्थ गुरु रामदास उनके ही राज्य में भिक्षाटन करने आए
3: जी,
2: और भिक्षा मांग रहे हैं, तो उनको बड़ा कोफ्त हुआ कि हमारा गुरु जिसका शिष्य इस राज्य का राजा
3: है,
2: वो जाकर के प्रजा के, वो भी ऐसे अंत्यज लोग जहां उनके पास खुद खाने की किल्लत है, उनसे मांग रहे हैं, तो वो इतने क्रोध में आए, उन्होंने कहा गुरुजी को क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि राज्य ही उठा करके अपने गुरुजी को दे दिया। हाँ, कहा कि लीजिए राज्य मैं आपको देता हूँ, ताकि अब आपको मांगने की जरूरत नहीं है इस राज्य में। तो वो समझ गए कि देखो इसका अहंकार जो मैं समझ रहा था वही इसके अंदर
3: है।
2: अब छात्रपति शिवाजी जैसा राजा और गुरु का देखिए प्रेम कैसे, ये जो संतों का संग है, मुक्त पुरुष कैसे शिक्षित करते हैं, दीक्षित करते हैं। तो कहते हैं दे दिया। अब अगले दिन जब वो समझ गए, बीमारी जब गुरु को पकड़ में आ गई, तो गुरु उस बीमारी के इलाज के लिए और अब उनके अब सामने, राज्य के सामने ही जिसे वो देख सके, वहां वो भिक्षा मांगने गए, और उन्होंने अपने परिचारकों को लगा दिया कि आप पता करो ये कहां जा रहे हैं, अब तो राज्य इनको मैंने डोनेट कर दिया। तो देखते हैं भिक्षा मांगते हुए, तो फिर अब उनसे रहा नहीं गया और वो गए, उन्होंने कहा कि आपको मैंने राज्य ही पूरा दान दे दिया, अब इस पूरे राज्य के आप राजा हैं, तो ऐसे में आप भिक्षाटन कर रहे हैं, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही
3: जी,
2: है
3: जी।
2: तो वो हंसने लगे, तो वो कहते हैं कि जब तुमने मुझे राज्य दे दिया तो मैं अपने राज्य में क्या करूं, इसको नियंत्रित करने वाले तुम कौन होते हो तुम कौन होते हो। तो वो कहते हैं कि अगर राजा भिक्षाटन करेगा तो फिर राज्य की प्रजा का क्या होगा, राजकोष का क्या होगा, और जो पड़ोस के जो अन्य राज्य हैं उनसे सुरक्षा कैसे होगी। तो वो हंसते हुए कहे कि ये दायित्व मैं तुम्हें देता हूँ, ये तुम करो। तो उस समय वो उनके आंखों में आंसू आ गया, उन्होंने कहा कि राज्य ये तुम्हारा नहीं है, तुम इसके ट्रस्टी हो, ये दायित्व है इन लोगों की रक्षा का, इन लोगों के भरण पोषण का। राजा का पद इतना निश्चिंत पद नहीं है, आप एक परिवार का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं तो आपको अपने जीवन की परवाह नहीं होती।
3: जी, जी,
2: तो जहां बहुत सारे परिवार की खुशी और दुख का कारण आपको बनना है, वहां कितना बड़ा दायित्व आपके ऊपर है कि आप वहां लापरवाह हो सकते हैं, वहां तो और आपको फिक्रमंद होने की आवश्यकता है और सजग होने की जरूरत है। तो इसलिए महात्माओं का संग बहुत आवश्यक है, महात्मा उसका यथार्थ तत्व दर्शन कराते हैं।
3: बिल्कुल जी। अच्छा, एक बात मेरे मन में है कि ये जो शाश्वत शांति की स्थिति होती है मनुष्य के जीवन में, ये किस तरह से प्रतिष्ठित होती है?
2: जी, ये कहते हैं राम जी कि अतः महात्मन जन्म मरण आदि दुखों से रहित, देह आदि उपाधियों से शून्य तथा भ्रांति रहित वह महान विश्रांतिदायक परम पद कौन सा है, जहां पहुंचने से शोक का सर्वथा अभाव हो जाता है। यानी शोक का सर्वथा अभाव शाश्वत शांति प्रदान करता है। राम जी कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि को इस प्रकार मतलब बना ली है कि वो शाश्वत शांति, ऐसा विचार करके हमने सबको त्याग दिया और चिरकाल तक बनी रहने वाली शांति को आज अपने चित्त पर शासन करने के लिए सुदृढ़ अधिकार मुद्रा समर्पित कर दी। तो राम जी कहते हैं कि मेरे चित्त ने संसार के सत्य का ऐसा दर्शन किया कि वो सत्य जान लेने के बाद, जैसे राजा की मुद्रा लग जाने के बाद
3: जी, जी।
2: वो राजाज्ञा हो जाती है। तो ऐसे कहते हैं कि चिरकाल तक बनी रहने वाली शांति को आज से अपने चित्त पर शासन करने के लिए अधिकार मुद्रा समर्पित कर दी है। तो राम जी ने कहा कि वो चीज मैंने समर्पित कर दी है, और इसके लिए कहते हैं कि भोग मेघमाला के बीच में चमकती हुई बिजली के समान चंचल है। राम जी का देखिए उपमा देखिए, वो कहते हैं कि जैसे मेघमाला में चमकती हुई बिजली है, ऐसे ही संसार के जो समस्त भोग हैं वो उस बिजली के समान हैं। और कहते हैं युवा अवस्था के जो मनोरंजन हैं वो जल के वेग के समान चपल हैं। यानी जैसे जल का वेग चपल है, ऐसे ही युवा अवस्था के जो मनोरंजन है वो चपल हैं, ऐसा विचार करके मैंने अपने चित्त को शाश्वत शांति के लिए उस पर अधिकार मुद्रा लगा दी है जिससे मैं शाश्वत शांति की प्राप्ति कर सकूं। तो ये दृष्टि है, जब तक ये दृष्टि नहीं आएगी तब तक जो है ये चिरकाल तक बनी रहने वाली शांति नहीं आएगी, और जो शोक से मुक्त अवस्था है जो चिरकाल तक आपको मुक्ति प्रदान करे वो स्थिति भी हम आसानी से अर्जित नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम इस दृष्टिकोण के साथ दृश्य को न देखने लगे।
3: अच्छा, भगवान श्री राम की दृष्टि में जो ब्रह्मा जी द्वारा रचित ये जगत है वो कैसा है?
2: जगत को हम लोग कहते हैं कि जगत में एक प्रकार का अनुशासन है, पदार्थिक जगत जो है वो अनुशासन के साथ है, सूर्य का उगना डूबना, धरती का अपने अक्ष पर घूमना। तो राम जी कहते हैं कि प्रभो, जो मैंने देखा है इस ब्रह्मा जी के सृष्टि को, ये अव्यवस्थित जगत का आदि अंत कैसे समझ सकूं मैं, ऐसा मुझे ज्ञान दीजिए। क्योंकि ये जो अव्यवस्थित उनको दिखाई दे रही है, ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है ये अव्यवस्थित है, यहाँ कुछ भी व्यवस्थित नहीं। अगर व्यवस्थित होता तो आज देखिए मनुष्य अपने मनोकामना को पूरा करने के लिए पूरी तन्मयता से जीवन भर लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी न उसकी तन्मयता कभी समाप्त हो रही है न उसकी कामना कभी पूरी हो रही है। इसका मतलब एक प्रकार की अव्यवस्था का वो शिकार हो रहा है। तो राम जी कहते हैं कि ये सृष्टि अव्यवस्थित है और इसके पूर्वा पर आदि अंत को मैं समझ सकूं, ऐसा मुझे ज्ञान दीजिए। क्योंकि इस संसार में ग्रहण करने योग्य कोई वस्तु नहीं है, सब त्याज्य ही मुझे दिखाई देता है। तो वो तत्व ज्ञान का उपदेश इसलिए चाह रहे हैं कि वो इस संसार के सत्य को जानने के बाद इससे मुक्त रह करके जीवन मुक्त की तरह विचरण कर सके।
3: चूंकि समय बहुत कम रह गया है तो मैं चाहती हूँ कि बहुत संक्षेप में आप दो मेरे प्रश्न है उनका आप उत्तर दे दें।
2: जी,
3: कि दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल का विनाश कैसे होता है, क्या बताया इस ग्रंथ में, और मन की सत्ता किस रूप में है?
2: आपने दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए। तो मैं कहूंगा कि राम जी कहते हैं कि जो जीव है सामान्य तौर पर मनुष्य, वो दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल की इच्छा के लिए कर्म करता है। वो आप देखें तो हम लोग कर्म करते ही हैं कर्म फल के लिए। राम जी कहते हैं कि कर्म फल की इच्छा से किया जाने वाला कर्म हमेशा बंधनकारी होगा या अज्ञानी का कर्म है ये, जो उसके चित्त को बांधेगा, मन को बांध देगा। तो वो कहते हैं निष्काम भाव से अगर कर्म करना आप जानते हैं, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने पूरी गीता कही अर्जुन से, तो उस निष्काम भाव के साथ कर्म करके आप कर्म फल के आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं और वो दृष्ट अदृष्ट कर्म फल का जो आसक्ति या अनासक्ति है उस दोनों से आप बाहर आ सकते हैं। और जो आपने कहा कि मन की सत्ता किस रूप में है, तो राम जी कहते हैं कि ये जो मन है ये तीनों काल में मन की जो मनन शालिनी सत्ता है, मनन शालिनी का अर्थ होता है विषय चिंतन रूप को अस्तित्व करने वाली सत्ता, यानी विषयों का चिंतन करके उसको अस्तित्व प्रदान करने वाली या उस अस्तित्व से अपने अस्तित्व को सिद्ध करने वाली मन की सत्ता। मन कभी भी देखिए, मन का आधार आप देखें तो स्वयं कोई आधार नहीं है, वो किसी आधार के आधार पर टिका है। इसीलिए हमारे जितने भी संबंध हैं वो परस्पर आधारित हैं। कोई संबंध अकेले नहीं होता। माता पिता, पिता पुत्र, माता पुत्र, ऐसे देखें तो सारे संबंध ये द्वंद्वात्मक हैं। जो भगवान कहते हैं कि द्वंद्व समास में हूं, तो वो जानते हैं कि ये बिना दो की सत्ता के ये मन खड़ा नहीं होगा। तो ये मन की जो मननशील प्रकृति है यही इसकी सत्ता है। अगर इस द्वैत को मिटा दिया जाए तो मन ही शून्य हो जाएगा, मन का जो मननशील या मनन शालिनी जो शक्ति सत्ता है उससे मुक्ति मिलेगी। तो इसीलिए आचार्य शंकर ने कहा कि जो भारतीय भारत का जो ज्ञान परंपरा का जो मूल धरोहर है वो अद्वैत है, जहां पर द्वैत नहीं है, यानी मन के अमन होने की अवस्था। मैंने इसलिए इसी इस ग्रंथ में भी कहा गया है कि मन से मनन करके अमन की स्थिति में आओ। तो मन से ऐसा मनन करें कि इसके मननशील सत्ता का साक्षात्कार हो जाए, ताकि इस साक्षात्कार के बाद आप मन से मुक्त हो सके या मन को शांत कर सके। मन से मुक्त होने का अर्थ ये कदापि नहीं हुआ कि मन की सत्ता मिट जाएगी, उसका अर्थ ये हुआ शांत होना। क्योंकि जब मन मननशील होता है तो वो विषमता के नाते सुख और दुख के चक्र में फंस जाता है और उसी लूप में घूमता रहता है।
3: जी जी, तो शशिकांत जी बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज की। आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हम आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।
3: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की श्री राम द्वारा तत्व ज्ञान उपदेश हेतु प्रार्थना विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना आदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश पाथम का, और आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए, हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त सुनीता सिंह। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। बस थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: ये इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग है।
1: अब आपके सम्मुख दो निर्गुणी पद सुनाती हूँ। पहला पद गोरखनाथ जी का है। दोनों ही पद ऐसे हैं जिन्हें मालवा

आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भक्ति पदों का गायन। कलाकार थीं कलापिनी कोमकली। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। लीजिए प्रस्तुत है नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। परिक्रमा के आज के सफर पर चलिए मेरे साथ। श्रोताओं, आनंद विहार विमेन कॉलेज का 27वां स्थापना दिवस कल यानी सोमवार को उत्साह और गरिमामय माहौल में मनाया गया। छात्राओं ने गणेश वंदना पर कथक नृत्य के कार्यक्रम को शुरू किया, जबकि शुभ दिन आयो रे और बदरा छाए के झूले आया सावन झूम के जैसी प्रस्तुतियों ने माहौल को सांस्कृतिक रंगों से भर दिया। मुख्य आकर्षण जम्मू कश्मीर की लोक संस्कृति पर आधारित भदेरवाही लोक नृत्य रहा, जिसमें भदेरवाह क्षेत्र के पर्वतीय जीवन, सामुदायिक उत्सव, प्रकृति से जुड़ाव और पारंपरिक लोक धुनों को सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज की चेयरपर्सन हेना बोस, वनिता समाज की चेयरपर्सन मधुसरन और कॉलेज के परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। भोपाल के युवा गायक, अभिनेता और संगीतकार करणदीप मट्टू अपनी गायकी से देश भर में पहचान बना रहे हैं। अधिरोह बैंड के लीड सिंगर करणदीप अब सोलो परफॉर्मेंस के जरिए भी अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इंदौर, रायपुर और आगरा में लाइव कॉन्सर्ट्स में प्रस्तुति देकर दर्शकों की सराहना हासिल की है। उनके चर्चित गीतों में नई लगदा दिल मेरा, चल ले चल बाजार और कुड्डी पंजाबी शामिल है। करणदीप खुद गीत लिखते हैं और उनकी धुनें भी तैयार करते हैं। उन्होंने भोपाल में संगीत गुरु सज्जन लाल भट्ट से भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है। वो संगीतकार जोड़ी सलीम सुलेमान और गायिका ऋचा शर्मा के साथ मंच साझा कर चुके हैं। भारत के अलावा श्रीलंका और दुबई में भी प्रस्तुति देकर करणदीप ने बताया है कि वो अपने शहर भोपाल में भी लाइव परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं।

श्रोताओं, शैडो ग्रुप द्वारा शैडो स्पेस में 16 से अधिक आयु के युवाओं के लिए नाट्य कार्यशाला मंगलवार से शुरू होगी। कार्यशाला 5 अगस्त तक रोज शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। इसका निर्देशन वरिष्ठ रंगकर्मी मनोज नायर करेंगे। प्रतिभागियों को अभिनय के साथ माइम, सबस्टेक्स, इमिटेशन, बॉडी लैंग्वेज, मंची अभिव्यक्ति, आवाज के प्रयोग और पात्र निर्माण का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। संगीत, योग, ताल, रस, भाव और शारीरिक अभ्यासों के माध्यम से एकाग्रता, आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच विकसित करने पर भी जोर रहेगा। आयोजकों के अनुसार कार्यशाला का उद्देश्य रंगमंच के जरिए व्यक्तित्व विकास और संवाद कौशल को निखारना है। इसका समापन 5 अगस्त को प्रतिभागियों की लघु नाट्य प्रस्तुतियों के साथ होगा, जिसमें वे सीखे गए कौशल का प्रदर्शन करेंगे।

श्रोताओं, भारत भवन की रंगदर्शनी दीर्घा में रूपाभ प्रदर्शनी श्रृंखला के तहत 8 मॉडर्न आर्टिस्ट के जल रंग यानी वाटर कलर चित्रों की ग्रुप एग्जीबिशन आज यानी मंगलवार से शुरू हो रही है। एग्जीबिशन 26 जुलाई तक चलेगी। प्रदर्शनी शाम 5 बजे शुरू होकर रात 8 बजे तक जारी रहेगी। प्रदर्शनी में 8 प्रतिष्ठित वाटर कलर आर्टिस्ट की उत्कृष्ट कृतियां प्रदर्शित की गई हैं। समय एक बार फिर आप सुन लें, ये एग्जीबिशन दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेगा।

भारत भवन के ही एक और आयोजन की जानकारी खास आपके लिए। सावन की लोक संगीत परंपरा को समर्पित 3 दिवसीय कजरी झूला गायन महोत्सव का आयोजन भारत भवन के अनहद में 24 से 26 जुलाई तक होगा। रोजाना शाम 7 बजे शुरू होने वाले इस उत्सव में देश के ख्यात लोक और शास्त्रीय कलाकार कजरी झूला और पूर्वांचल की पारंपरिक गायकी प्रस्तुत करेंगे।

श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी की 46वीं पुण्यतिथि पर 26 जुलाई को रवींद्र भवन के अंजनी ऑडिटोरियम में यादें रफ़ी साहब संगीत में श्रद्धांजलि यानी स्वरांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसका आयोजन एंजल म्यूजिकल ग्रुप और महर्षि दयानंद जन कल्याण संस्था के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कई गायक गायिकाएं लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ मोहम्मद रफ़ी के लोकप्रिय और सदाबहार गीतों की प्रस्तुति देंगे। इस मौके पर शहर के संगीत प्रेमियों के साथ कई विशिष्ट अतिथि और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

और श्रोताओं, 1 अगस्त को होगा गुरु वंदन महोत्सव। साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में कार्यरत मधुबन संस्था अपने 56वें गुरु वंदन महोत्सव का आयोजन 1 अगस्त को करेगी। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 6:30 बजे मानस भवन में आयोजित होगा। संस्था की ओर से आयोजित होने वाला ये महोत्सव गुरु शिष्य परंपरा को समर्पित है। संस्था की 55 सालों की सांस्कृतिक यात्रा का ये विशेष पड़ाव भी है। कार्यक्रम पंडित नंद किशोर शर्मा और स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल की पुण्य स्मृतियों को समर्पित है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। परिक्रमा के आज का अंक अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: श्रोताओं, रेडियो आज़ाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। लीजिए प्रस्तुत हैं कुछ देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कुछ देशभक्ति गीत। उम्मीद है आज के ये गीत आपको पसंद आए होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बहुत कुछ है खास आपके लिए। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, राष्ट्र मात्र भूखंड नहीं, ये हमारी अनुभूति है, हमारी चेतना, हमारा अभिमान है। तभी तो हर भारतवासी गर्व से कहता है, हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, यही है हमारा अगला कार्यक्रम। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: हिंदुस्तान हमारा है, स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: आजाद हिंद फौज का विश्व इतिहास में विशेष महत्व है। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। किसी भी राष्ट्र में किसी सेनानी या जन नेता द्वारा आजादी के लिए साहसी लोगों की इस तरह की सेना तैयार करने के उदाहरण बिरले ही मिलते हैं। इस फौज की स्थापना भारत से विदेशी शासकों को निकालने की खातिर की गई थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा मलाया और सिंगापुर के भारतीय सैनिकों को एकत्र करके बनाई गई आजाद हिंद फौज का कार्य 4 जून 1943 को सिंगापुर में शुरू हो गया था, जहां स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार भी बनाई गई थी। नेताजी के साथ हजारों भारतीयों ने देश को स्वतंत्र करने का प्रण लिया था। हिंद की सेनाओं ने इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश फौजों से लड़ाई की। इस सेना की कार्यशैली ने लाखों लाख लोगों को प्रेरणा दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आजाद हिंद फौज की बदौलत नए अर्थ मिले थे। आजाद हिंद सरकार को संसार की 3 बड़ी ताकतों जर्मनी, जापान और इटली के साथ 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। मन में नए भारत के निर्माण का सपना लिए आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस भारत की गौरवमयी शख्सियत के रूप में विश्व का अविस्मरणीय इतिहास बन गए।
2: अरे राजू, क्या कर रहा है?
3: समोसे का मसाला बना रहा हूँ काका।
2: अच्छा, नमक मिर्च जरा कम डालना समोसे में। 2 दिन में कम से कम 10 ग्राहक ज्यादा मिर्ची की शिकायत कर चुके हैं।
3: अरे काका, ये मुकेश रोज बातों में उलझा रहता है, मैं क्या करूं? ना तो खुद काम करता है, ना मुझे करने देता है।
2: अरे क्यों बेचारे उस गरीब को दोष देता है? ये क्यों नहीं कहता कि रेडियो के इन ऊल जलूल गानों पर ध्यान ज्यादा रहता है तेरा?
4: राम राम काका।
2: नमस्कार बेटा, नमस्कार।
5: चाय पिलवा दीजिए काका जल्दी से।
2: हाँ बेटा, अभी लगवाता हूँ। अरे राजू, 2 बढ़िया सी चाय बना दे। और बताओ कैसे हो तुम लोग? अरे बहुत दिनों बाद आना हुआ तुम लोगों का।
4: हाँ काका, आजकल थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई में लगे।
2: अरे वो तुम्हारा साथी वही क्यों खड़ा है?
5: अरे वो, उसको तो काका दिन रात कान में हेडफोन लगा के एफएम रेडियो सुनने की आदत लग गई है। पढ़ाई भी करता है तो गाने सुनते सुनते।
4: हाँ काका, और इसलिए हमने उसका नाम राकेश रंजन से राकेश रेडियो रंजन रख दिया है।
2: जिसको देखो रेडियो, जहाँ देखो रेडियो, ये भी कोई बात है भला?
5: बात तो है काका, रेडियो ने तो जैसे आजकल क्रांति ला दी है।
2: अरे रेडियो से तो क्रांति तब आई थी जब आजाद हिंद रेडियो से नेताजी बोलते थे।
4: आजाद हिंद रेडियो?
2: हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चलाया रेडियो, जिस पर उनके जोशीले भाषण प्रसारित होते थे और उनसे जैसे पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ जाती थी।
5: अच्छा,
4: लीजिए भाई चाय।
2: हाँ लो चाय, अरे चाय पियो तुम लोग, मैं जरा भट्टी देख कर आता हूँ।
4: अरे नहीं काका, अब तो बात निकली है तो दूर तलक जाए।

0: वो एक तरफ से बुरी तरह घिरे हुए हैं और इस दूसरी तरफ से हम उन्हें घेर कर ज्यादा मुसीबत में डाल सकते हैं।
1: नहीं नहीं, ऐसे में तो हम स्वयं ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरा विचार तो यह है कि मुश्किल की इस घड़ी में यदि हम अंग्रेजों का साथ दें, उनका संबल बने, तो हमें अवश्य ही कुछ प्रतिसाद मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है?
0: यदि आप सब ऐसा ही सोचते हैं तब भी मैं आपके साथ नहीं हूं। अब हमारे मार्ग अलग होंगे। आप अपनी तरफ से स्वतंत्रता प्राप्ति की कोशिश करें और मैं अपने मार्ग पर चलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।
2: क्यों भाई, पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष बाबू तो अलग ही पड़ गए।
3: वो अलग पड़ने वालों में नहीं है भाई।
4: मैंने सुना है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया है
3: और अब तो उनसे लोग जुड़ने भी शुरू हो गए हैं।
5: सुना आपने, सुभाष अब खुद ही नेताजी हो गए हैं। उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया है और अब तो उनकी बातों का असर जनता पर भी होने लगा है।
1: लेकिन कितने लोगों पर होगा? मुट्ठी भर लोगों का साथ पाकर भला अंग्रेजों का मुकाबला तो नहीं किया जा सकता। आप तो ये बताइए कि 20 मार्च को होने वाले अधिवेशन की क्या तैयारी है?
5: उस अधिवेशन का सारा कार्य मौलाना अबुल साहब को सौंप दिया गया है। वे ही उस दिन जनता को संबोधित करेंगे और ये बताएंगे कि इस समय अंग्रेजों का साथ देने में ही हमारा हित है।
1: कौन है भाई?
6: जी पत्र है।
1: लाइए।
5: क्या बात है?
1: लिखा है कि हमारे अधिवेशन के ही दिन सुभाष बाबू भी रामगढ़ में जनता को संबोधित करने वाले हैं और उनका यह उद्बोधन समझौता विरोधी होगा। पता नहीं अब क्या होगा।
5: अब हम तो कुछ कर नहीं सकते। उनके अपने विचार हैं, वो जब चाहे व्यक्त करें। चलिए देखते हैं क्या होगा 20 तारीख को।
7: शांत हो जाइए सब लोग। आप लोग बैठ जाइए, कृपया शांति बनाए रखें। सभा को अब हमारे नेताजी संबोधित करेंगे।
0: यहां उपस्थित भारत माता के वीर सैनिकों, आप सब जानते हैं कि हम यहां क्यों इकट्ठा हुए हैं। हम अंग्रेजों का साथ देने की नीति का विरोध करते हैं। अंग्रेजों से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भीख मांगने से स्वाधीनता कभी नहीं मिलेगी। स्वाधीनता प्राप्त करने का एक ही हथियार है और वो है युद्ध। अब यूरोप की हर एक चोट के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की भारत में पकड़ ढीली होती जाएगी। इस समय भारतवासियों को अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जय हिंद,
8: जय हिंद।
3: नेताजी को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समर्थन मिल ही गया?
9: नहीं, उनके साथ कार्यकर्ता तो बहुत जुड़ गए थे पर बाकी कहीं से भी उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा था। ऊपर से उस वक्त उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया।
10: तब तो सारा आंदोलन ठप पड़ गया होगा।
3: और काका, वो रेडियो वाली बात का क्या हुआ?
9: हाँ, बताता हूँ भाई। असल में नेताजी ने तो जेल में ये कहकर भूख हड़ताल शुरू कर दी कि या तो रिहाई दो या मौत। बहुत मनाने पर भी वो नहीं माने। ऐसे में अंग्रेजों ने उन्हें उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया। नेताजी तो नेताजी थे, कड़े पहरे के बावजूद वो अपने घर से ही नहीं बल्कि आश्चर्यजनक रूप से हिंदुस्तान से गायब हो गए और सीधे जर्मनी पहुंचे। और यहीं से शुरू हुआ आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद रेडियो का सफर।
5: सर, आपसे कोई इंडियन मिलने आया है।
11: इंडियन?
5: हाँ, कहता है जरूरी काम है।
11: ठीक है, भेजो।
5: जी।

0: आइए आइए, कहिए
1: जी। मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है, मैं एक भारतीय हूं। अंग्रेजों से अपने देश को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं और इसी संबंध में आपसे कुछ मदद चाहता हूं।
0: मुझसे मदद? कैसी मदद चाहते हैं?
1: देखिए, आपकी जर्मन जेलों में जो भारतीय कैदी हैं, आप उन्हें रिहा कर दीजिए।
0: क्या?
1: जी, मैं उन बंदियों का इस्तेमाल ब्रिटिश सेना के खिलाफ संघर्ष में करूंगा।
0: लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं?
1: आप कृपया मेरी बात को समझें। देखिए, एक तरफ आपके देश की सेना ने अंग्रेजों को पहले से ही घेर रखा है, दूसरी तरफ मैं अगर इन साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला करूं तो अंग्रेज काफी कमजोर हो जाएंगे।
0: तो आपका मतलब है कि ये हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ेंगे?
1: जी बिल्कुल।
0: ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सारे भारतीय बंदियों को आज और अभी रिहा किया जाता है, जाइए, आप लोग जा सकते हैं।
3: अरे ये अचानक जर्मन सरकार को हम भारतीयों पर इतनी दया कैसे आ गई?
4: कोई बात तो जरूर है।
5: हाँ, एकदम से उन्होंने हमें क्यों रिहा किया जबकि हमारी सजा तो अभी पूरी नहीं हुई?
6: लगता है इसके पीछे अवश्य कोई ना कोई उद्देश्य होगा।
7: चाल नजर आती है तो
8: नहीं, कोई कारण तो जरूर
9: छोड़ेंगे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही
10: जरूर होगी हमें छोड़ने की।
2: आइए आइए, आप सबका स्वागत है। आपने बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया, आप सबको रिहा कराने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है। मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है और
11: आप भारत से आए हैं, आपको कौन भारतीय नहीं जानता सुभाष बाबू। स्वतंत्रता प्राप्ति की आपकी कोशिशों के बारे में हम सब ने सुन रखा है, लेकिन हम आपके किस काम आ सकते हैं?
2: भाइयों, आप लोग एक काम करें, इतने समय बाद आजाद हुए हैं तो आज आराम कर लें, कल सभी एक जगह इकट्ठा होकर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, इतना तो मैंने कल आप सबको बता ही दिया था कि एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको रिहा कराया गया है। मैं अब चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ मिलकर भारत माता को स्वतंत्र कराने में मेरी मदद करें, हम सब मिलकर अंग्रेजों का सामना करेंगे।
12: लेकिन हम तो केवल 30-35 लोग हैं।
13: और हाँ भाई, फिर इतनी दूर जर्मनी से हम भला भारत को कैसे आजाद करा सकते हैं?
2: साथियों, जहां चाह है वहां राह है। देखिए, बात यदि संख्या की ही है तो आपकी ही तरह हमारे हजारों साथी इटली और यूरोप के देशों में बंदी हैं, हम उन्हें भी किसी ना किसी तरह छुड़ा लेंगे। और रही बात दूरी की, तो हौसला होने पर क्या कुछ नहीं किया जा सकता। कहिए, क्या कहते हैं आप लोग, देंगे मेरा साथ? बताइए, क्या आप अपनी मातृभूमि का ऋण अदा नहीं करेंगे? तो ठीक है साथियों, आज से हम सब एक हैं, हमारा उद्देश्य भी एक है। हम सब जब भी मिलेंगे तो नमस्ते नहीं कहेंगे, जय हिंद बोलेंगे, और हमारा नारा होगा आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद
14: जिंदाबाद,
2: आजाद हिंद
14: जिंदाबाद।
11: और हम सब आपको नेताजी कहेंगे, हमारे नेताजी, नेताजी
14: जिंदाबाद,
11: नेताजी
14: जिंदाबाद,
11: नेताजी
14: जिंदाबाद।
12: पर नेताजी, हमारे संगठन का पहला उद्देश्य तो और साथियों को जोड़ना ही तो होगा ना?
2: नहीं, हमें सबसे पहले अपनी आवाज हिंदुस्तान के हर एक बाशिंदे तक पहुंचानी होगी, ताकि दूसरे हजारों हिंदुस्तानी भाई भी आजादी की राह पर चलने के लिए प्रेरित हो सकें।
12: नेताजी, लेकिन ये सब जर्मनी में रहकर कैसे संभव है?
2: हम अपनी बातों को अपने देश तक पहुंचाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करेंगे।
15: रेडियो का? रेडियो का?
2: हाँ साथियों, हमारे रेडियो का नाम होगा आजाद हिंद रेडियो, जिससे कहीं हमारी हर बात आजादी का एक नया द्वार खोलेगी और सात समंदर पार होते हुए भी हर एक हिंदुस्तानी को झकझोरेगी। आजाद हिंद
14: जिंदाबाद,
2: आजाद हिंद
14: जिंदाबाद।
16: नमस्कार, हम आजाद हिंद रेडियो बर्लिन से बोल रहे हैं और अब आपसे मुखातिब होंगे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्यारे भारतवासियों,
4: अब वो समय आ गया है जब हम सबको मिलकर आवाज बुलंद करनी होगी। देश को आजाद कराने का मार्ग हमें स्वयं बनाना होगा। अब ये समय अनुनय विनय का नहीं। गोरों को मौन की भाषा समझ नहीं आती। हमें अपनी चुप्पी तोड़ना ही होगी और मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराना ही होगा। जय हिंद।
16: अभी आप सुन रहे थे बर्लिन से आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण, जिसमें नेताजी ने बताया कि भारतवासियों के लिए
0: कौन है?
1: अरे भाई मैं हूँ, मैं बनवारी।
0: अच्छा तू है, रुक जा खोलता हूँ।
1: हाँ क्यों, क्या हुआ? अच्छा लगता है तू चुपके आजाद हिंद रेडियो सुन रहा था।
0: हाँ भैया, चुपके ही सुनना पड़ता है, कहीं अंग्रेजों ने सुन लिया तो
1: क्या कर लेंगे। अब तो हम ही नहीं, आजाद होने की चाहत में पूरा हिंदुस्तान आज नेताजी का आजाद हिंद रेडियो सुनता है।
0: हाँ सो तो है, देखना नेताजी देश को जरूर आजाद करा के रहेंगे।
2: जी नेताजी, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। आप क्या कह रहे थे
5: नेताजी? खबर मिली है कि हमारे प्रसारण का असर हिंदुस्तान में अब दिखने लगा है।
13: जी, एक तरफ जहां आज हिंदुस्तानी हमारी बातों से प्रेरित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज सरकार की नींद उड़ गई है।
2: ये सब तो ठीक है, याद रखें यह हमारे उद्देश्य का पहला चरण है। हमारा प्रसारण नियमित अंतराल पर होता रहेगा। अब हमारा अगला काम है अपने साथ और भी साथियों को जोड़ना, और इसके लिए हमें परदेश में ही दूसरे हिंदुस्तानी भाइयों को ढूंढ निकालना होगा।
5: नेताजी, एक जानकारी के मुताबिक हमारे 10,000 हिंदुस्तानी भाई जर्मनी के ही एनाबर्ग कैदखाने में कैद हैं।
13: जी, और इसी तरह इटली की जेलों में भी कई भारतीय बंदी हैं। यदि ये सब हमारे साथ मिल जाए तो हमारा संगठन बेहद मजबूत हो जाएगा।
2: बहुत अच्छे, तो फिर मैं जल्दी ही इसके लिए इटली और जर्मनी सरकार से बात करता हूँ। आजाद हिंद
14: जिंदाबाद,
2: आजाद हिंद
14: जिंदाबाद।
0: आइए नेताजी, कहिए कैसे आना हुआ?
2: बस फिर एक बार आप लोगों को मदद करनी होगी।
0: किस तरह की मदद चाहते हैं आप?
2: जिस तरह आपने पहले हमारी मदद की थी।
0: तो मतलब कोई कैदी बचे नहीं?
2: मैं आपकी जेल में बंद कैदी हूँ, जैसे आप कहीं कैद खाना है ना, बंद हम चाहते हैं।
16: नमस्कार, ये बर्लिन से आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण है। समस्त हिंदुस्तानियों को यह जानकर हर्ष होगा कि आजाद हिंद फौज का विस्तार हो चुका है। जर्मनी और इटली की जेलों में बंद हजारों भारतीय बंदी अब नेताजी के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाएंगे और भारत को आजादी का सूरज दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।
2: आजाद हिंद फौज में आए नए सैनिकों का स्वागत है। आइए हम सब प्रण लें कि हम अपनी आखिरी सांसों तक मातृभूमि की रक्षा करेंगे। हम अपना जीवन स्वतंत्रता पथ पर न्यौछावर कर देंगे। आप सबका नेता होने के नाते मैं आप सबसे वादा करता हूं कि हम आजाद होकर ही रहेंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद
14: जिंदाबाद,
2: आजाद हिंद
14: जिंदाबाद,
2: नेताजी
14: जिंदाबाद,
2: नेताजी
14: जिंदाबाद।
2: साथियों, ये सही है कि अब हमारा संगठन काफी बड़ा हो गया है, लेकिन हम सबको ये याद रखना होगा कि बिना तैयारी के इम्तिहान नहीं दिया जाता। युद्ध के पहले हम सबको कठिन प्रशिक्षण के दौर से गुजरना होगा, और मैंने इसके लिए जर्मन सैन्य अधिकारियों से बात भी कर ली है। मैं यह भी जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग सेना में या फिर कहीं दूसरे स्थान में बड़े पदों पर आसीन रहे होंगे, लेकिन यहां हम सबको एक सैनिक की तरह काम करना होगा। हम में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा। हम सबका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आजादी है, और इससे परे हमें कोई सरोकार नहीं।
14: आजाद हिंद जिंदाबाद,
2: आजाद हिंद
14: जिंदाबाद,
2: नेताजी
14: जिंदाबाद,
2: नेताजी
14: जिंदाबाद।
12: नेताजी किस सोच में पड़े? क्या तबीयत ठीक नहीं है आपकी?
2: नहीं नहीं, मैं श्री रास बिहारी बोस के बारे में सोच रहा था।
12: वो कौमी वीर रास बिहारी बोस जी?
2: हाँ, वो पिछले काफी समय से जापान में रहकर हमारी तरह ही भारत माता को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि हम उनसे मिल जाएं, तो हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी।
12: और हम यहाँ जर्मनी में और वो जापान में।
7: नेताजी, सुबह पत्र आया था आपके लिए।
2: देखो तो जरा किसका पत्र है।
12: अरे नेताजी, ये उन्हीं राज बिहारी बोस जी का पत्र है जापान से।
2: क्या?
12: हाँ, लिखते हैं कि आप ही की तरह उन्होंने भी जापान में एक बड़ी फौज तैयार की है।
2: अच्छा।
12: और अब बुजुर्गियत के चलते वो इसकी कमान आपको सौंपना चाहते हैं, और इसीलिए आपको जापान बुलाया है।
2: और आगे पढ़ो।
12: आगे लिखते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया के 30 लाख भारतीय तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं, आओ और मुझे मुक्ति दो।
2: मैं सोचता हूँ यही ठीक भी रहेगा, क्योंकि जापान से भारत की गतिविधियों पर नजर भी आसानी से रखी जा सकती है। हम जल्द से जल्द अब जापान जाएंगे।
12: लेकिन आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? विश्व युद्ध के चलते आपकी यात्रा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।
2: वैसे भी प्राणों के संरक्षण के बाद त्याग ही होता है, तो फिर त्याग से बचाव कैसा? जर्मन सरकार को लिख दो कि हम अपनी जिम्मेदारी पर जापान जाने के लिए तैयार हैं, हमारी यात्रा का प्रबंध जल्द से जल्द किया जाए।
12: जैसा आप कहें।
2: आजाद हिंद फौज की ताकत बढ़ाने और एशिया के देशों का समर्थन हासिल करने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं होगा। और फिर अब मैं मातृभूमि के और भी पास हो जाऊंगा।
10: आज की ताजा खबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे।
17: जापान जाते वक्त नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त और
18: अरे ना दिखाना इधर।
19: अच्छा, विमान दुर्घटना।

0: नमस्कार, ये आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण है। अब आप सुनिए स्वयं नेताजी को। मैं सुभाष बोल रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश संवाददाता ने संपूर्ण विश्व में प्रचार किया है कि मैं टोक्यो जाते समय एक विमान दुर्घटना में मारा गया हूं। मैं मर जाऊं इस बात की उन्हें खुशी होगी और वे यही चाहते भी हैं, परंतु उनका दुर्भाग्य है कि मैं आज भी जिंदा
1: हूं।
2: मतलब वो खबर अंग्रेजों की एक चाल थी।
3: हाँ भाई हाँ,
4: यानी कि नेताजी सुरक्षित जापान पहुंच गए थे।
3: हाँ, न सिर्फ वो जापान पहुंचे बल्कि उन्होंने जल्द ही वहां पर काम करना शुरू भी कर दिया। एक सम्मेलन में राजबिहारी बोस ने संपूर्ण आंदोलन की बागडोर नेताजी के हाथों में सौंप दी।
5: मित्रों, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए आज तक सेना की कमी थी, आपने वो कमी पूरी कर दी। स्वाधीनता की लड़ाई में सबसे बड़ी लड़ाई आजाद हिंद फौज की ही होगी। हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। दिल्ली चलो का नारा लगाते अब हमें तब तक चलते जाना है जब तक कि हमारा राष्ट्रीय झंडा नई दिल्ली के वॉइसराय भवन पर नहीं फहराने लगे और आजाद हिंद फौज पुराने लाल किले के अंदर विजय परेड ना करे।
6: भारत माता की जय, भारत माता की जय, आजाद हिंद।

0: जल्द ही आजाद हिंद फौज ने ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अरे हाँ, उसके पहले नेताजी की बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही कि उनकी कोशिशों के चलते आजाद हिंद फौज को आजाद हिंद सरकार घोषित कर दिया गया। फौज को सबसे पहले जापान ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के रूप में मान्यता दी। उसके बाद चीन, इटली, आयरलैंड और सिंगापुर ने भी आजाद हिंद सरकार को अपनी मान्यता दी।
1: अरे वाह, मतलब देश की आजादी के पहले सरकार भी बन गई और दूसरे देशों का समर्थन भी हासिल कर लिया।
2: तो फिर क्या हुआ काका?
0: और उसके बाद भी कई लड़ाइयां लड़ी नेताजी ने और उनकी आजाद हिंद फौज ने, और लगातार कोशिश करते रहे आजादी के लिए। पर उसके बाद नेताजी का क्या हुआ, ये तो आज तक भी एक रहस्य ही बना हुआ है।
1: मतलब
0: भाई, कोई कहता है कुछ घटना दुर्घटना हो गई, तो कोई उनके गुमशुदा होने की बात कहता है।
1: सच काका, देश प्रेम की ऐसी मिसाल कहां मिलेगी जहां एक अकेले आदमी ने न सिर्फ अपने दम पर देश की सरहदों को पार किया बल्कि लाखों लोगों को देश प्रेम की राह पर चलने के लिए प्रेरित भी किया।
0: हाँ, तो असली रेडियो का मतलब अब समझ में आ गया होगा, क्यों भाई रेडियो रंजन?
3: चलिए काका, अब हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई।
0: अरे बेटा, तुम जैसे नौजवानों को ये सब बताना तो मेरा फर्ज है।
1: तो फिर काका, अगली बार भी फर्ज निभाने के लिए तैयार रहिएगा, हम जल्दी आएंगे।
0: जरूर आना। नमस्कार, जरूर। नमस्कार, नमस्कार।
4: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: ये थे राष्ट्र अभिमान के स्वर, देश की गौरव गाथा कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। अगले कार्यक्रम के लिए इंतजार करें बस जरा सा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। दोस्तों, कहते हैं कि जान है तो जहान है। बिल्कुल सच, 100% सही बात है ना। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो ये दुनिया खूबसूरत है। जो कुछ हमारे पास है उसका हम मजा ले सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम बीमार हो गए, अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, तो फिर कुछ भी हमारे पास हो, दुनिया की सारी दौलत हो, सारे सुख और सारी सुविधाएं हो, लेकिन वो सभी कुछ बेमजा हो जाती हैं। तो इसी बात के मद्देनजर आपसे हम करते हैं स्वास्थ्य चर्चा। कुछ छोटी छोटी बातें जिनका आप ख्याल रखें तो आप रह सकते हैं चुस्त दुरुस्त, जिंदगी आपकी खुशनुमा रह सकती है और आप हमेशा मुस्कुराते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अंतराल, हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

0: छेड़ देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा और स्वास्थ्य चर्चा में आज बात होगी जंक फूड पर। इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता आनंद जी। श्वेता जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: श्वेता जी, जंक फूड इस वक्त बहुत ज्यादा प्रचलन में है। हम आपसे जानना चाहेंगे पहले तो कि जंक फूड किस श्रेणी में आया, इसकी क्या डेफिनेशन है और फिर इसके प्रभाव पर बात करेंगे।
3: जंक फूड्स ऐसे बोलें डेफिनेशन में, ऐसे खाने जिसमें हाई मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, शुगर, ऑयल्स होते हैं। अब जंक फूड के अलावा आजकल एक शब्द और चला, जंक्स फूड।
2: अच्छा।
3: जंक्स फूड का आधार है या मतलब है कि जंक फूड, जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें बहुत हाई मात्रा में शुगर, फैट, ऑयल्स होना। इसके अलावा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स मीन्स ऐसे फूड जिसमें हमने खूब सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए लेकिन साथ में एडिटिव, फ्लेवर्स, कलर्स मिलाए। दे आर न्यूट्रिशनली वेरी डिप्राइव्ड। जो आज की बातों में हमें विटामिन, मिनरल्स जो बहुत हेल्प करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, इस जंक फूड्स में ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कैफीन, टी, शुगर्स, एडेड जो भी हमारे फ्लेवर्ड ड्रिंक्स होते हैं, इसे कार्बोनेटेड बोलते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात, जो स्वीटेंड ड्रिंक्स होते हैं, स्वीटेंड बेवरेजेस होते हैं, ये सब जंक फूड की श्रेणी में आते हैं। तो अब जंक फूड एक तरह से कहा जाए तो जंक्स फूड हो गया है।
2: जंक फूड की श्रेणी में कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी भी आ गई है।
3: केवल ये शुगर, टी वाली जो चीजें, जो पेय के अलावा, इवन जो हम फ्रेश जूसेस समझते हैं जो पैकेट में आते हैं, वो भी जंक फूड की श्रेणी में आते हैं क्योंकि उसमें एडिटिव फ्लेवर्स डले हुए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रूट्स के जूसेस होते हैं, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज बहुत बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी एज कम्पेयर टू ये प्रिजर्व्ड फूड ड्रिंक्स और जूसेस।
2: चूंकि आपने बताया कि प्रिजर्वेटिव उसमें होते हैं, शुगर एडिड होते हैं, तो ये भी जंक उसी श्रेणी में आ गए और नुकसान लगभग उतना ही करते हैं।
3: बिल्कुल। सडन राइज, कोई भी खाना जो सडन सुक्रोज देगा, फ्रक्टोज देगा, वो हमेशा शरीर के लिए हानिकारक रहेगा। तो जितने स्वीटेंड होते हैं इसमें हाई मात्रा में शुगर होती है, तो ये अभी जंक फूड के श्रेणी में आएंगे।
2: क्या जंक फूड की कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू भी होती है, और अगर होती है तो क्या?
3: न्यूट्रिटिव वैल्यूज में कैलोरीज बोले तो इट इज फुल ऑफ हाई कैलोरी डेंस फूड, बट यदि हम विटामिन्स, मिनरल्स बोले तो ऑलमोस्ट निल, दे डोंट हैव एनी विटामिन मिनरल्स। तो न्यूट्रिशनली ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और ये शरीर को हानि पहुंचाते हैं।
2: ऑलमोस्ट जंक फूड तो शायद हर इंसान खा रहा है, तो इससे कैसे बचा जाए? और फिर ये चीज सोसाइटी में जिस तरह से फैली है बुराई, तो उसको कैसे बाहर आया जाए इससे?
3: देखिए, चीटिंग डे सबने सुना है, तो सर्विंग पर वीक हफ्ते का एक, शायद एक मील अलाउ कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। ऑलवेज ऑलवेज वी शुड गो विथ होम बेस्ड फूड। और यदि हम बच्चों के लिए एनफोर्स करें नहीं तुम जंक फूड मत खाओ, तो पहले हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ही घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। बच्चों को यदि हमने आदत डाली है तो हमें काम रहना पड़ेगा, हम एनफोर्स नहीं कर सकते। स्लोली चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, फोर्स फीडिंग नहीं कर सकते, बट विद टाइम बेबी एडजस्ट होता है एंड दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद द होम फूड। बट सबसे पहले हमसे शुरुआत होगी, तो हमें भी हफ्ते का एक, यस, नेग्लिजिबल, वो भी उसमें हमें देखना चाहिए कि एनर्जी जो कंटेंट है दैट शुड बी लेस देन 10%, द फैट कंटेंट शुड बी लेस देन 10% ऑफ द टोटल एनर्जी इनटेक। तो आइडियली जंक फूड को हमारे से ना शुरुआत होगी तब बच्चों को हम ना कर पाए। होम बेस्ड फूड बनना चाहिए, घर पे बनना है, पैक्ड फूड मना करना। इवन जितने आपके चिप्स पे होते हैं ये पाम ऑयल में बनते हैं। पाम ऑयल सबसे घटिया क्वालिटी का ऑयल होता है एज कम्पेयर टू, यदि हम यूएसए के देखें, दे मेक द एवरी चिप्स इन सनफ्लावर ऑयल, और ये हमारे पाम ऑयल जो कई बार यूज होकर रिफाइंड कुकिंग हो चुकी होती है शायद, तो ये हमें सबसे जरूरी है। हम लीफलेट देखेंगे तो दे आर मेड ऑफ पाम ऑयल, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल एंड विथ लो ग्रेड। एक आपने सुना होगा सैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स आगे लॉन्ग टर्म में हार्ट डिजीजेस कराते हैं, और पाम ऑयल एक तरह का सैचुरेटेड फैट है जिसे सबसे कम मात्रा में करना चाहिए। यही सनफ्लावर देखेंगे वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है जिसमें हार्ट डिजीज की चांसेस कम रहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ऑयल्स चेंज करके खाना चाहिए। पर ये जितने जंक फूड्स हैं इसकी जो ऑयल कंटेंट है दे आर ऑफ वेरी बैड क्वालिटी, सो वन शुड अवॉइड।
2: जंक फूड जो लोग खा रहे हैं उसके नुकसान क्या होते हैं अगर जंक फूड जो लोग खा रहे हैं उन्हें?
3: जैसे जंक फूड का मैंने बताया हाई कैलोरी डेंस, हाई एनर्जी है, तो जब बच्चा ज्यादा एनर्जी ड्रिंक फूड्स, एनर्जी खाना खाएगा तो ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा, और यदि बच्चे में मोटापा होगा, आज की लाइफ में आप देख रहे हैं फिजिकल जो एक्टिविटी ऑलमोस्ट ना, सेडेंट्री लाइफ ज़्यादा हो गई है क्योंकि मोबाइल्स हो गए, तो चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी बच्चों में ओबेसिटी की मात्रा बहुत बढ़ गई, ओबेसिटी यानी मोटापा। ओबेसिटी लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ कराना, हाइपरटेंशन कराना, हार्ट डिजीजेस कराना, ये नोन है। इन सबको एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोला जाता है। तो आइडियली इसीलिए हाई कैलोरी डेंस फूड हटाना चाहिए, जो हम खाना खाते हैं ऑलमोस्ट उसमें मान के चलिए कि 10-15% प्रोटीन होना चाहिए, 10-15% फैट होना चाहिए, 55% आपका कैलोरी होना चाहिए यानी एनर्जी होनी चाहिए। तो यदि हम बहुत फैट फूड खाएंगे, जो ये जंक फूड्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ये मोटापा कराएगा। मोटापा से लॉन्ग टर्म में अडल्ट डिजीजेस लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ये बहुत कॉमन है। दूसरी और चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, स्वीटेंड ड्रिंक्स होते हैं, स्वीटेंड ड्रिंक्स डेफिनेटली डेंटल कैरीज यानी दांतों में नुकसान पहुँचाएंगे। जैसे मैंने आपको प्रिजर्वेटिव्स हैं, यदि प्रिजर्वेटिव्स होंगे तो एलर्जीज कराएंगे। इसके साथ में कितना अनहाइजीनिक खाना हम कई बार खाते हैं, जैसे आपने बताया पिस्ता पास्ता, ये सब हम जब ठेले या ऐसे भी कोई जगह से खाएंगे तो हमें स्वाभाविक से दस्त, उल्टी, जीआई इन्फेक्शंस के भी रिस्क रहेंगे। तो ये जंक फूड्स के इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं कि आइडियली यदि हमें अडल्ट लाइफ अच्छी जीनी है तो शुरुआत से हमारी लाइफ में ऐसे इनकलकेट करना चाहिए जिसमें होम बेस्ड फूड खाएं।
2: ठीक है जी, जंक फूड के कुछ अल्टरनेटिव्स बता सकते हैं कि जंक फूड जो कि लोगों में बहुत आदत पड़ता है, अल्टरनेटिव फूड है कोई जंक फूड?
3: यस, यदि हमें जैसे घर पे है छोटा बच्चा है जो 2-3 साल का, तो उपमा है, इडली है, मैश्ड पोटैटोज है, खीर है, साबूदाने की खीर बना के देख सकते हैं। यदि थोड़ा बच्चा बड़ा है तो वेजिटेबल्स, तो हमें घर के ही फूड में डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स को इनकलकेट करना चाहिए। यदि हम घर पे हलवा बना रहे हैं या हम थोड़ा हैवी फैट ले रहे हैं तो उसे मान के चलिए 10% होना चाहिए टोटल एनर्जी का, पर ये देना है। तो हमें घर के बने खाने जैसे मैंने आपको बताया ये ज़्यादा ऑल्टरनेटिव है रादर देन।
2: आज का जो परिवेश रहन सहन है, माता पिता भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि जिसके कारण शायद वो भी बहुत जंक फूड खा रहे हैं और इसीलिए उनके बच्चे भी खा रहे हैं।
3: बिल्कुल, दोनों वर्किंग पेरेंट्स रहने लग गए, मुश्किल होती है घर पे बनाए कौन। हाँ। तो ये एक रीजन है, लेकिन फिर भी हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए। तो हमें किसी तरह समय निकाल कर घर का बना खाने की हमें भी हैबिट और बच्चों में भी डालनी पड़ेगी।
2: जो हम घर का खाना खाते हैं उसमें दाल चावल रोटी सब्जी आती है, वो कितनी अच्छी है, कितनी स्वास्थ्य के लिए बेहतर है कंपेयर अगर जंक फूड से करें तो?
3: एक शब्द है कंप्लीट फूड। कंप्लीट फूड यानी कि एक ऐसा फूड जो रेनबो, आपने सुना होगा सात रंग, तो हमारे खाने में कुछ रंग कैलोरीज के, कुछ रंग फैट, कुछ रंग प्रोटीन के, कुछ विटामिन मिनरल और सबसे ज़रूरी पानी। तो मैं जो आपको बोल रही थी कि बेस्ट ड्रिंक जो आज की दुनिया में प्योर क्लीन वाटर है,
2: ठीक है,
3: जितना पानी हम पिएंगे ये सब जो जूसेस छोड़कर, यदि फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं है तो ये पानी हमारे लिए पूरे हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को निकालता है। तो ये पानी ही सबसे अच्छा पेयजल है जो बेस्ट है, इन सब फूड्स को रिप्लेस करता है।
2: तो घर की बनी हुई पूरी है या हलवा है उसको कैसे देखें, क्या उसको जंक फूड की श्रेणी में रखें या नहीं रखें, या वो कैसी है बच्चों की?
3: बस फैट का ध्यान रखना है, घी हमारे लिए भी जरूरी है, घी इतनी मात्रा में रहे कि 10% रहे जैसा मैंने आपको बोला, तो देना है कम फैट में पर देना है।
2: जैसे आपने जिक्र करा था कि डायबिटीज कहा आपने, कैंसर का भी नाम लिया, तो क्या इस तरह की बीमारियां जो हैं वो जंक फूड के कारण होती हैं?
3: yes.
2: और वो बच्चों में भी होती हैं?
3: अभी रिसर्च ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन अडल्ट्स में नोन रिजल्ट्स मिल गए हैं कि कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स ने ब्रेस्ट कार्सिनोमा, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमास में एसोसिएशन, अभी बच्चों में स्टडीज नहीं आई। पर क्योंकि हम जब लॉन्ग टर्म में क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, जब हम लंबे समय वही प्रिजर्वेटिव खाएंगे तो हमें कैंसर के रिस्क ज्यादा है, बच्चों में अभी नहीं पाया गया।
2: बहुत कम उम्र के 12-13-14 साल के रेगुलर कॉफ़ी पीने लगे हैं या चाय पी रहे हैं या इस तरह के, तो उनका मसला था कि तो उसकी आदत पड़ गई, अब मैं क्या करूं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: जो बच्चे आजकल पढ़ाई में इतना ध्यान दे रहे हैं, जो स्ट्रेस्ड आउट है, नींद भगाने के लिए वो चाहते हैं कि शायद मैं कॉफ़ी पी लूंगा, चाय पी लूंगा, मेरी नींद भाग जाएगी, ये बिल्कुल उल्टा होता है। क्योंकि हम फॉल एस्लिप होंगे क्योंकि हमारी निद्रा तो हमें ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इस टी कैफीन ये सबसे हार्ट रेट में इफेक्ट करता है, रिदम डिस्टर्बेंसेस कराता है, इवन कुछ बच्चों में डिप्रेशन साइकोसिस भी कराता है। तो यदि हमें कभी ऐसा लग रहा है तो चाय कॉफ़ी से अच्छा हमारा पानी या फ्रेश जूसेस है। सो टी एंड कैफिनेटेड शुगर्स, कॉफ़ी शुड बी अवॉइडेड, स्पेशली इन एडोलेसेंट एज ग्रुप जो 13-14 साल के हैं, जहाँ हमें पता है कि इसके साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा है और कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये हमारी भावना है कि अरे मैं पी लूँगा तो मेरी नींद भागेगी, नींद नहीं भागेगी, 2-3 घंटे में आप फिर स्लीप होने लगोगे, तो नुकसानदेह ज़्यादा है। इससे बेहतर है कि हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड जूसेस और ड्रिंक्स करें, मतलब दैट इज प्योर क्लीन वाटर।
2: आप पेरेंट्स को क्या सलाह देंगी, वो क्या हैबिट्स या किस तरह के तरीके अपनाएं जिससे जंक फूड से निजात मिले?
3: कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगी, जैसे सबसे पहले तो स्टे काम, बच्चा नहीं खा रहा तो ये नहीं कि आप एंग्री हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, कभी भी आप फोर्स फीडिंग नहीं करेंगे, नेवर ट्राई। धीरे धीरे समय लगता है, हर चीज की आदत बदलने में समय लगेगा, तो ये ना सोचे कि आज ही किया और अगले दिन से नहीं, धीरे धीरे इंटरमिटेंटली हमें कम करना पड़ेगा। हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमें हेल्दी फूड अराउंड रखना है, हमें वो जंक फूड घर पे रखना ही नहीं है ताकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट इज, जैसे मैंने आपको पता है, हमें रोल मॉडल बनना, बी अ रोल मॉडल। चिल्ड्रन हमें साइलेंटली ऑब्जर्व करते रहते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, वो साइलेंटली वही देख रहे हैं, तो यदि हम हेल्दी फूड लेंगे तो बच्चे भी ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड। हमेशा एक हेल्दी फूड से स्टार्ट करिए, ये नहीं कि मल्टीपल एक साथ बॉम्बार्ड कर दे, ऑलवेज स्टार्ट विथ वन हेल्दी फूड एट वन टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और चीयरफुल वे में इंट्रोड्यूस किया जाए एंजॉयमेंट के साथ में। हमेशा एक अपीयरेंस ऑफ टेस्ट जो और दिखने में थोड़ी कलरफुल अच्छे से उसको सुंदर बनाया जाए, ताकि वो बच्चे को लगे हाँ ये खाने में उसे इंटरेस्ट तो आए, तो हमें घर पे ही टेस्टी एंड अपीयरेंस टू बी मॉडिफाइड। इंटरमिटेंट स्नैकिंग, अरे बीच में दे रहे हैं, नहीं वो नहीं, अवॉइड करना है। 3 हेल्दी मील डाइट्स होने चाहिए, 2 टाइम के स्नैक्स होने चाहिए, ये एक बेसिक हम रूटीन खाने का रखना चाहिए। एंड ऑलवेज बच्चे को भी आप इन्वॉल्व करो खाना बनवाने में, यदि हमने उसको इन्वॉल्व कर लिया तो उसे लगा हाँ मैंने हेल्प की है, मैंने बनाया, तो शायद ये सब टर्स जब हम इनकलकेट करें हमारी लाइफ में तो बच्चे शायद जंक फूड से दूर हो जाएंगे।
2: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, जब बच्चा खुद बनाने जाएगा तो शायद समझ में आएगा कि अगर वो फॉर एग्जांपल लें कि वो पत्ता गोभी को काटते हैं तो कई बार उसमें कोई कीड़ा निकलता है, तो संभवतः वो खुद ही समझ पाएगा कि अगर हम घर बना रहे हैं तो हम उस कीड़े को या सब्जी को अलग कर देते हैं, सामान्यतः बाजार में ऐसा ना होता हो। इस पर क्या कहेंगे?
3: इवन वॉशिंग ऑफ आपकी सब्जियां हो रही कि नहीं वो भी नहीं हमें पता है। इतनी बीमारियां जैसे कि एल्बेंडाजॉल, जो हम आजकल एक डेली वॉर्म के लिए एनुअल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम स्टार्ट की है कि एंटी हेलमिंथिक, यानी बच्चों को जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, हम साल में हर बच्चों को स्कूल से टैबलेट्स मिलती हैं, क्योंकि ये हम मान के चलते हैं कि ये जो सब्जियां नहीं धुली हुई हों अंदर कीड़े चले गए तो बच्चे को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि बाहर का खाना कितना साफ होगा यू डोंट नो।
2: आइसक्रीम जंक फूड की श्रेणी में है या नहीं है, अगर है तो क्या उसके नुकसान है?
3: बिल्कुल, आइसक्रीम भी प्रिजर्वेटिव है। अच्छा। क्योंकि वो एक तरह से जो भी प्रिजर्वेटिव है जंक फूड्स में आते हैं। आइसक्रीम आप देखेंगे तो सडन सुक्रोज या सडन फ्रक्टोज रिलीज करते हैं, जो भी खाना तुरंत सुक्रोज या फ्रक्टोज रिलीज करेगा वो हानिकारक होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक शब्द होता है जिसमें हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाले खाने वो बहुत अच्छा, और आइसक्रीम सिंपल कार्बोहाइड्रेट सडन ग्लूकोज रिलीज करती है, हमारे इंसुलिन को बॉम्बार्ड करती है और वो नुकसानदेह। इवन आइसक्रीम यदि हम घर पे बनाए विद फ्लेवरिंग एजेंट्स ना डालें, जैसे हमें लगता है वनीला फ्लेवर एसेंस डालते हैं उसमें भी प्रिजर्वेटिव है, तो हम घर पे ही मतलब बना सके तो बिल्कुल खाना।
2: आपने जोर जो दिया वो घूम फिर के आ रहा है कि स्ट्रेस बर्ड्स होते हैं, चाहे वो मीठा हो, नमकीन हो, ठंडा हो, ये सामान्यतः पसंद आते हैं और इन्हीं टेस्ट बर्ड्स के कारण ही आदमी जंक फूड की तरफ जाता है।
3: बिल्कुल।
2: उनके अल्टरनेटिव्स आपने कुछ बताए, हम चाहेंगे कि वो आप अल्टरनेटिव्स और विस्तार से बताएं कि लोगों को एक सीधा संदेश जाए कि ये ना खाओ, ये तो हम कह रहे हैं लेकिन क्या क्या खाओ।
3: आपने एक बहुत अच्छी बात कही टेस्ट बर्ड्स की। क्या होता है, शुरुआत के 6 माह तक सब माएं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती
2: है,
3: यानी बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे है। जैसे ही बच्चा 6 माह का होता है तो उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो माँ के दूध से पूरी नहीं हो सकती है, तो ऐसे समय में एक कॉम्प्लीमेंट्री आहार, यानी बच्चे को अपार्ट फ्रॉम मिल्क कुछ ऐसे खाने देने होंगे जो उसको मिल्क के अलावा जो उसको कैलोरीज दें, उसकी पूर्ति बाकी कर सकें। ऐसे समय में सबसे ज़रूरी होता है कि हम फूड इंट्रोड्यूस करें। जो बच्चे 6 माह के बाद धीरे धीरे, कई माँ होती हैं जो 9-10 महीने तक दूध कर रही हैं और खाना ही नहीं खिलाए, उन्हें लगता है दूध ही पूर्ति कर, ऐसे बच्चे फसी ईटर होता है। जब ये फसी ईटर होता है मतलब ये बच्चे खान, क्योंकि टेस्ट बर्ड डेवलप नहीं हुए जो 6 माह में होने थे, तो ऐसे फसी ईटर्स वाले बच्चे जंक फूड की तरफ, माँ को लगता है लाओ ये तो खा लेगा,

0: वो एडिक्शन है। तो
1: अच्छा
0: हमें यदि शुरू के 6 माह में यदि हमने कॉम्प्लीमेंट्री फूड ढंग से स्टार्ट किया जिसमें बच्चे के टेस्ट बड डेवलप हो गए, चाहे वो मीठा हो
1: जी
0: गया, नमकीन जैसा आपने बोला, ये हमें शुरुआत में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मैं आपको कुछ एक मतलब कुछ खान पान आप जो मेरे से पूछ रहे हैं,
1: जी
0: जैसे आपसे मैंने कुछ बताया था
1: जी
0: कि
1: जी
0: खिचड़ी हो गई, दलिया, सूजी खीर हो गई, मैश्ड पोटैटोज हो जाएंगे, बनाना, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, उपमा हो गया, मैश्ड इडली हो गई, दही, ये सब हम यंग बच्चों में स्टार्ट कर सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम जितनी जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चा पूरा खाना उतनी जल्दी या वो प्रेरित रहेगा कि हाँ मुझे अच्छा खाना खाना है। हमने लेट इंट्रोड्यूस किया कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग तो बच्चा मोर ऑफ अ जंक फूड की तरफ डाइवर्ट होता है। थोड़े और बच्चे बड़े हों तो रोटी, दाल, चावल, थाली का पूरा खाना, जैसे मैंने आपको 7 रंगों का बताया, वो हमें जोड़ना चाहिए।
1: अगर हम बात करें, अगर दो धड़ों में बांटें, जैसा कि हमारा देश बटा हुआ है, एक अर्बन और रूरल में, गांव और शहरों में, तो जंक फूड का असर आप कहाँ ज़्यादा देखते हैं और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, ये सवाल बहुत अच्छा है। रूरल और अर्बन डिविजन्स थे, पर अब ओबेसिटी, जैसा मैंने आपको बताया, जंक फूड ओबेसिटी कराता है ना। रूरल का कम्युनिटी जो बच्चे हैं वो भी ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जंक फूड ने अपने पाँव रूरल एरिया में भी नहीं छोड़े हैं, वहाँ भी एनक्रोच कर लिया। तो आप फूड पैकेट्स कहीं पर भी देखोगे, जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं वहाँ भी अवेलेबल हैं। तो बच्चे तो वही हैं, टेस्ट बड्स भी वही हैं। तो यदि हमने वहाँ तक रूरल एरिया भी नहीं छूटा है जहाँ पर हम पैक्ड फूड्स हर जगह मिल रहे हैं, तो बच्चे वहाँ पर भी, हाँ, क्योंकि अर्बन पहले से स्ट्रीमलाइन है, यहाँ ऑनलाइन डिलीवरीज ज़्यादा होती है, तो जंक फूड की मात्रा नो डाउट अर्बन में, पर ये नहीं है कि रूरल वाला वंचित है। आज वहाँ पर भी जंक फूड्स के इंसिडेंसेस खूब हैं। एक मैं और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी, जैसे कुछ लोग को लगता है रेडी टू यूज़ फूड्स, लाइक जो कॉर्न मक्के के उसके साथ कॉर्न सिरप डलता है, कॉर्न
1: अच्छा
0: सिरप जैसे ही डलता है तो वो एक तरह से सुक्रोज और फ्रक्टोज का काम करता है। ब्रेड, ब्रेड क्या होती है, ये भी एक तुरंत रिलीज करती है शुगर्स को,
1: अच्छा
0: और ब्रेड्स भी बिल्कुल हानिकारक है। ब्रेड्स मैदा से बनती है, जितनी मैदा वाली चीज़ें होंगी वो भी एक तरह से जंक फूड में श्रेणी में आती है। तो इसीलिए रोटी या जो हम गेहूं से बनाई चीज़ें थी वो बेनिफिट रहती है।
1: हिंदुस्तानी जो बाहरी खाना था, मसलन जैसे हमने बात करी कचौरी, समोसे या चाट की, उनके ही नुकसान बताए जाते थे, तो लेकिन अब पैक्ड फूड उनके का, अगर कंपैरिजन करें इनका, तो वो क्या कंपैरिजन होगा?
0: वो भी जंक फूड में ही आएंगे, जो पैक्ड फूड्स है। मैंने आपको जंक्स फूड बताया, जंक्स में इतनी बड़ी कैडर हो गई है जो सडन रिलीज, देखिए समोसा मैदा का बना है, उसके अंदर भरा है आलू,
1: ठीक है
0: तो एक तरह से वो हानिकारक होगा। उसकी आप कैलोरी डेंसिटी देखोगे बहुत हाई है, और सडन वही मैदा से बना है, तो ये सारी चीज़ें जो सडन रिलीज करती है हमारे इंसुलिन लेवल्स को, वो कहीं ना कहीं जंक फूड्स में आते हैं, तो समोसा भी उसी कैडर में आता है।
1: तो मैडम, चलते चलते आप संदेश क्या देना चाहेंगी जंक फूड खाने वालों को?
0: जंक फूड्स खाने वालों का मेरा एक बहुत बड़ा मैसेज, की होम मैसेज है, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लंबा जीवन जीना चाहते हैं, दीर्घायु रहना चाहते हैं, तो घर का बना खाना खाएं, खूब सारा पानी पिएं, जूसेस पीना हो तो घर के फ्रेश जूसेस निकाल के, फ्रेश फ्रूट्स के निकाल के जूसेस पिएं। और बहुत लगता है नहीं कभी तो खाना है, तो हफ्ते का एक डे अलाउड है, वंस अ वीक सर्विंग।
1: तो डॉक्टर श्वेता आनंद हमारे साथ मौजूद थी और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इतने विस्तार से, बड़े डेफिनेट शब्दों में मैडम ने अपनी बात कही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी स्टूडियो में आने के लिए।
0: थैंक यू, थैंक यू।
1: तो आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम की परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और मैं था आपके साथ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। तो सुनते रहिए FM 90.8 MHz, रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

तो श्रोताओं, आपने अभी सुना कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। छोटी छोटी कुछ बातें जिनका ध्यान रख करके हम स्वस्थ बने रह सकते हैं। वैसे तो कहा नहीं जा सकता है कि कब कौन सी बीमारी किस तरह से हमें आ घेरेगी, लेकिन अगर हमें बीमारियों के बारे में जानकारी हो तो शुरुआती लक्षण को देखते ही हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं, और अगर हम जल्दी उसके पास पहुँचते हैं तो हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं और बहुत सी परेशानियों से हम बच जाते हैं। इसके अलावा कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हमारे आहार व्यवहार की हैं, किस तरह से हमें रहना चाहिए, हमारी दैनिक दिनचर्या किस तरह की हो। कुल मिलाकर इस तरह की कुछ बातें इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं और आपको वो बातें पसंद भी आती हैं और आपके लिए बहुत ज़रूरी भी हैं वो बातें। तो उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो बहुत कुछ अभी आगे आपके लिए है, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए रेडियो आज़ाद हिंद से, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

श्रोताओं, आज डायबिटीज एक आम बीमारी है और जिस किसी को ये बीमारी हो जाती है वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है कि आखिर वो क्या खाए, क्या ना खाए, किस तरह का परहेज रखे, कैसा जीवन व्यवहार रखे वो। लेकिन हम आपको बता दें कि डायबिटीज से दूर रहना या इसे नियंत्रण में रखना इतना मुश्किल भी नहीं है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख कर आप डायबिटीज से दूर रह सकते हैं, या अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो अपनी शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं, नियंत्रण में रख सकते हैं। जी हाँ, आप हरा सकते हैं डायबिटीज को। तो इस बीमारी को हम हराएं, इसके लिए जरूरी है कि पहले इसे हम जानें। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 जो कि अनुवांशिक गड़बड़ी या संक्रमण की वजह से होती है, जिसमें शरीर में इंसुलिन बनती ही नहीं और इंजेक्शन के द्वारा लेनी पड़ती है। गर्भावस्था की डायबिटीज मुख्यतः इस दौरान हार्मोन्स में होने वाले बदलावों के कारण होती है और प्रसव के बाद अक्सर ठीक भी हो जाती है। इसलिए इसका उपचार जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चे को भी अधिक खतरा होता है। डायबिटीज का दूसरा प्रकार है टाइप 2। आमतौर पर डायबिटीज का तात्पर्य इसी से होता है, जो किसी को भी हो सकती है। श्रोताओं, टाइप 1 और गर्भावस्था की डायबिटीज को रोक पाना हमारे वश में नहीं है, लेकिन टाइप 2 से बचाव, इसका उपचार काफी हद तक हमारे ही हाथ में है। कहने का अर्थ ये कि पहले समूह में वो लोग आते हैं जिनके रक्त संबंधों में डायबिटिक लोग होते हैं। दूसरे समूह में वे सभी लोग आते हैं जिनकी दिनचर्या अनियमित होती है, जो मोटापे के शिकार होते हैं और मेहनत नहीं करते हैं। इसमें 14-15 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अब 25 से 35 के आयु वर्ग वाले लोग बड़ी संख्या में इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। श्रोताओं, ये भी जरूरी है कि हम जान लें कि इसके लक्षण क्या होते हैं। शुरुआती अवस्था में बिना वजह की थकान और कमजोरी महसूस होना, झुनझुनी, चश्मे का नंबर बार बार बदलना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे आपको शक होना चाहिए कि कहीं ये डायबिटीज की शुरुआत तो नहीं। वजन घटना, घाव भरने में देरी या बार बार लघु शंका भी एक आम लक्षण है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि डायबिटीज का मुख्य कारण है शारीरिक सक्रियता की कमी, और अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि सुबह और शाम लगातार कम से कम 1 या 2 घंटे पैदल चलें। ये आपको डायबिटीज से बचा कर रखेगा। लेकिन शारीरिक सक्रियता का अर्थ ये नहीं है कि आप गप्पे लड़ाते हुए टहलें। मांसपेशियों की मेहनत होना बहुत जरूरी है, यानी इतनी तेज चाल से चलना कि 8 से 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय हो जाए, या 3 या 4 मिनट में 1 किलोमीटर साइकिल चला लेना। चाहे कोई भी कसरत आप करें, धड़कनों की गति बढ़नी चाहिए। और श्रोताओं, अपने खान पान पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारे खान पान में शक्कर जितनी कम हो उतना ही अच्छा, न हो तो और भी बढ़िया। घबराइए नहीं, चीनी की गैर मौजूदगी में भी जीवन में मिठास कायम रहेगी और साथ ही आप ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। श्रोताओं, शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, वो उसे ग्लूकोज से ही मिलती है। ग्लूकोज बनता है कार्बोहाइड्रेट से। ये 2 प्रकार के होते हैं, जटिल और सरल। सारी दिक्कत सरल कार्बोज से ही है, जो खाते पीते ही खून में पहुंचना शुरू हो जाती है और फिर हमारे खून में शर्करा का स्तर एकदम से बढ़ा देती है। ये शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सरल कार्बोज का मतलब हुआ शक्कर और शहद। जूस और कोल्ड ड्रिंक्स में भी यही बात होती है। ऐसी मिठास दिन भर में 3 छोटे चम्मच से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। वैसे हम आपको बताएं कि शक्कर की तुलना में गुड़ बेहतर है, लेकिन वो भी सीमित मात्रा में। श्रोताओं, डायबिटीज ना हो इसके लिए जरूरी है कि हम अपना वजन कम रखें। इसमें सहायक होते हैं योग, प्राणायाम और कसरत। इसके साथ ही खान पान पर ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। इस बात का भी ख्याल रखें कि उठने के 2 घंटे के भीतर ही नाश्ता हो जाए। 11 बजे के आसपास छाछ और फल, 1.5-2 बजे भोजन, और फिर शाम को 5 बजे के आसपास चाय के साथ भुनी हुई मूंगफली, चने जैसे स्नैक्स, और रात का खाना सोने से 2-3 घंटे पहले ले लें। भोजन में मोटे अनाज से बनी चीजों को प्राथमिकता दें तो ज्यादा अच्छा है।
और हाँ, खाने के साथ आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर और एक चम्मच सिरका ले लिया जाए और खाने के बाद 15 से 20 मिनट टहल लिया जाए तो ब्लड शुगर नियंत्रण में मदद मिलती है। तो श्रोताओं, ये थी कुछ जरूरी बातें डायबिटीज को लेकर। अगर इन बातों का ख्याल आप रखेंगे तो निश्चित ही आपकी जिंदगी गुनगुनाएगी खुशियों के गीत।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: एक विदेशी इतिहासकार ने लिखा है कि इस संसार में महापुरुषों को पहचानना आसान है, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि करना कठिन है। स्वामी विवेकानंद के संबंध में ये उक्ति विशेष रूप से सटीक प्रतीत होती है।
1: साधारणतः लोग उन्हें श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक मानस पुत्र, सर्वत्यागी सन्यासी, श्री रामकृष्ण मठ और मिशन के प्रतिष्ठाता तथा हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में ही भक्ति करते और पूजते हैं। यद्यपि यही स्वामी जी का वास्तविक परिचय है, तथापि ये उनके अनन्य अपूर्व व्यक्तित्व का केवल एक श्रेष्ठ अंश मात्र है।
0: धर्म जगत के बाहर भी देश तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो उनका अमूल्य अवदान है, वो सर्वदा हम स्मरण नहीं रख पाते। लेकिन बिना इसे जाने स्वामी जी के अपूर्व व्यक्तित्व के संबंध में ठीक ठीक धारणा बनाना संभव नहीं।
1: वैसे तो स्वामी जी के जीवन काल में ही देश और विदेशों में उनके अनेकों गुणग्रही बने थे, परंतु उनका स्वदेश प्रेम, देशात्म बोध और राष्ट्रीय चेतना उनके भाषण और रचनावली में इतने स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है कि उसके परवर्ती काल के भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों के मानस में उनका प्रभाव उन्होंने अनुप्रेरित किया था।
0: स्वामी जी का देश प्रेम केवल मानसिक भावावेग नहीं था, उन्होंने देश की स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए युवकों को ललकारा। सन 1901 में ढाका के युवकों का एक दल उनसे उपदेश सुनने आया। उन्होंने उनसे कहा,
2: बंकिम चंद्र की पुस्तकों को पढ़ो, आनंद मठ की संतानों के समान देशभक्त बनो। तुम लोगों का प्रधान कर्तव्य जन्मभूमि की सेवा है, सबसे पहले चाहिए राजनैतिक स्वतंत्रता।
1: उन्होंने कहा था कि हमारी गरियसी भारत माता ही हमारी आराध्या देवी है।
0: स्वामी जी के संपूर्ण चिंतन और आदर्श ने 20वीं सदी के कई श्रेष्ठ भारतीयों पर किस प््रकार प्रभाव डाला था, इसे हम प्रायः भूल जाते हैं। आज स्वाधीन हुए अधिक समय बीत चुका है। स्वामी जी के समय में जो बहुत सी राष्ट्रीय समस्याएं थीं, वो आज भी हैं। लेकिन देश की समस्त जनता, विशेषकर तरुण वर्ग, मार्गदर्शन के लिए स्वामी जी को अपने पथ प्रदर्शक के रूप में उस प्रकार स्मरण नहीं करता।
1: स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे नेताओं के सामने स्वामी विवेकानंद आदर्श स्वरूप थे। सभी नेता आंदोलन में कूद पड़े थे। हम उन्हीं नेताओं और परवर्ती काल के विद्वानों और मनीषियों के लेख से स्वामी जी के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे।
0: सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण देव के उद्गार सुनेंगे। उन्होंने उनके प्रिय शिष्य नरेंद्र नाथ यानी कि स्वामी जी के लिए कहा था,
3: नरेन शुद्ध सत्वगुणी है, मैंने देखा है कि वो अखंड के घर के चार में से एक तथा सप्त ऋषियों में से एक है। नरेन ध्यान सिद्ध महापुरुष है, मैंने देखा केशव चंद्र सेन जिस प्रकार एक शक्ति के विकास के द्वारा संसार में विख्यात हुआ है, नरेंद्र के भीतर उस प्रकार की 18 शक्तियां पूर्ण रूप में विद्यमान हैं। नरेंद्र सा एक भी लड़का मुझे दिखाई नहीं पड़ा, जैसा गाने बजाने में, वैसा पढ़ने लिखने में, वैसा ही बातचीत में और फिर धर्म विषय में भी। वो रात भर ध्यान करता है, ध्यान करते करते भोर हो जाती है, होश नहीं रहता। मेरे नरेन में थोड़ी भी कृत्रिमता नहीं है, बजाकर देखो वो ठन ठन शब्द होता है। वो ब्रह्म समाज में भी जाता है, वहां गाता है, परंतु दूसरे ब्राह्मणों की तरह नहीं, वह यथार्थ ब्रह्म ज्ञानी है। ध्यान करने के लिए बैठते ही उसे ज्योति दर्शन होता है, उसे मैं यूं ही प्यार नहीं करता।
1: महात्मा गांधी ने स्वयं स्वीकार किया है कि स्वामी जी की रचनावली पढ़कर उनके स्वदेश प्रेम में हजार गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा था,
4: मैंने उनके द्वारा सृजित साहित्य का आद्योपांत अध्ययन किया है और तत्पश्चात अपने देश के प्रति मुझे जो प्रेम था वो हजार गुना बढ़ गया है। नौजवानों, मैं तुमको आवाहन करता हूँ, जहाँ स्वामी विवेकानंद जिए और मृत्यु को प्राप्त हुए, उस स्थान के कुछ प्रभाव को धारण किए बिना खाली मत चले जाना। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद के लेखों को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं अपने आप को स्थापित करते हैं तथा निर्विरोध रूप से चित्त को आकर्षित करते हैं।
0: राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका न निभाते हुए भी राजनीतिक दृष्टि में

0: ने दिव्य दृष्टि से भारत के भविष्य को देखते हुए घोषणा की थी कि ये मछुआरे, बनिए और श्रमिक लोग ही भारत में स्वतंत्रता लाएंगे और भविष्य में प्रमुख पद प्राप्त कर भारत की उन्नति का पथ प्रशस्त करेंगे।
1: सामान्य लोगों की धारणा है कि महात्मा गांधी ने सर्व प्रमुख राष्ट्र जागरण तथा मुक्ति संग्राम में निम्नतर श्रेणी के जन साधारण की सहभागिता पर जोर दिया था, किंतु उसके बहुत पहले ही विवेकानंद ने इसकी घोषणा कर दी थी। रोमारोला ने लिखा है,
2: गांधी जी ने स्वतः यह स्वीकार किया है कि विवेकानंद की रचनाओं से उन्होंने प्रचुर सहायता पाई है तथा भारत को और भी चाहने तथा और अच्छी तरह समझने में उनसे सहायता मिली है।
3: उनकी जड़ें अतीत में थीं तथा भारत के सम्मान के प्रति उनमें पर्याप्त अभिमान था, तथापि जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु विवेकानंद आधुनिक थे तथा अतीत एवं वर्तमान भारत के बीच एक सेतु थे। स्वामी जी ने जो कुछ लिखा और कहा वो कल्याणकारी है, हितकारी है और वो आने वाले लंबे समय तक हमें प्रभावित करता रहेगा। साधारण शब्द के अर्थ में वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, तथापि मेरे विचार से वे महान संस्थापकों में से एक थे। आंशिक या संपूर्ण रूप से भारत के आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वालों ने स्वामी जी से प्रेरणा प्राप्त की थी। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी विवेकानंद ने भारत को संपूर्ण शक्ति से प्रभावित किया है। स्वामी विवेकानंद द्वारा विवेक, उत्साह एवं अग्नि का जो उद्गम प्रवाहित किया गया है, मैं समझता हूं युवा पीढ़ी उससे संपूर्ण लाभ प्राप्त करेगी।
1: श्री अरविंद ने एक लेख में लिखा था,
4: यदि किसी को विराट हृदय सम्राट के रूप में स्वीकार किया जा सकता है तो वे एकमात्र विवेकानंद हैं, नर केसरी विवेकानंद। हमने देखा है कि उनका प्रभाव आज भी प्रबल रूप से कार्य कर रहा है। उसी प्रभाव ने भारत की आत्मा को आंदोलित किया है।
0: श्री अरविंद आगे लिखते हैं,
4: स्वामी विवेकानंद की अमेरिका यात्रा और उनके द्वारा उत्तरोत्तर कार्यों ने भारत के लिए लंदन में आयोजित अधिक प्रभावशाली कार्य किया। हमारी अनुभूति है कि उनका प्रभाव अलौकिक रूप से अब भी कार्यरत है और हम कहते हैं, स्वामी विवेकानंद को देखो जो अब भी अपनी भारत माँ और भारत माँ की संतति की आत्मा में विद्यमान है।
1: कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर पर भी स्वामी जी का प्रभाव देखा जा सकता है। उन्होंने लिखा है,
5: वैराग्य साधना द्वारा मुक्ति मुझे स्वीकार नहीं, मैं मनुष्यों के बीच बचे रहना चाहता हूँ।
0: रविंद्रनाथ जी की अपमानित नामक कविता में भी इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण मिलता है। कवि कहते हैं,
5: हे मेरे भाग्यहीन देशवासी, तुमने जिनका अपमान किया है उसी प्रकार तुम्हें भी समान रूप से अपमानित होना होगा। जिनको तुमने मानव अधिकार से वंचित किया है उन्हीं से तुम्हें उसका प्रतिदान मिलेगा। छुआछूत के नाम पर अपने से दूर रखकर तुमने मनुष्य के भीतर अवस्थित ईश्वर से घृणा की है। उन्हें दूर धकेल कर मानो अपनी ही शक्ति की अवहेलना कर निर्वासित किया है।
1: टैगोर ने रोमारोला को लिखा था,
5: विवेकानंद में सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं। राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि तुम में से प्रत्येक के अंदर ईश्वर की शक्ति है। दीन व दुखी के अंदर का ईश्वर तुमसे अपनी सेवा की अपेक्षा करता है। उनके इस संदेश ने नवयुवकों के हृदय को पूर्ण व्यापकता के साथ झकझोरा है। यही कारण है कि ये संदेश राष्ट्र की सेवा में विविध प्रकारों एवं बलिदान की विभिन्न शक्लों के रूप में फलदायी सिद्ध हुआ है।
1: रोमारोला ने भी उल्लेख किया है कि रविंद्रनाथ पर स्वामी जी का कितना प्रभाव था।
2: रविंद्रनाथ में ब्रह्म समाज तथा विवेकानंद के नव वेदांतवाद की मानो दो धाराएं मिलकर एक ही हो गई थी। विवेकानंद के समान एक अग्रदूत का प्रभाव उनके मानसिक विकास में काफी हद तक प्रभावी था, ये निसंदेह है।
0: विवेकानंद की ही वाणी से किशोर सुभाष चंद्र के जीवन में अमूल्य परिवर्तन घटित हुआ। विवेकानंद की बात करते हुए वे आत्मविभोर हो जाते थे। उन्होंने चरित्र गठन के लिए रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य को ही तरुणों के लिए सर्वोत्कृष्ट साहित्य माना है।
1: नेताजी सुभाष चंद्र एक अर्थ में स्वामी जी के मानस पुत्र थे। तत्व ज्ञान या मुक्ति तत्व के ऊपर जो साक्षात मुक्ति, भारत की मुक्ति, स्वामी जी के हृदय में प्रचंड शक्ति के रूप में विराज कर रही थी, नेताजी ने भी उसी मुक्ति को अपने हृदय में अनुभव किया था। नेताजी ने लिखा था,
4: स्वामी विवेकानंद की बहुमुखी प्रतिभा का वर्णन करना कठिन है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी कृतियों एवं व्याख्यानों से हमारे समय के छात्रों को जितना प्रभावित किया है, वो देश के किसी भी नेता को काफी पीछे छोड़ गया है। स्वामी जी ने उनकी आशाओं एवं आकांक्षाओं को पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त किया है। स्वामी जी का अध्ययन स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस देव जी के साथ किए बिना उन्हें यथोचित रूप से समझना कठिन है। वर्तमान स्वतंत्रता आंदोलन की आधारशिला अपने उद्भव के लिए स्वामी जी के संदेह की ऋणी है। यदि भारत को स्वतंत्र होना है तो ये मात्र हिंदुवाद अथवा इस्लाम की एकल भूमि नहीं हो सकता। राष्ट्रवादी आदर्शों से अभिप्रेरित विभिन्न धार्मिक समुदायों की संगठित भूमि होना चाहिए। भारतवासियों को धर्मों की समता के उपदेश को पूर्ण हार्दिकता से स्वीकार करना चाहिए। यही रामकृष्ण विवेकानंद का उपदेश है। स्वामी जी ने पूर्व और पश्चिम को, धर्म और विज्ञान को, अतीत एवं वर्तमान को समन्वित किया है और इसलिए वे महान हैं। हमारे देशवासियों ने उनकी शिक्षाओं से अभूतपूर्व आत्मसम्मान, आत्मविश्वास एवं आत्मअभिव्यक्ति को प्राप्त किया है।
1: भगिनी निवेदिता ने स्वामी जी को बहुत करीब से देखा था। वे निवेदिता के गुरु थे। उन्होंने स्वामी जी की देशभक्ति के बारे में लिखा है,
6: स्वामी जी एक और धर्म की उद्दात अभिव्यक्ति थे, वहीं दूसरी ओर वे सबसे महान देशभक्तों में से थे। वे उस समय जन्मे जब राष्ट्रीय विखंडन प्रारंभ हो चुका था, पर वे नवीनता से भयभीत नहीं थे। वे उस समय हुए जब लोग अपनी विरासत को त्याग रहे थे, परंतु वे पुरातन के अनन्य उपासक बने रहे। उनमें राष्ट्र के लक्ष्य ने परिपूर्णता प्राप्त की। राष्ट्र का लक्ष्य कहता है कि राष्ट्रीय चेतना की प्रत्येक नवीन लहर का प्रारंभ सदैव धर्माचार्यों द्वारा होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति में हो सकता है कि हमें भविष्य का समूचा वेद प्राप्त हो। वैसे यह बात हमें अवश्य याद रखनी चाहिए कि विवेकानंद के धार्मिक महत्व को आंकने का समय अभी नहीं आया है। धर्म एक जीवित बीज है और वे अभी अभी इस बीज को बोकर गए हैं। अभी उनकी फसल पकी नहीं है, परंतु यह एक सत्य है कि देशभक्त अपनी मृत्यु से यथार्थ रूप में देश का हो जाता है। आज जब गुरुदेव अपने शिष्यों के बीच से महाप्रयाण कर चुके हैं, आज जब शमशान घाट में अनेक आलोचकों की आवाजें बंद है, स्वाधीनता की घोषणा करने वाली वो महान ध्वनि अप्रतिहत रूप से गूंज रही है और सारा राष्ट्र एक स्वर में उसका उत्तर दे रहा है।
1: स्वामी विवेकानंद की दूसरी शिष्या भगिनी क्रिस्टिन ने लिखा है,
7: काल के दीर्घ अंतराल के बाद बीच बीच में एक व्यक्ति हमारे इस भूमंडल पर आ पहुंचता है। जो असंदिग्ध रूप से किसी अन्य लोक से आया हुआ है, एक पर्यटक होता है जो इस दुखपूर्ण संसार में भी अपने उस सुदूरवर्ती लोक की महिमा, शक्ति तथा दीप्ति का कुछ अंश ले आता है। इस मृत्यु लोक का न होकर भी वो मनुष्यों के बीच विचरता है। वो मानो एक तीर्थयात्री है, एक अजनबी जो केवल एक रात ही यहां ठहरता है। वह अपने आसपास के लोगों के जीवन से स्वयं को संबद्ध पाता है, उनके हर्ष विषाद का भागीदारी बनता है, उनके साथ सुखी और दुखी भी होता है, परंतु इन सब का बीच वह यह कभी नहीं भूलता कि वह कौन है, कहां से आया है और उनके यहां आने का उद्देश्य क्या है। अपने दिव्यत्व की बात उसे कभी विस्मृत नहीं होती, उसे सदैव स्मरण रहता है कि वह महान तेजोमय तथा महिमामय आत्मा है। ऐसे एक मनुष्य को मैंने देखा है, उनकी वाणी सुनी है और उनके प्रति मैंने अपनी श्रद्धा निवेदित की है। उन्हीं के चरणों में झुककर मैंने अपने आत्मा का अनुराग अर्पित किया।
1: हमारे आचार्य विनोबा भावे भी स्वामी जी के प्रभाव से नहीं बचे। उन्होंने लिखा है,
8: स्वामी विवेकानंद ने हमें मात्र अपने पौरुष के प्रति जागरूक नहीं बनाया, वरन हमारे दोषों और कमजोरियों को भी रेखांकित किया। उन्होंने हमें सिखाया सभी में एक ही आत्मा का वास है। यदि तुम इससे आश्वस्त हो तो सभी को भाई मानना एवं मानवता की सेवा करना। अतः उन्होंने हमें दरिद्र नारायण की सेवा में स्वयं को समर्पित करने का आह्वान किया। ईश्वर भूखों और असंख्य अनाथों में दृष्टिगोचर है एवं उनकी प्रगति एवं नैतिक उत्थान के लिए ईश्वर ने उनकी संरचना की है। स्वामी विवेकानंद द्वारा दरिद्र नारायण शब्द गढ़ा गया एवं गांधी जी द्वारा उसे जन जन तक पहुंचाया गया।
0: फ्रांसीसी चिंतक रोमारोला की बातें बार बार याद आती हैं। वे भारत प्रेमी थे और स्वामी विवेकानंद के प्रबल अनुगामी थे। उन्होंने लिखा है,
2: संपूर्ण शरीर में बिजली के झटके की भांति रोमांच पाए बिना मैं उनके इन वचनों को, जो इतने वर्ष पूर्व लिखी गई पुस्तकों के पृष्ठों पर बिखरे पड़े हैं, स्पर्श नहीं कर सकता। और कैसे झोंके एवं तूफान उत्पन्न हुए होंगे जब वे ज्वलंत शब्द उस नायक के अधरों से प्रस्फुटित हुए होंगे।
1: दूसरों की तरह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी स्वामी जी के संबंध में लिखा है,
9: स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और भारत की रक्षा की। उनके अवतरित न होने पर हम अपना धर्म खो चुके होते और अपनी स्वतंत्रता को पाने में असफल हो गए होते। हम इसलिए हर प्रकार से स्वामी विवेकानंद के ऋणी हैं। उनका साहस, उनका विश्वास, उनकी विद्वता हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी, ताकि जो विरासत हमें उनसे मिली है हम उसे सुरक्षित रख सके। कुछ ही दिनों पूर्व के इतिहास पर नजर डालने पर ज्ञात होता है कि हम स्वामी विवेकानंद के कितने ऋणी हैं। उन्होंने भारत की यथार्थ महत्ता को हमारे समक्ष रख कर हमारी आंखें खोल दी। उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकीकरण किया। हम अंधकार में थे, उन्होंने हमें राह दिखाई। वे भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वाधीनता के जनक है।
0: हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने भी स्वामी जी की बातों को ही दोहराया है। पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स में लिखते हैं,
10: स्वामी जी ने अपने विख्यात स्वदेश मंत्र में जिस परानुकरण परानुवाद पर निर्भरता और दाससुलभ मनोवृत्ति के लिए भारतीयों को फटकारा है, ये नकारात्मक शिक्षा या कुशिक्षा का ही परिणाम है। स्वामी जी शिक्षित भारतवासियों में देश प्रेम और राष्ट्रीयता का अभाव देख मर्माहत हुए थे। हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं? हमारे पास अधिकांश तौर पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हैं। संभवतः हम लोगों के मनोभाव में ही कोई समस्या है। सहयोग केवल सीमाबद्ध घेरे में ही सफल होने में सक्षम है। लगता है इस धारणा को हम उतार कर फेंक नहीं पा रहे हैं। एक जड़ता ने हमारे राष्ट्र की मानसिकता को जकड़ रखा है। वैश्वीकरण, अर्थनैतिक संकट, मुद्रास्फीति, आंचलिक विद्रोह, राजनैतिक अस्थिरता इत्यादि बाहरी समस्याओं से अधिक मैं हमारी राष्ट्रीय मानस को जकड़ी हुई इस जड़ता, इस पराजित मनोवृत्ति को लेकर अधिक चिंतित हूँ।
0: विदेशी पत्रकार मार्क टली, जो एक भारत प्रेमी है, स्वामी जी के विचारों से प्रभावित हुए थे। उन्होंने भी स्वामी जी की बातों को दोहराया है। उन्होंने भारत को बहुत करीब से देखा और महसूस किया,
11: जैसा कि स्वामी जी ने कहा था, भारतवर्ष आज भी उपनिवेश युग के प्रभाव तथा उत्तराधिकार से मुक्त नहीं हो सका है। इसलिए भारतवर्ष के उच्च वर्ग में भारतीय सभ्यता का तथा भारतीयत्व के प्रति अश्रद्धा का भाव झलकता है। इसके अलावा उसमें एक और प्रवृत्ति है, वो है भारत की समस्याओं का समाधान भारत में न खोजकर भारतवर्ष के बाहर खोजना।
1: अंत में इसी के समतुल्य भारत के संबंध में स्वामी जी के दृष्टिकोण का भगिनी निवेदिता द्वारा किया गया विश्लेषण याद किया जा सकता है।
6: स्वामी जी सोचते थे कि उनके स्वदेश की आशा विश्वास उसके भीतर ही है, बाहरी किसी देश में नहीं। वे कभी किसी पर निर्भर नहीं रहे। देश के नवीन होने का अर्थ है अभ्यंतरीन शक्ति से देश

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह। ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप ये धारावाहिक सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज की इस प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। अब इस सभा में आपसे मैं विदा लूं, उसके पहले आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको परिचित करवा दूं। शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि। 5:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा। वतन का राग कार्यक्रम में शाम 6 बजे हम बात करेंगे डॉक्टर मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी की। प्रकृति की पुकार, ये कार्यक्रम होगा शाम 6:30। आज का विषय प्रकृति और मनोविज्ञान। शाम 7 बजे योग संवाद कार्यक्रम में चर्चा का विषय श्री राम द्वारा तत्व ज्ञान उपदेश हेतु प्रार्थना। हमारा विशेष कार्यक्रम होगा शाम 7:30। इसमें आज आप सुनेंगे कलापिनी कोमकली का भक्ति गायन। रेडियो रिपोर्ट का वक्त होगा रात 8:00। 8:30 पर हिंदुस्तान हमारा कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज की। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में रात 9:00 जंक फूड पर जानकारी देंगी डॉक्टर श्वेता आनंद। और रात 9:30 सुनिएगा धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में हमारा आपका साथ यहीं तक था। आगे के प्रसारण आप लगातार सुनते रहेंगे, बने रहिएगा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, आपके लिए लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम तराने आजादी के। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत से।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी के। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम भारत भारती। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन।

तीन ताल में ट्रेडिशनल बंदिश बहुत सुंदर है, काफ़ी लोगों ने गाया बहुत पुराने समय से। अब कैसे बने मोरी बात सजनी।

0: भारत भारती कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंडित रोनू मजुमदार का बांसुरी वादन। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह को नमस्कार। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती भारत

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपका मित्र प्रमोद शर्मा।
2: और मैं हूं मोनिका।
1: आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मौसम तेरे रंग अनेक।

0: श्रोताओं, मुझे एक पुरानी कहावत याद आ रही है, वक्त और मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। जी हाँ, मौसम तो मौसम है, इसका क्या ठिकाना भला। कब नरम हो जाए, कब गरम हो जाए, कब मासूका की तरह हसीन लगने लगे और कब ये काल भयंकरी बन जाए।
1: श्रोताओं, मुझे भी एक कहावत याद आ रही है।
0: बताइए ना।
1: जो ठहर जाए वो मौसम नहीं, और जो बदल जाए वो दोस्त नहीं। तो चलिए आज इस मनचले मौसम के कुछ रंग भी हम देख लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और समझते हैं इनके वैज्ञानिक पहलुओं को।
0: तो क्यों ना सबसे पहले हम ओस के बारे में बात करें।
1: बिल्कुल श्रोताओ, ओस के लिए एक थोड़ा साहित्यिक शब्द निहार का प्रयोग किया जाता है। उर्दू का शब्द शबनम भी बड़ा ही प्यारा है। अंग्रेजी में इसे ड्यू कहते हैं। फूलों और पत्तियों पर जब जब सुबह इसकी बूंदे कांच के महीन कणों की तरह चमकती हैं, तो नजारा बड़ा ही हसीन हो जाता है। कुदरत की जीवंतता प्रकट होने लगती है।
0: अब चलिए देखते हैं श्रोताओं कि वैज्ञानिक रूप में ओस क्या है, कैसे बनती है। यह जाड़ों में रात घिरने पर जमीन आसपास की हवा की तुलना में अधिक तेजी से ठंडी होती है, और ऐसे में हवा जब धरातल, घर की छतों, वृक्षों, पत्तियों, फूलों आदि के संपर्क में आती है ना, तो उसमें समाई नमी ठंड पाकर के संघनित हो जाती है और पानी की बूंदों में बदल जाती है, और ये बूंदे घास फूस पत्तियों जमीन आदि पर दिखाई पड़ने लगती हैं, और इसे ही हम ओस कहते हैं। इस तरह ओस ठंडी हुई एक जल वाष्प भी कह सकते हैं।
1: श्रोताओ, हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम फ्रिज से पानी की बोतल बाहर निकाल कर रखते हैं, तो चंद मिनटों में ही बोतल की बाहरी सतह पर पानी की बूंदे नजर आने लगती हैं। ये बोतल का पानी नहीं है, बोतल का पानी तो बोतल के भीतर ही है। बाहर जो पानी की बूंदे हमें नजर आती हैं, वे वातावरण की नमी के ठंड के संपर्क में आने से बनती हैं। चूंकि बोतल की सतह ठंडी है, अतः ये ठंडक हवा में मौजूद नमी को संघनित करके पानी में बदल देती है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। और श्रोताओं, स्वच्छ व शांत रातों में ओस बनने की प्रक्रिया अधिक तेजी से होती है, लेकिन रात जब बादलों वाली हो तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे धरातल पूरी तरह से ठंडा नहीं हो पाता, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। होता यह है कि धरातल के ऊपर जो बादलों की सतह होती है, वह धरातल की गर्मी को विकृत होकर के अंतरिक्ष में जाने से रोक देती है, और इस तरह से धरती के लिए वे कंबल का काम करती है। अतः धरातल ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता और ओस बनना नहीं हो पाता, और यही कारण है कि बादलों वाली रात को ओस नहीं बनती।

0: इस प्रक्रिया में रात भर में 200 से 300 लीटर तक पानी इकट्ठा किया जा सकता है, जिससे इंसान की प्यास आराम से बुझाई जा सकती है।
1: क्या बात है। जी हाँ, जहाँ पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो सकता, उनके लिए तो कितने कमाल की तकनीक है ये। विदेशों में तो ओस इकट्ठा करने के लिए ढालदार छतें भी बनाई जाती हैं, जिन पर जमा हुई ओस की बूंदें बहकर नीचे आती हैं और उन्हें एक टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे यहाँ जैसे पीने के पानी की तंगी वाले इलाकों में छतों से डाला बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं, वैसे ही वहाँ ओस का पानी इकट्ठा करते हैं।
0: हाँ क्यों नहीं भाई, नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, ऐसा तो होगा ही। चलिए श्रोताओं, ये तो बात हुई ओस की, अब कुछ बात करते हैं हम कोहरे की। अंग्रेजी में इसे फॉग कहते हैं, वही हिंदी में कोहरा कहलाता है। कोहरा पड़ने के लिए ओस बनने की तुलना में अधिक ठंड की दरकार होती है। विज्ञान की भाषा में कहें तो ओसांक से नीचे का तापमान।
1: जी हाँ श्रोताओं, ओसांक वो तापमान होता है जिस पर ओस बनती है, लेकिन जब वातावरण का तापमान ओसांक से भी नीचे चला जाता है, हवा में समाई नमी संघनित होकर पानी की बूंदों में तब्दील हो जाती है। ये बूंदें धूल या धुओं के कणों के इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं और हवा में लटकते हुए बादल का दृश्य उपस्थित करती हैं। वास्तव में कोहरा भी एक प्रकार का बादल ही है जो जमीन को छूता रहता है। कोहरे में विजिबिलिटी यानी दृश्यता कम हो जाती है। कई बार तो कोहरा इतना घना हो जाता है कि कुछ मीटर तक भी चीजें दिखाई नहीं पड़ती।
0: श्रोताओं, शीतलहर के ऊपर नम वायु से शीतल वायु के मिलने से कोहरा उत्पन्न होता है। ओस और कोहरे में अंतर यह होता है कि ओस को कोई आधार चाहिए, मसलन जमीन, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां वगैरह वगैरह, जबकि कोहरा तो हवा में लटकता रहता है, इसे कोई आधार नहीं चाहिए। और श्रोताओं एक बात और बता दूं, कोहरे दो प्रकार के कहे जा सकते हैं। एक होता है धरातलीय कोहरा, जो कि धरातल के ऊपर के वातावरण में बनता है, और दूसरा होता है सागरीय कोहरा, जो सागर पर बनता है। धरातलीय कोहरा मुख्यतः शीत व शरद ऋतुओं में और सागरीय कोहरा मुख्यतः बसंत व ग्रीष्म ऋतु में बनता है। श्रोताओं, औद्योगिकरण ने कोहरे और धुएं के मिश्रण से एक नई चीज को जन्म दिया है, जिसे स्मोक कहते हैं। और यह शब्द दो शब्दों स्मोक और फॉग से मिलकर के बना है, यानी धुएं और कोहरे का मेल। यह ज्यादा देर तक बना रहता है और इसमें रसायनों के मिश्रण से अम्लीयता भी आ जाती है, जो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई कोहरे की और ओस की, अब हम कुछ बात करते हैं धुंध या कुहासा की।
1: जी हाँ श्रोताओं, कोहरे का एक हल्का रूप धुंध या कुहास कहलाता है। इंग्लिश में से मिस्ट कहते हैं। ये कोहरे की तरह घना ना होकर अपेक्षाकृत पतला होता है और इसमें दृश्यता भी अधिक होती है। कोहरे और धुंध में तकनीकी रूप से अंतर ये होता है कि कोहरे में जहाँ विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम होती है, वही धुंध या कुहास में 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच होती है।
0: श्रोताओं, अब धुंध के बाद हम बात करते हैं पाला की। आपने सुना होगा कि पाला पड़ता है। श्रोताओं, जैसा कि हमने सुना कि वातावरण का तापमान जब ओसांक के नीचे चला जाए तब कोहरा बनता है, लेकिन अगर यह तापमान हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाए तो फिर क्या बनता है? फिर बनता है पाला। तब श्रोताओं पाले का निर्माण होता है और इसमें वातावरण की नमी पानी में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे हिम में परिवर्तित हो जाती है और सफेद परत के रूप में जमीन या घास पर दिखाई देने लगती है। पाला फसलों के लिए बहुत हानिकारक होता है, अतः किसान इसमें अपनी फसलों को बचाने के लिए फसलों में सिंचाई कर देते हैं।
1: श्रोताओं, अब बात करते हैं जाड़ों की वर्षा की। भारत की जलवायु मानसूनी है और अधिकांश वर्षा गर्मियों में ही होती है, वो भी दक्षिण पश्चिमी मानसून से। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कुछ वर्षा शीत व वसंत ऋतु में भी हो जाती है, मगर संक्रांति के दिन तो पानी गिरना एकदम तय ही होता है। जाड़ों की ये बरसात उत्तर व मध्य भारत में रबी की फसल के लिए एक तरह से वरदान है।
0: बिल्कुल, दरअसल जाड़ों के समय

0: जी हाँ, इन हवाओं का कुछ भाग जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंचता है तो ये वहां से भाप ग्रहण कर लेता है और ये वहां पूर्वी घाटों पर टकराकर वर्षा करता है। ये वर्षा सहा की चावल की फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। श्रोताओं, ये तो बात हो गई जाड़ों की वर्षा की, अब बात करते हैं आम्र वर्षा की।
1: बिल्कुल,
0: भारत में होने वाली एक अन्य वर्षा जाड़ों के उतरने के बाद, या यूं कहें कि वसंत ऋतु में होती है, जिसे हमारे यहाँ सामान्यतः अमावट या आंवटे कहते हैं। इसे मॉनसून पूर्व वर्षा यानी प्री मॉनसून शॉवर्स भी कहा जाता है। ये मार्च के आसपास होती है।
1: श्रोताओं, केरल, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पांडिचेरी की अर्थव्यवस्था में इस वर्षा का काफी योगदान होता है। इन क्षेत्रों में आम्र वर्षा या फूलों वाली बौछार कहते हैं इसे, क्योंकि इसके कारण आमों को पकने में मदद मिलती है और आम समय से पूर्व पेड़ से गिरते नहीं हैं, और इस कारण दक्षिण भारत से आने वाली आम की फसल में इस वर्षा का काफी योगदान होता है। और इसी तरह से बरसात के होने से काफी पौधों में फूलों की बौछार होने लगती है।
0: जी हाँ श्रोताओं, पश्चिम बंगाल और असम में तो मानसून पूर्व वर्षा का बहुत महत्व है। इस वर्षा से यहाँ चाय के बागानों में नई पत्तियां पनपती हैं। अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका को देखते हुए इसे मिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर का भी खिताब मिल चुका है।
1: बिल्कुल मिल चुका है। श्रोताओं, असम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में समुद्र से उठने वाली गीली हवाओं और स्थल की शुष्क हवाओं के मेल से तूफान भी उठते हैं, जिन्हें हम वज्र तूफान या थंडर स्टॉर्म कहते हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटों पर इन तूफानों के कारण 120 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जिससे भारी तबाही भी मच जाती है कभी कभी।
0: जी हाँ श्रोताओं, राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश में भी प्री मॉनसून का असर देखा जा सकता है। यहाँ इसके कारण हल्की वर्षा होती है। असम में तो इस सीजन में इतनी बरसात हो जाती है कि कभी कभी वो जून की दो तिहाई तक हो जाती है। श्रोताओं, आपने भी गौर किया होगा कि जब हमारे यहाँ मानसून का नामो निशान नहीं होता, तब अखबारों में हम असम की बाढ़ की चर्चा पढ़ते हैं। दरअसल ये प्री मानसून की करामात है।
1: चलिए श्रोताओं, कुछ बात करते हैं सापेक्षिक आर्द्रता की। श्रोताओं, जब देश दुनिया के हाल सुनाए जा चुके होते हैं, तब रेडियो टीवी पर मौसम की जानकारी शुरू होती है। इस जानकारी के दौरान एक चीज जरूर बताई जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या है यह शब्दावली, मौसम में इसका क्या महत्व है, क्यों समाचार उद्घोषक इसे सुनाए बिना नहीं मानते? चलिए देखते हैं क्या है इसका अर्थ।
0: वायुमंडल में जो जल वाष्प यानी नमी मौजूद होती है, उसे ही वैज्ञानिक शब्दावली में आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता धरती से वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान यहाँ पहुँचती रहती है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। हमारे गीले कपड़े सूख जाते हैं, तालाबों और झीलों का पानी कम होता रहता है, धूप में पौधों की पत्तियां कुमला जाती हैं, जमीन पर फैला हुआ पानी थोड़ी देर में ना जाने कहां गायब हो जाता है। दरअसल ये सारा पानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया से वायुमंडल में समाता रहता है, जिसे आप चाहे नमी कह लें या चाहे जल वाष्प और चाहे आर्द्रता।
1: श्रोताओं, वायुमंडल के संगठन में जल वाष्प की औसत मात्रा 2% से कुछ कम होती है, किंतु स्थान व समय के अनुसार यह 0% से लेकर के 5% के बीच घटती बढ़ती रहती है। तापमान और वाष्पीकरण में सीधा संबंध होता है इसका। जितना अधिक तापमान, उतनी अधिक वाष्पीकरण की दर, और यही कारण है कि गर्मियों में और धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। दरअसल तापमान बढ़ने के साथ ही हवा में नमी धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है।
0: जी हाँ श्रोताओं, वायुमंडल की आर्द्रता 2 रूपों में प्रकट करते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी भी समय में हवा की एक निश्चित मात्रा से जल वाष्प को जो मात्रा मौजूद होती है, उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ये सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक होती है। कारण वही है, गर्मी बढ़ जाने से हवा की नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है।
1: श्रोताओं, अब बात सापेक्ष आर्द्रता की करते हैं। किसी खास टेम्परेचर और प्रेशर पर हवा की नमी धारण करने के लिए एक निश्चित सीमा होती है, और इस सीमा के आगे वह नमी धारण नहीं कर पाती है और उसे पानी में बदल देती है। इस तरह किसी खास टेम्परेचर व खास प्रेशर पर किसी खास मात्रा में वायु में जो वास्तविक नमी विद्यमान होती है और जितनी अधिक नमी धारण करने में उसकी क्षमता होती है उसी के अनुपात को हम सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सरल ढंग से कहें तो यह वह अनुपात होता है जो हमें यह बताती है कि हवा में उसकी क्षमता का कितना प्रतिशत नमी मौजूद है। जैसे मौसम उद्घोषक कहता है कि आपेक्ष आर्द्रता 60% है, तो मतलब यह हुआ कि हवा ने अपनी क्षमता का 60% नमी धारण किया हुआ है, अर्थात अभी 40% नमी और यह ले सकता है।
0: जी हाँ श्रोताओं, सापेक्षिक आर्द्रता का मौसम से बड़ा ही गहरा संबंध होता है, क्योंकि इसके अनुपात पर ही वर्षा होने की संभावना बनती या बिगड़ती है। यदि सापेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत बहुत ऊंचा है तो बरसात की संभावना समझिए, और अगर नीचे है तो शुष्क मौसम की। सिद्धांत वही है कि एक निश्चित सीमा के बाद हवा नमी को धारण नहीं कर पाएगी और उसके बाद बरसात के रूप में जमीन पर गिरा देगी।
1: और श्रोताओं, यही कारण है कि समुद्र तटों पर स्थित कोस्टल प्रदेशों में हर रोज वर्षा होती है। वहां सुबह से ही भारी वर्षा पड़नी शुरू हो जाती है। समुद्र का पानी भाप बनकर वायुमंडल में समाने लगता है। अपरांत 3 बजते-बजते हालत यह हो जाती है कि हवा की सापेक्षित आर्द्रता लगभग 100% तक पहुंच जाती है, और फिर शुरू होता है चमक और गरज के साथ पानी बरसने का क्रम। शाम 5 बजते-बजते आसमान एकदम साफ, यह सापेक्षित आर्द्रता फिर से नियंत्रण में आ जाती है।
0: श्रोताओं, बरसात के मौसम में कपड़े आसानी से नहीं सूखते, जबकि जाड़ों में छाया में फैलाते ही कपड़े उसकी तुलना में आसानी से सूख जाते हैं।
1: ऐसा क्यों होता है, जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: क्योंकि सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है। बरसात में चूंकि हवा में काफी नमी होती है, अतः सापेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत काफी ऊंचा हो जाता है, तथा और अधिक नमी धारण करने की क्षमता हवा में नहीं होती। यही कारण है कि कपड़े सूख नहीं पाते, जबकि जाड़ों के मौसम में शुष्क होता है और हवा में सापेक्षिक आर्द्रता कम होती है, अतः मौसम ठंडा होने पर भी कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन बरसात में भी अगर आप कपड़ों को एयर कंडीशनर कमरे में सुखाएंगे तो वो जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि एयर कंडीशनर न केवल टेम्परेचर कंट्रोल करता है बल्कि ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। श्रोताओं, सापेक्षित आर्द्रता का स्वास्थ्य से भी गहरा संबंध है, यह आप जान लीजिए, और इसके अधिक व कम होने पर दोनों ही स्थितियों में सेहत को नुकसान पहुंचता है। सामान्यतः 60% से अधिक सापेक्षित आर्द्रता सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, और 70% से अधिक बहुत बुरी होती है। मगर क्यों?
0: श्रोताओ, ह्यूमन बॉडी का मैकेनिज्म एवोपरेशन से जुड़ा होता है। हमारे शरीर से पसीने का वाष्पीकरण होता रहता है, जिसके माध्यम से शरीर की अतिरिक्त गर्मी बाहर निकलती रहती है। लेकिन वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत बढ़ जाने से शरीर के पसीने की वाष्पीकरण की प्रक्रिया थम जाती है और शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती। श्रोताओ, इस चीज को हम उमस कहते हैं।
1: श्रोताओ, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। बरसातों में जबकि तापमान भी अधिक हो तो उमस की शिकायत अधिक हो जाती है। कारण यह होता है कि एक ओर तो हमारा शरीर गर्मी बाहर निकालने के लिए बेचैन रहता है, दूसरी ओर वातावरण इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता है, और नतीजा यह होता है कि हमारे शरीर पर पसीने का चिपचिपापन लिपट जाता है और एक बेचैन कर देने वाली गर्मी महसूस होने लगती है हमें।
0: जी हाँ श्रोताओं, प्रयोगों में पाया गया है कि अगर वातावरण का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस हो और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0% हो तो हमारे शरीर को टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस महसूस होने लगता है। कारण ये है कि पसीने के वाष्पीकरण की दर बहुत बढ़ जाती है और बॉडी कूलिंग का प्रोसेस तेज हो जाता है।
1: लेकिन श्रोताओं, अगर 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो तो हमारे शरीर को यह टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस महसूस होता है। वजह यह होती है कि पसीने का वाष्पीकरण बंद हो जाता है और बॉडी कूलिंग का प्रोसेस पूरी तरह से रुक जाता है।
0: जी हाँ श्रोताओं, जिस तरह रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होना अच्छा नहीं होता, उसी तरह इसका बहुत कम होना भी सेहत के लिए अनुकूल नहीं होता। 50% से नीचे की रिलेटिव ह्यूमिडिटी आराम में खलल डालती है और 30% के नीचे की काफी बुरी होती है। कुल मिलाकर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की रेंज किसी भी कीमत पर 30% और 70% के बाहर नहीं निकलनी चाहिए। एयर कंडीशनर यही सुविधा हमें प्रदान करता है, जबकि कूलर नहीं कर पाता। यही कारण है कि कूलर की तुलना में एसी अधिक कंफर्टेबल फील होता है।
1: श्रोताओं, अब बात करते हैं हवाई उड़ानों में भी इस्तेमाल होती है ह्यूमिडिटी से संबंधित जानकारियां। श्रोताओं, हवाई जहाज काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। हम जानते हैं कि ऊंचाई पर टेम्परेचर कम हो जाता है। अब सोचिए जरा, अगर इस कम टेम्परेचर की हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो क्या होगा? हवा की नमी आइस में तब्दील हो जाएगी, जो हवाई जहाज के डैनों पर जम जाएगी और उन्हें भारी बना देगी। अतः हवाई उड़ानों के दौरान ह्यूमिडिटी के हिसाब से ही ऊंचाई को मैनेज किया जाता है, और इसके लिए एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल की जाती है, डेंसिटी ऑल्टीट्यूड। और यह वास्तविक ऊंचाई ना होकर के तापमान और आर्द्रता के हिसाब से एडजस्ट की गई ऊंचाई होती है। यदि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो डेंसिटी ऑल्टीट्यूड वास्तविक ऊंचाई से अधिक हो सकती है। तो श्रोताओं, ये थे मौसम के रंग जो समय के साथ बदलते रहते हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।

0: छेड़ देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: रेडियो आजाद हिंद प्रस्तुत करता है प्राचीन भारत में वैज्ञानिक चिंतन की गौरवशाली परंपरा की वानगी देने वाला अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।
3: इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे भारतीय ऋषि वैज्ञानिक से जिनकी सृष्टि और जीवन के किसी विशिष्ट अंग से जुड़ी अवधारणा ने एक महती वैज्ञानिक परिकल्पना को जन्म दिया।
2: वो परिकल्पना और सिद्धांत जिसका विकास पश्चिमी जगत 16वीं-17वीं शताब्दी के बाद ही कर पाया। उदाहरणार्थ ज्यामिति का 29वां प्रमेय जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, वस्तुतः ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस का नहीं है। इसकी खोज शताब्दियों पूर्व ऋषि बोधायन कर चुके थे। ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा हमें बताएगी वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था, चाहे वो सृष्टि की उत्पत्ति या सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि नक्षत्रों की गतियों का सटीक हिसाब हो या सूर्य चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणियों का अथवा कैलेंडर का निर्माण, पदार्थों की संरचना की बात हो अथवा पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की चर्चा।
3: दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ग्रहों नक्षत्रों ज्योतिष गणित से लेकर वनस्पति चिकित्सा शल्य औषधि रसायन आदि विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान की सुव्यवस्थित और सुदृढ़ प्रणाली को जन्म दिया।
2: ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा देश की नई पीढ़ी को रूबरू कराएगी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में वेदकालीन भारत की अद्वितीय और गौरवशाली उपलब्धियों से, ताकि हमारे युवा साथी हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित हो सकें, उस पर गर्व कर सकें और प्राचीन भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की खोज के लिए प्रेरित हो सकें।
4: फोन आ रहा है, फोन तो उठा।
5: अरे हाँ, उठाती हूँ ना।
4: हेलो,
5: अच्छा अमृता।
4: अरे हाँ हाँ हाँ, बोल ना।
6: देखा, ये फिर शुरू हो गई बात करने में।
4: अरे बातें तो करने तो मेरे को पहले।
5: ये ना क्लास में अच्छी बात।
4: अरे रुको, रुको अमृता, मैं तेरे को थोड़ी देर में लगाती हूँ।
6: अंजू, तू दिन भर अपनी सहेली से फोन पे ही बात करती रहती है।
5: कहाँ बात करती हूँ?
6: देख, अभी भी फोन आया। तू जब शाम को घर जाती है तब भी तू उससे बात करती हुई जाती है। तुझे पता है ना कि मोबाइल के रेडिएशन हमारे लिए कितने बुरे होते हैं?
5: कान खराब हो जाएंगे।
6: अब पता चल गया ना? ठीक है, तो आप फोन पे ज्यादा बात मत करना। और हाँ चलो, और हाँ क्लास में तो और बात मत किया कर, अगर गुरुजी ने देखा ना तो डांट पड़ जाएगी।
7: अरे गुरुजी नहीं थे।
6: अरे देखो गुरुजी आ गए। गुरुजी आ गए। प्रणाम गुरुजी।
7: प्रणाम गुरुजी।
8: प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बच्चों खुश रहो, मेधावी बनो।
6: तुम इधर आके बैठो मेरे पास। अंजू तुम वहाँ बैठो।
8: शांति
6: जी, जी
8: आज कक्षा में कौन अनुपस्थित है? ये सीट नंबर 5 खाली क्यों है?
7: गुरुजी, उसकी यहाँ भाई हुआ है ना, उसकी यहाँ छठी है।
8: अच्छा।
6: हाँ गुरुजी, और जब मैं स्कूल आ रही थी ना तो मैंने आते हुए देखा कि उसके घर में काफी सारे मेहमान आए हुए थे।
7: गुरुजी गुरुजी, ये छठी क्या होता है?
8: बच्चों, छठी के दिन षष्ठी देवी की पूजा होती है।
6: हाँ गुरुजी, ये तो मुझे पता है।
8: अच्छा बताओ, और क्या पता है तुम्हें षष्ठी देवी के बारे में?
6: और कुछ नहीं पता, आप बताइए।
8: चलो मैं ही बताए दिए देता हूँ। बच्चों, छठी के दिन षष्ठी देवी की पूजा होती है, दूध का भोग लगता है और बच्चे की जन्म पत्री पढ़ी जाती है।
6: अच्छा गुरुजी, और क्या क्या होता है?
8: बताता हूँ। जन्म पत्री से मुझे याद आया, बच्चों क्या तुम्हें पता है विश्व के पहले भविष्यवक्ता ज्योतिषी भारत के महर्षि वाराहमिहिर थे?
6: महर्षि वाराहमिहिर?
8: हाँ।
6: तो गुरुजी, आज आप हमें महर्षि वाराहमिहिर के बारे में ही बताइए ना।
7: बताइए ना गुरुजी।
8: ठीक है ठीक है, अच्छा बताता हूँ भाई, बताता हूँ।
6: अरे वाह, आज हम उनके बारे में जानेंगे, है ना?
5: चलो चलो चलो।
8: तो शांति से सुनो, ठीक है?
6: जी गुरुजी। गुरु,
8: तो मैं तुम्हें महर्षि वाराहमिहिर के व्यक्तित्व और कृतित्व की वानगी देने के लिए उज्जैनी ले चलता हूँ, महाराज विक्रमादित्य चंद्रगुप्त के दरबार में।
6: हाँ गुरुजी, चलो चलो चलते हैं।

0: महर्षि, कृपया यह कुंडली देखें।
1: ये कुंडली क्या देखें इसे? इसमें देखने को है क्या?
0: महर्षि, ये क्या? हम तो चाहते थे कि आप कुंडली का गहन अध्ययन मनन कर इस बालक के भविष्य के विषय में विस्तार से हमें बताएं, पर आपने तो कुंडली पर एक दृष्टि भर डालकर कह दिया। क्या देखें इसे? इस अरुचि का क्या कारण है?
2: महर्षि, किंचित आपको ज्ञात नहीं कि ये कुंडली किसकी है?
1: यह सत्य है महामात्य कि हमें ज्ञात नहीं कि ये कुंडली किसकी है, पर यह भी सच है कि इस कुंडली में भविष्य देखने जैसा कुछ भी नहीं।
0: महर्षि, क्या तात्पर्य है आपका?
1: तात्पर्य ये राजन कि इस बालक का जीवन मात्र कुछ दिनों का ही शेष है।
0: नहीं नहीं महर्षि, लगता है शीघ्रता में कुंडली देखने में आपसे कोई भूल हुई है। महर्षि, कृपया इसे पुनः ध्यान से देखें। ऐसा कैसे हो सकता है?
1: राजन, व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु का भी समय निश्चित हो जाता है। यही नियति है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। ये कुंडली स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि इस बालक की मृत्यु 18वें वर्ष में हो जाएगी। कुंडली के अनुसार से इस समय ये बालक 17वें वर्ष को पार कर चुका है, अतः भविष्य के नाम पर इसके पास कुछ ही समय शेष है।
2: महर्षि, ये आपने क्या कह दिया? देख रहे हैं ना, आपकी भविष्यवाणी सुनकर सारा राज दरबार स्तब्ध रह गया। ये कुंडली महाराज के एकमात्र पुत्र की है। आपकी भविष्यवाणी सुनकर महाराज और महारानी कैसे हाल बेहाल हो रहे हैं। महारानी तो बिलख बिलख कर रो रही हैं। हे महर्षि, कृपया पुनः कुंडली देखकर कह दे कि आपने जो पहले कहा वो सत्य नहीं, सत्य नहीं है, असत्य है।
1: ये जानकर कि ये कुंडली राजकुमार की है, हमें भी अत्यंत दुख हो रहा है। महामात्य, काश कि हमारी भविष्यवाणी असत्य सिद्ध हो जाए, पर हम जानते हैं यही सत्य है, एक कटु सत्य। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नियति है जो हमें इस कुंडली से स्पष्ट रूप में दिख रही है।
0: ये आपने क्या कह दिया महर्षि? कह दीजिए कि यह असत्य है, कह दीजिए कि असत्य है महर्षि।
1: काश, काश कि हम कह सकते यह सत्य है।
0: अब हम क्या करें, क्या करें? कृपया आप सभी यहां से पधारें और हमें अकेला छोड़ दें। महर्षि, आप भी
1: धैर्य रखें राजन, ईश्वर आपका कल्याण करे।
0: महामात्य, आखिर वही हुआ जो होनी को स्वीकार था। महर्षि मेहर की भविष्यवाणी सत्य हुई। हमने सोचा था और महारानी को भी पूरा पूरा विश्वास दिलाया था कि हम राजकुंवर की सुरक्षा में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देंगे और महर्षि की भविष्यवाणी को असत्य सिद्ध कर देंगे। हमने अपना पूरा पूरा प्रयत्न भी किया, किंतु हम हार गए महामात्य, हम पराजित हो गए।
2: महाराज, महाराज

0: आज जब उनकी भविष्यवाणी का सच हमारे सामने है, हम उनके ज्ञान, उनकी विद्या के सामने नतमस्तक हैं और उनसे करबद्ध क्षमा मांगना चाहते हैं।
1: महाराज, आपकी इच्छा अनुसार हमने महर्षि को बुलाने के लिए प्रतिहारी भेज दिया है। संभवतः अब वे आते ही होंगे।
2: महाराज की जय हो। महर्षि मिहिर पधार रहे हैं।

0: आइए महर्षि आइए, महर्षि के चरणों में विक्रमादित्य का सादर प्रणाम।
1: आयुष्मान भव, यशस्वी भव राजन। जो कुछ हुआ उसके लिए हमें हार्दिक दुख है। अब धैर्य रखने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। नियति के आगे हम सब विवश हैं।
0: महर्षि, हम हार गए। सच कहें तो आपकी भविष्यवाणी को असत्य सिद्ध करने के लिए हमने राजकुंवर की सुरक्षा हेतु क्या कुछ नहीं किया, किंतु नियति का खेल देखिए, एक जंगली शूकर ने राजकुमार के प्राण हर लिए। महर्षि, आप जीत गए, आप जीत गए महर्षि।
1: राजन, ये सब जानना अत्यंत दुखद है, पर कहा है ना, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधि हाथ है। महाराज, हमें अत्यंत प्रसन्नता होती जो हमारी भविष्यवाणी असत्य सिद्ध हो जाती, पर हम जानते थे ये ज्योतिष ये खगोल विज्ञान असत्य नहीं हो सकता। राजन, ये जीत ज्योतिष की है, ये जीत हमारी नहीं, खगोल विज्ञान की जीत है।
0: हाँ महर्षि, आज हमें भी विश्वास हो गया है कि आपका ज्योतिष विज्ञान संपूर्णतः सत्य है। इस क्षेत्र में आपके गहन अध्ययन और प्राप्त उपलब्धियों को सादर नमन करते हुए मैं इस राज दरबार में आपको राज्य के सबसे बड़े पुरस्कार और प्रतिष्ठा चिन्ह वाराह से सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। आज से आप वाराहमिहिर नाम से जाने जाएंगे।
2: साधु, साधु, आचार्य वराहमिहिर की जय।
3: संपूर्ण राज दरबार और राज्य की संपूर्ण प्रजा को सूचित हो जाए कि आज वराह अलंकरण के साथ ही महाराज विक्रमादित्य चंद्रगुप्त ने महर्षि वाराहमिहिर को राज दरबार के नव रत्नों में सम्मिलित कर लिया है। शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। अब मैं महाराज से निवेदन करता हूं कि वे महर्षि वाराहमिहिर को श्रीफल और राज उत्तरीय प्रदान कर नव रत्न के रूप में सम्मानित करें।
0: लीजिए महर्षि।
1: आयुष्मान भव, साधु।
0: सम्मान्य महर्षि, हमारी विनम्र कामना है कि आप अपनी शोधों अपने ज्ञान से ज्योतिष और खगोल विज्ञान की ख्याति पूरे देश में सर्वोच्च शिखर पर प्रतिस्थापित कर राज्य तथा उज्जैनी को गौरव प्रदान करें। हम आपके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करते हैं।

0: आदित्य की जय। सम्राट विक्रमादित्य की जय।
1: आदरणीय महाराज विक्रमादित्य चंद्रगुप्त और सभी सभासदों, इस सम्मान के लिए मैं महाराज विक्रमादित्य और पूरी राज्य सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं मानता हूं ये मेरा नहीं वरन ज्योतिष का, खगोल विज्ञान का सम्मान है। बहुत बहुत साधुवाद, कोटिशह साधुवाद ज्योतिष विज्ञान को इस रूप में सम्मानित करने के लिए। बधाइयां। इस अवसर पर मैं महाराज आपको और संपूर्ण राज दरबार को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ज्योतिष और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उज्जैनी का नाम पूरे भारत में स्थापित करने में मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा।
2: और महर्षि, हम भी आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके इस अनुष्ठान की पूर्ति में हम आपको कभी किसी प्रकार का कोई अभाव अनुभव नहीं होने देंगे। आपको सभी प्रकार की सुविधाएं एवं सहायता प्रदान करना हमारा पुनित कर्तव्य होगा।
0: महाराज विक्रमादित्य की
3: जय।
0: महाराज विक्रमादित्य की
3: जय।
0: कृपया सभी सज्जन सहभोज के लिए पधारे।
2: आइए ऋषि।
4: प्रणाम आचार्य श्री।
1: यशस्वी हो मुनि जिनभद्र, बताएं क्या पंच सिद्धांतिका का पाठ पूरा हो गया? विराजे,
4: पाठ तो पूरा हो गया आचार्य, पर
1: क्या कोई शंका?
4: शंका नहीं, मात्र निवेदन है। हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि आपका कार्य महर्षि आर्यभट्ट के कार्य का संवर्धन है।
1: मुनिवर, आपका कथन सत्य है। हमारा जन्म सन 499 ईस्वी में उज्जैनी के निकट कालपी नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हमारे पिता पंडित आदित्य दास सूर्य भगवान के भक्त थे। उन्हीं ने हमें ज्योतिष विद्या सिखाई। ज्योतिष विज्ञान में बढ़ती रुचि ने हमें युवावस्था में महान खगोलज्ञ और गणितज्ञ आर्यभट्ट के सानिध्य में कुसुमपुर पहुंचा दिया। उनसे हमें इतनी प्रेरणा मिली कि हमने ज्योतिष विद्या और खगोल ज्ञान को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया और महर्षि आर्यभट्ट के कार्य को आगे बढ़ाने का व्रत ले लिया।
4: फिर आप उज्जैनी कब आए?
1: महर्षि आर्यभट्ट से मार्गदर्शन पाने के बाद हम उज्जैनी चले आए, क्योंकि उस समय उज्जैनी विविध विद्याओं का केंद्र बना हुआ था। गुप्त शासन के अंतर्गत यहां पर कला, विज्ञान और संस्कृति के अनेक केंद्र पनप रहे थे। अन्य स्थानों के विद्वान भी यहां एकत्र होते रहते थे। इसके बाद से हम अधिकतर यहीं रहकर अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। मुनिवर, पंच सिद्धांतिका में आपने क्या विशेष बात रेखांकित की?
4: आचार्य श्री, पंच सिद्धांतिका, यद्यपि आपने पैतामह वाशिष्ठ, रोमक, पॉलिश और सिद्धांतों की विवेचना की है, पर इन सब में सर्वश्रेष्ठ सूर्य सिद्धांत है, जो सूर्य पर आधारित है। इसकी सहायता से कठिनतम खगोलीय गणनाओं को सुगमता से हल किया जा सकता है। सूर्य सिद्धांत की सबसे बड़ी देन साइन सारणी है।
1: मुनिवर, संभवतः आपको ज्ञात हो प्राचीन ग्रंथों में ज्योतिर्विज्ञान के प्रमुख प्रवर्तक 18 माने गए हैं। ब्रह्मा, सूर्य, वशिष्ठ, अत्रि, मनु, पौलस्त्य, लोमश, मरीचि, अंगिरा, व्यास, नारद, शौनक, भृगु, च्यवन, यवन, गर्ग, कश्यप और पराशर।
4: वाह,
1: ये सभी प्रवर्तक भारत की ही अमर विभूतियां हैं। इन 18 प्राचीन आचार्यों के सिद्धांतों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण और मान्य सिद्धांत सूर्य सिद्धांत है। इसीलिए हमने लिखा स्पष्टतरह सावित्रह।
4: आपने गणना के जो सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में बताइए ना।
1: मुनिवर, चाहे हम नरसिंह देवज्ञ के 6 सिद्धांतों को लें या देवज्ञ पुंजराज के 7 सिद्धांतों को अथवा शाकल्य संहिता के 8 सिद्धांतों को, सभी में सूर्य सिद्धांत की ही प्रधानता है। इसके अनुसार गणना के सिद्धांतों में प्रमुख है 1. सहस्त्र युगीय कल्प के आधार पर सूर्यादि ग्रहों की गणना और उनका स्पष्टीकरण, 2. काल बोधक वर्ष गणना, मास गणना, तिथि गणना, वार गणना और घड़ी पल आदि की गणना आक्षमान से करके चतुर्भिर व्यवहारोहत्र सौर चंद्रार्थ सावने सिद्ध करना, 3. पंचांग की गणना में निरयण गणना को मान्यता देते हुए ग्रहण युति क्रांति साम्य आदि की गणना में सायन गणना का प्रयोग, 4. कल्प के आरंभ के पश्चात 47,400 दिव्य अर्थात सौर मान के 1,70,64,000 वर्ष से अहर गण की गणना, जिसके आधार पर निरयण ग्रह गणना की जाती है, 5. नक्षत्रिक चैत्र आदि मासों के नाम की यौगिकता और सूर्य आदि वारों का अहर गण गणना में महत्व, तथा 6. सूर्य आदि ग्रहों की गतियों में आकर्षण शक्ति की मान्यता।
4: अद्भुत आचार्य श्री, सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो काल गणना की जाती है उसके आगे विश्व की कोई भी काल गणना नगण्य सिद्ध होती है।
1: हाँ मुनिवर, हाँ अवश्य। हमारी गणना के अनुसार 4,32,100 वर्षों का कलयुग
4: जी,
1: 8,64,000 वर्षों का द्वापर, 12,96,000 वर्षों का त्रेता और 17,28,000 वर्षों का कृतयुग होता है
4: जी।
1: इस प्रकार मिलाकर कुल 43,20,000 वर्षों का एक महायुग होता है, 1,000 महायुगों का एक कल्प होता है, अर्थात 4,32,00,000 वर्षों का एक कल्प होता है।
4: आचार्य श्री, पंच सिद्धांतिका में आपने वेधशालाएं बनाने के सूत्र संकेत भी तो दिए हैं।
1: हाँ हाँ, बात यह है मुनिजर भद्र कि हम पृथ्वी की तरह ही सौर मंडल के अन्य ग्रहों की चाल की नाप तौल सही नहीं कर पा रहे थे। तब लगा ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को आंखों से लगातार देखते रहा जाए और उसके आधार पर समय समय पर किए गए गणितों की प्रक्रिया में भी आवश्यक परिवर्तन किया जाता रहे। इसी प्रयोजन के लिए वेधशालाओं का निर्माण और उनका सिलसिला प्रारंभ हुआ।
4: हाँ, उज्जैनी की वेधशाला तो हमने देखी है, इसके अतिरिक्त आपने और कहाँ वेधशाला बनवाई है?
1: अभी हाल में ही हमने इंद्रप्रस्थ में एक महत्वपूर्ण वेधशाला मेरु स्तंभ पूर्ण की है। संभवतः आपने उसके विषय में सुना होगा और आपको ज्ञात ही होगा कि हमने ज्योतिषीय गणनाओं के लिए यंत्रों का भी आविष्कार किया है। मेरु स्तंभ में ग्रहों तथा राशियों के मापन का प्रबंध है। समीप ही 27 नक्षत्रों की स्थिति जानने के लिए 27 ऐसे यंत्र बनाए गए हैं जिनकी सहायता से नक्षत्रों की स्थिति भी आंकी जा सकती है।
4: परंतु आचार्य, इन वेधशालाओं की उपयोगिता क्या है?
1: मुनिवर, आपको तो पता ही होगा रामायण काल में महर्षि अत्रि की सूर्य वेधशाला प्रसिद्ध थी
4: जी।
1: इन वेधशालाओं के माध्यम से आकाशीय पिंडों के उन्नतांश दिशांश अक्षांश आदि की गणना होती थी
4: जी।
1: मुनिवर, पृथ्वी की परिस्थितियों का एक बड़ा भाग अन्य ग्रहों के द्वारा रचा जाता है। सूर्य को प्रकाश ताप और प्राण का अधिष्ठाता माना गया है। यह अनुदान पृथ्वीवासियों को सतत सूर्य से ही प्राप्त होते रहते हैं। सूर्य ही नहीं, सौर मंडल के अन्य ग्रहों का भी पृथ्वी पर अनुकूल वातावरण रचने में अपना अपना योगदान होता है। ग्रहों की गति एवं स्वरूप में होने वाले हेर फेर से पृथ्वी का वातावरण और संबंधित जीव जंतु और वनस्पतियां समान रूप से प्रभावित होते हैं। इन मौसम में असामयिक होने वाले हेर फेर, प्रकृति विक्षोभों की यदि जानकारी पहले से ही मिल जाए तो उनके अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था करने में सहयोग सिद्ध हो सकता है।
4: हाँ जी आचार्य श्री, महर्षि नारद ने कहा है, सिद्धांत संहिता होरा रूप स्कंद त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योति शास्त्र मनुत्तमम। अर्थात सिद्धांत संहिता और होरा रूप स्कंद त्रयात्मक ज्योति शास्त्र वेद भगवान का निर्मल नेत्र स्वरूप अति उत्तम विज्ञान है। ज्योतिर्विज्ञान का सिद्धांत स्कंद का वर्णन तो आपने अपने पंच सिद्धांतिका ग्रंथ में कर दिया है, पर संहिता और होरा स्कंदों का वर्णन?
1: मुनिवर, ज्योतिर्विज्ञान के संहिता स्कंद का वर्णन हमने अपने वृहत संहिता ग्रंथ में विस्तार के साथ किया है, जिसका सारांश है कि सूर्यादि ग्रहों, विविध केतुओं, पुच्छल ताराओं, नक्षत्रों, सप्तर्षि, अगस्त्य आदि तारा व्यूहों के स्थान, चार योग, उदय, अस्त आदि के द्वारा शोभा शोभादि का वर्णन तथा विभिन्न उत्पादों, शकुनों और उनके फलों पर विचार, रत्न परीक्षा, पशु परीक्षा के साथ ही विविध मुहूर्तों का वर्णन और मानव जाति के सभी व्यवहारिक विषयों का वर्णन भी संहिता में दिया गया है। इसलिए इस स्कंध का दूसरा नाम व्यवहार शास्त्र रखा गया है।
4: और होरा स्कंध?
1: होरा स्कंध का दूसरा नाम जातक है। जन्म काल के आधार पर जो शुभाशुभ फल निर्णय होता है उसे हम जातक कहते हैं, किंतु होरा लग्न का नाम है जिसके द्वारा समस्त जातक संबंधी फल विचार होते हैं। इसी होरा स्कंध के द्वारा जन्म वर्ष प्रश्नादि के इष्ट काल पर ग्रह भावादि का स्पष्टीकरण तथा दृष्टि बल दशा अंतर दशादि की गणना तथा फलों का विचार होता है। मुनिजन भद्र, सच कहें तो हमारे शोध का नवनीत वृहत संहिता ग्रंथ में भरा हुआ है। इस ग्रंथ में प्राकृतिक विज्ञान का हमने इतना विस्तृत वर्णन किया है कि कोई भी ज्योतिर्विज्ञान का क्षेत्र बचा नहीं है। ग्रहण, उल्कापात, भूकंप, वृष्टि, प्रकृति, ग्रह, नक्षत्रों की स्थिति, गति का प्रभाव आदि के साथ साथ धूमकेतुओं का भी विशद वर्णन किया गया।
4: धूमकेतुओं की जानकारी?
1: हाँ हाँ, पुच्छल तारों को हमने शुभ केतु और धूमकेतु दो वर्गों में बांटा है। छोटे आकार के, देखने में शोभनीय, सीधे और श्वेत वर्ण के केतु अर्थात पुच्छल तारों को हमने शुभ केतु नाम दिया है। ये थोड़े समय में ही अस्त हो जाते हैं। इसके विपरीत अशुभ दर्शन वाले केतु धूम केतु होते हैं।
4: हाँ आचार्य श्री, इन केतुओं की उत्पत्ति के संबंध में आपका मत क्या है?
1: वृहत संहिता में हमने सूर्यादि ग्रहों तथा पृथ्वी एवं नक्षत्रों से उत्पन्न होने वाले सहस्त्रों केतुओं की उत्पत्ति के संबंध में विस्तृत वर्णन किया है, साथ ही उनकी गति स्थिति एवं उनके उदय से होने वाले शुभाशुभ परिणामों का भी वर्णन दिया है।
4: हमारे विचार से आचार्य श्री, धूमकेतुओं के विषय में यह संभवतः पहला आधिकारिक वर्णन है।
1: हाँ मुनिवर, हाँ, ये हमारे सुदीर्घ काल के अध्ययन का परिणाम है। सच तो यह है कि धूमकेतु हमेशा से ही मनुष्य के कौतूहल और आकर्षण का केंद्र रहे हैं। इनके साथ अलौकिक रहस्यमयता और विलक्षणताएं हमेशा से जुड़ी रही हैं। निश्चय ही वृहत संहिता धूमकेतुओं के संबंध में अनेक जिज्ञासाओं का समाधान प्रस्तुत करने में सफल होगी।
4: आचार्य श्री, और अन्य कोई विषय जो जो ज्योतिर्विज्ञान से संबंधित है।
1: वास्तुशास्त्र भी ज्योतिर्विज्ञान से संबंध एक विज्ञान है। वास्तुशास्त्र मनुष्य को जगत व्यवस्था की क्षमता प्रदान करने के लिए है, जिससे वो सुखी, संपन्न और सुरक्षित रहे।
4: जी आचार्य श्री, वास्तुशास्त्र का आधार क्या है?
1: मुनिवर, हमारा सूर्य, सौर मंडल के ग्रह, उपग्रह, अन्य तारे और निहारिकाएं, सबका अपना अपना चुंबकीय क्षेत्र और प्रभावी बल धाराएं होती हैं, और एक समेकित व्यवस्था के अंतर्गत सौर मंडल के सभी ग्रह, पृथ्वी, परस्पर बल धाराओं से परिचालित हैं। आप भी जानते हैं, कीट पतंग, मछली, पक्षी व अनेक अन्य प्राणी पृथ्वी के गुरुत्व का अनुभव कर दिशाएं ज्ञात कर लेते हैं। प्रत्येक ग्रह नक्षत्र की गतिविधि और स्वभाव विशिष्ट प्रकार की रश्मि उत्पन्न कर अपना प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु पर डालता है। वास्तुशास्त्र द्वारा भवन की स्थिति, द्विगुण मुक्ता, निर्माण का समय, भवन के विभिन्न हिस्सों के बीच आकार प्रकार का अनुपात, निर्माता, निवासी, ग्रह प्रवेश का मुहूर्त, भवन स्वामी के साथ जोड़कर ज्योतिष के अनुसार सुयोग बिठाने की गणना करता है।
4: अर्थात ज्योतिर्विज्ञान और मानवीय सुविधाएं वास्तु रचना से जुड़ी हुई है।
1: हाँ, ये एक दूसरे पर आधारित मानी गई है। वास्तुशास्त्र प्राकृतिक ऊर्जा का सदुपयोग करना सिखाता है। हमने अपने वृहत संहिता ग्रंथ में वास्तुशास्त्र का वर्णन एक पृथक अध्याय के रूप में किया है, जिसमें भवन कला को ज्योतिष से संबद्ध कर तमाम विभिन्नताओं को सूत्र रूप में व्यवस्थित किया गया है। संध्या का समय हो गया है मुनिवर, अब हमें चलना चाहिए। आइए
4: जी, पधारे।
1: इस
3: तो बच्चों, ये थी महर्षि वाराहमिहिर के व्यक्तित्व और कृतित्व की एक झलक।
5: हाँ गुरुजी, वो तो हमने जान लिया,
6: मगर उनकी रचनाएं भी बताइए ना।
5: हाँ गुरुजी, हाँ। उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे वो भी बताइए ना।
3: गणित ज्योतिष पर उनका पंच सिद्धांतिका, फलित ज्योतिष पर वृत्त संहिता और वृत्त जातक, तथा योग यात्रा ग्रंथ आज भी ज्योतिष शास्त्र के महत्वपूर्ण और दिशा निर्देशक ग्रंथ हैं।
5: अरे वाह गुरुजी।
3: महर्षि वाराहमिहिर ने पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भू विज्ञान आदि के संबंध में भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की।
5: अच्छा गुरुजी।
3: अपने विशद ज्ञान और सरस प्रस्तुति के कारण उन्होंने खगोल जैसे शुष्क विषय को भी रोचक बना दिया।
5: तो गुरुजी, ये बताइए कि महर्षि वाराहमिहिर की मृत्यु कब हुई?
3: बच्चों, उनकी मृत्यु ईस्वी सन 587 में हुई।
5: अच्छा गुरुजी।
3: तो चलो, अब घंटी बज गई है, आप लोगों की कक्षा आज यहीं समाप्त होती है।
5: जी गुरुजी, पर आज आपने जो हमें महर्षि वाराहमिहिर के बारे में बताया, उसके लिए तो हम यही कहेंगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: गुरुजी।
5: नमस्ते गुरुजी।
3: नमस्ते बच्चों, नमस्ते।

0: साथियों, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी किसी और ऋषि वैज्ञानिक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, आपके लिए लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम तराने आजादी के। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत से।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी के। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम भारत भारती। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन।

ताल में ट्रेडिशनल बंदिश बहुत सुंदर है, काफ़ी लोगों ने गाया बहुत पुराने समय से। अब कैसे बने मोरी बात सजनी है।

0: भारत भारती कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंडित रोनू मजुमदार का बांसुरी वादन। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह को नमस्कार। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज की दोपहर कालीन प्रसारण सभा में आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज दिन की सभी प्रस्तुतियां आपको अच्छी लगी होंगी। अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराइएगा। फिलहाल समय हो रहा है कि इस प्रसारण सभा में मैं आपसे विदा लूं, तो इजाजत दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। आगे बहुत कुछ खास है आपके लिए हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में। इंतजार कीजिएगा बस जरा सा।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा लेकर मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहेगा अब हमारा साथ ज्ञात, अल्पज्ञात और गुमनाम नायकों की गाथाएं और उनकी किस्से कहानियां जरूर सुनिए रेडियो आजाद हिंद में। आप हमारा प्रसारण ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट भी सुन सकते हैं मिक्सलर ऐप पर, रेडियो गार्डन पर, स्पॉटिफाई पर, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट, अमेजॉन पॉडकास्ट, यूट्यूब पॉडकास्ट, अमेजॉन पॉडकास्ट और यूट्यूब पॉडकास्ट पर भी आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 MHz पर। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें, बस कुछ ही देर में सुनिए कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसमें आप सुनेंगे मंडल एक के सूक्त 169 का वाचन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम 5:10 पर होगा। वतन कारा कार्यक्रम पेश किया जाएगा शाम 6 बजे, डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी की पुण्यतिथि पर आधारित है। प्रकृति की पुकार कार्यक्रम सुनिए 6:30 पर, प्रकृति और मनोविज्ञान के बारे में। 7 बजे का समय है योग संवाद कार्यक्रम का, श्रीराम द्वारा तत्व ज्ञान उपदेश हेतु प्रार्थना भाग 80 आप सुनेंगे। विशेष कार्यक्रम में सुनिए कलापिनी कोमिकली भक्ति गीत भाग 2 का 7:30 पर। रेडियो रिपोर्ट कथा सियाराम की आप सुनेंगे 8 बजे। 8:30 का समय है कार्यक्रम हिंदोस्ता हमारा का, जिसमें आज आप आज़ाद हिंद फौज के बारे में सुनेंगे। स्वास्थ्य चर्चा सुनिए जंग फूट के बारे में 9 बजे। 9:30 का समय है युग प्रवर्तक विवेकानंद के कार्यक्रम का, जिसका भाग 103 आप इसमें सुन सकते हैं। तो यह है हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 MHz पर।
2: वेद, पुराण, आख्यान, ये हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत है, धरोहर है और इसी पर आधारित है हमारा विशेष कार्यक्रम अक्षय निधि। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
4: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 169 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा वरुणी, देवता हैं इंद्र, छंद है त्रिष्टुप और चतुष्पदा विराट।
5: महश्चित्वमिंद्र यत एतान महश्चिदसि त्यजसो वरुता स नो वेधो मरुताम चिकित्वान सुम्ना वनुष्व तव हि प्रेष्ठा। हे इंद्रदेव, आप महान देवताओं के एवं त्याग की प्रतिमूर्ति मरुदगणों के भी संरक्षक हैं। हे ज्ञान संपन्न इंद्रदेव, आप हमसे परिचित हैं, अतः मरुदगणों और अपनी प्रिय सामग्री हमें प्रदान करें। अयुज्रंत इंद्र विश्व कृष्टीर विदानासो निष्दो मर्यत्रा मरुताम प्रत्सुतिर हासमाना स्वर्मीडहस्य प्रधनस्य सातौ। हे इंद्रदेव, जिन मरुदगणों की सेना युद्ध के प्रारंभ होने पर विशेष हर्षित होती हुई सुख की अनुभूति करती है, शत्रुओं को दूर भगाने वाले वे संपूर्ण मनुष्यों के ज्ञाता मरुदगण सर्वोत्तम आपका ही सहयोग करते हैं। अम्यक्सा त इंद्र ऋषिष्ट रस्मे सनेम्य भुवं मरुतो जुनंती अग्निश्चिदद्धि स्मातसे सुसुक्वा नापो न द्वीपं दधति प्रयांसि। हे इंद्रदेव, आपके द्वारा सृजित हमें उपलब्ध हो, ये मरुदगण सदैव जल वृष्टि करते हैं। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ को और जल द्वीप को धारण करता है, उसी प्रकार मरुदगण अन्न अर्थात पोषण प्रदान करते हैं। त्वं तू न इंद्र तम रईम दा ओजिष्ठया दक्षिणयेव रातिम स्तुतश्च यास्ते चकनंत वायोः स्तनम न मध्वः पीपयंत वाजैः। हे इंद्रदेव, मधुर दूध से जिस प्रकार स्तन परिपुष्ट होते हैं, वैसे ही हमारी स्तोत्र वाणियों से प्रसन्न होकर आप अभीष्ट अन्नादि से हमें परिपुष्ट करें। दक्षिणा में प्राप्त धन की तरह ही हमें धन संपदाओं से संपन्न बनाएं। त्वे राय इंद्र तोषतमाह प्रणेतारह कस्य चिद्रितायोह ते शूणो मरुतो मृणयन्तु ये स्मा पुरा गातु यन्तीव देवाः। हे इंद्रदेव, आपके पास ऐसी धन संपदा है जो यजमानों को संतुष्ट करके उन्हें यज्ञीय सत्कर्मों की ओर प्रेरित करती है। हे इंद्रदेव, जो मरुदगण प्राचीन काल से ही यज्ञीय सत्कर्मों के पूर्वाभ्यासी हैं, वे हमें सुख सौभाग्य प्रदान करें। प्रतिप्रयाहीन्द्र मीडहुषो नृन्महः पार्थिवे सदने यतस्व अध यदेशाम पृथुबुध्नास एतास्तीर्थे नारियः पौंस्यानि तस्थुः। हे इंद्रदेव, आप व्यापक स्तर पर जल वृष्टि के लिए अग्रणी मरुदगणों के समीप जाएं और उनके साथ मिलकर भूमंडल में पराक्रम का परिचय दें। युद्ध में पराक्रम करने के समान मरुत के अश्व आक्रमण करते हैं। प्रति घोराणामेतानामयासाम मरुताम शृण्व आयता मुपब्धिः ये मर्त्यम प्रतनायन्त मूमैर्कृणावानम न पतयन्त सर्गैः। जिस प्रकार ऋणी मनुष्य को अपराधी मानकर दंडित किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रदेव के सहयोगी मरुदगण भी युद्धाकांक्षी असुरों को शस्त्रों के प्रहार से जकड़कर जमीन पर पटक देते हैं। तब भयंकर शीघ्र गमनशील आक्रमणकारी और शत्रुओं को घेरने वाले इन मरुतों का शब्द नाद सुनाई देता है। त्वं मानेभ्य इंद्र विश्वजन्या रदा मरुद्भिः शुरुधो गो अग्राह स्तवानेभिः स्तवसे देव देवैर विद्यामेशं व्रजनं जीरदानुम्। हे इंद्रदेव, आप मरुतों के सहयोग से अपनी विश्व उत्पादक सामर्थ्य से अपनी प्रतिष्ठा के लिए गौओं को आगे रखकर युद्ध लड़ रही शोषणकारी शत्रु सेना का संहार करें। हे इंद्रदेव, आपकी प्रार्थना स्तुत्य देवताओं के साथ ही की जाती है। हम आपके सहयोग से अन्न, बल और विजयश्री प्राप्त करें।
4: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 169 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
6: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: भगवत आराधना के सुमधुर भक्तिमय संगीत स्वर सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत में। तो आपके लिए पेश है कार्यक्रम भक्ति संगीत। श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर विश्वास, जो तमाम विपत्तियों से घिर जाने पर भी विचलित नहीं होता। वही सच्चा श्रद्धावान है।

हमारी वजह से कोई रोए तो हम व्यर्थ हैं, हमारे लिए कोई रोए तो समझ लो हमारे जीवन का बहुत अर्थ है।

उपलब्धियां इस संसार में भरी पड़ी हैं, पर उन्हें प्राप्त करने के लिए ज्ञान, चरित्र और साहस चाहिए।

जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद खुद ब खुद दिखने लगेगा।

एक समय में सभी को खुश रखने का प्रयास मत कीजिए। जो काम हाथ में है केवल उसके ऊपर लक्ष्य रखिए, बाकी सब समय के हाथ में छोड़ दीजिए।

0: समस्या देने वाले की हस्ती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर ईश्वर साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
1: दो दो दो दो दो दो दो दो।

0: झुको उतना जितना सही हो। बेवजह झुकना दूसरे के अहम को बढ़ावा देना होता है।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: नब्बे दशमलव आठ मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं पद्म भूषण डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी का।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

नारी हूं मैं जीवन हूं, कभी माँ मैं कभी बहन, कभी बेटी तो सही होगी। नारी हूं मैं जीवन हूं, सृष्टि की अनमोल धरोहर, अखिल विश्व का हूं भविष्य। मुश्किल हालातों से लड़ती, दुर्गम राहों से गुजरती, शक्ति का हर रूप हूं मैं। नारी हूं मैं जीवन हूं, नारी हूं मैं जीवन हूं। अपनी आंतरिक शक्ति से भिज्ञ एक ऐसी ही सशक्त महिला, चिकित्सा व्यवसायी, समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता थीं डॉक्टर मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी। वो भारत की महिला विधायक होने के साथ साथ देश की पहली महिला सर्जन भी थीं। उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने देश में व्याप्त देवदासी प्रथा का विरोध किया तथा देश की आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी का जन्म 30 जुलाई सन 1886 को तमिलनाडु के पुद्दुकोट्टई में हुआ था। उनके पिता नारायण स्वामी अय्यर महाराजा कॉलेज में प्रोफेसर थे और उनकी माँ देवदासी समुदाय से थीं। देवदासी से विवाह करने के कारण ही उनके पिता को उनके परिवार से बहिष्कृत कर दिया गया था। इस तरह मातृपक्ष के परिवार से घनिष्ठ संबंध होने के कारण बचपन से ही मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी देवदासी समुदाय और उनके मुद्दों के प्रति बहुत संवेदनशील हो गईं। उनके पिता नारायण स्वामी अय्यर अत्यंत उदार विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने तत्कालीन परंपरा को तोड़ते हुए मुत्तु लक्ष्मी को स्कूल भेजा, लेकिन उनकी पढ़ाई आसान नहीं थी। उन्हें सामाजिक विरोध के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा। बावजूद इसके पिता और शिक्षकों का भरपूर सहयोग रहा। मुत्तु लक्ष्मी को उन्होंने घर पर ही पढ़ाया। वो परीक्षा में सर्वाधिक अंक अर्जित कर प्रथम स्थान पर रहीं। सीखने के प्रति उनका उत्साह इतना अधिक था कि उनके शिक्षकों ने उन्हें पिता द्वारा स्वीकृत विषयों के अलावा अन्य विषयों की भी शिक्षा दी। उनकी माता जल्द ही उनका विवाह करना चाहती थीं, लेकिन मुत्तु लक्ष्मी अपनी अलग सोच के साथ आगे बढ़ रही थीं। उन्हें महिलाओं पर पुरुषों का वर्चस्व स्वीकार्य नहीं था और न ही वो महिला पुरुष के भेदभाव को सहन कर पाती थीं। इस तरह महिलाओं के समान अधिकारों के प्रति उनके मन में अटल भावनाएं थीं और अपनी इसी इच्छा शक्ति की बदौलत वो आगे बढ़ने लगीं।

मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने जब मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की तो उन्होंने महाराजा कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया। लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल हों, छात्र हों या छात्रों के अभिभावक, सभी ने एक स्वर में उनके आवेदन का विरोध किया। इसका एक कारण उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी तो दूसरा कारण उनका लड़की होना। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच पुद्दुकोट्टई के महाराजा ने हस्तक्षेप किया और उन्हें न केवल कॉलेज में प्रवेश दिलवाया बल्कि उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की। मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के पिता उन्हें स्कूल की अध्यापिका बनाना चाहते थे, लेकिन मुत्तुलक्ष्मी की महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं। अब उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1912 में पढ़ाई पूरी कर वो चेन्नई में महिलाओं और बच्चों के सरकारी अस्पताल में हाउस सर्जन बन गईं। वो अपने अधिकारों के प्रति सदा सजग थीं। जब सुंदरा रेड्डी से उनका विवाह हुआ तो उन्होंने यही शर्त रखी कि सुंदरा रेड्डी प्रेम के साथ साथ उन्हें अपने बराबर का सम्मान भी देंगे तथा उनकी इच्छाओं और सपनों के आड़े कभी नहीं आएंगे। मैट्रिक की परीक्षा की टॉपर, मद्रास मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग की पहली भारतीय लड़की, कॉलेज में सर्जरी विभाग की टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट, ये सभी उपलब्धियां उनके पास थीं और फिर उनका चयन इंग्लैंड जाने के लिए भी हुआ था। लेकिन उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य करने का मन बनाया। दरअसल कॉलेज के वर्षों के दौरान ही उनकी भेंट सरोजनी नायडू से हुई थी और तभी से वो महिलाओं की बैठक में भाग लेने लगी थीं। महिलाओं की सामाजिक स्थिति, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, ऐसे अनेक मुद्दे थे जो उन्हें आंदोलित करते थे। लड़के और लड़की के प्रति भेदभाव को उन्होंने अपने जीवन में स्वयं देखा था, इसलिए इन मुद्दों पर वो खुलकर अपने विचार रखती। इस तरह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध एक प्रबल विद्रोह की उनकी यात्रा आगे बढ़ती रही।

मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का बहुत गहरा असर था। इसके साथ ही वो महात्मा गांधी और एनी बेसेंट से भी बहुत अधिक प्रभावित थीं। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और गांधी जी के विचारों का ही ये असर था कि मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने उस समय महिलाओं की मुक्ति और विकास के लिए काम किया जब महिलाएं घर की चार दीवारी तक ही सीमित रहा करती थीं। उन्होंने विमेंस इंडिया एसोसिएशन के लिए सघन रूप से काम किया। ये वो समय था जब बाल विवाह का चलन था। मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने इसका प्रबल विरोध किया तथा विवाह के लिए तय न्यूनतम आयु को बढ़ाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने बच्चियों के साथ होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी को सन 1927 में मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल से देश की पहली महिला विधायक बनने का गौरव भी हासिल हुआ। वो विधान परिषद की उपाध्यक्ष भी रहीं। उन्होंने महिलाओं के लिए नगरपालिका और

हुए कहा कि देवदासी प्रथा एक सामाजिक बुराई है, ये एक अपराध है जिसे जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए। मद्रास विधान परिषद ने सर्वसम्मति से उनका समर्थन किया और केंद्र सरकार ने इसकी सिफारिश भी की। सन 1930 में गांधी जी जब जेल गए तो मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने विरोध स्वरूप मद्रास विधानमंडल से इस्तीफा दे दिया। जब उनकी छोटी बहन की मृत्यु कैंसर से हुई तब उन्हें गहरा सदमा लगा। इसके बाद सन 1954 में उन्होंने अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो आज दुनिया के सबसे बड़े कैंसर अस्पतालों में से एक है। मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने एक महत्वपूर्ण पत्रिका रोशनी के संपादन का कार्य भी किया। उनकी किताब माई एक्सपीरियंस एज अ लेजिस्लेटर समाज सुधार की दिशा में उनके उठाए सार्थक कदमों का वर्णन करती है। मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी आजीवन अपने सिद्धांतों, अपने मकसद और अपनी विचारधारा के लिए लड़ती रहीं। उनकी सराहनीय सेवाओं के सम्मान में भारत सरकार ने उन्हें सन 1956 में पद्म भूषण से अलंकृत किया। 80 साल की उम्र में भी वो अत्यंत ऊर्जावान, जीवंत और सक्रिय थीं। देश और समाज को अपने जीवन का पल पल समर्पित करते हुए उन्होंने 22 जुलाई सन 1968 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: कुछ यादें उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: कि मैं हूँ मुकेश खन्ना, आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रकृति हमारी जननी है, प्रकृति हमारी पोषक है, प्रकृति पर आधारित हमारा कार्यक्रम प्रस्तुत है प्रकृति की पुकार।
2: दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम प्रकृति की पुकार में मैं हूँ मनीषा, और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर पारुल ऋषि, जो पर्यावरण मनोविज्ञान, जलवायु परिवर्तन और व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में जानी मानी शिक्षाविद और शोधकर्ता हैं। आप पिछले 32 वर्षों से भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM में प्रोफेसर और सेंटर फॉर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की चेयरपर्सन हैं। पर्यावरण और मानव व्यवहार के संबंधों पर उनके 110 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं, और इस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। डॉक्टर पारुल ऋषि जी, आपका हार्दिक स्वागत है स्टूडियो में।
3: धन्यवाद मनीषा जी।
2: आज हम सबसे पहले यहीं से बात शुरू करते हैं कि अक्सर हम सुनते हैं कि प्रकृति के बीच में समय बिताने से मन शांत होता है, इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारण क्या है?
3: देखिए, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हर समय हम लोग मोबाइल और स्क्रीन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, और उससे जो किरणें निकलती हैं वो हमारे दिमाग पर किसी न किसी तरह से प्रभाव डालती हैं। तो उसका जो प्रभाव है वो हम देखते हैं हमारे व्यवहार में। आजकल हम देखते हैं टीनएजर्स के व्यवहार में चिड़चिड़ापन, और अगर आप उनसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करें तो वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम प्रकृति के पास होते हैं तो आप उन्हीं बच्चों का व्यवहार जब आप देखेंगे कि वो प्रकृति के पास हैं, वो पेड़ों के साथ हैं, वो नदी के किनारे बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यवहार आपको उनका नहीं मिलेगा। तो ये सच बात है कि प्रकृति के साथ रहने से हमारा व्यवहार शांत होता है, हमारे मन को शांति मिलती है, हम एक अपनेपन की अनुभूति करते हैं कि जैसे हम अपने साथ हैं। तो मनोविज्ञान में अपने साथ होना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। हम लोग दुनिया के लिए तो बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन हम अपने व्यक्तित्व के साथ हैं, अपने बारे में कुछ कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, ये अनुभूति हमको प्रकृति के साथ जो है ये काफी अच्छे तरीके से होती है।
2: मैडम, माइंडफुलनेस कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि इस पर भी आजकल बहुत बातें हो रही हैं, इवन सोशल मीडिया पर हम ये चीजें बहुत देखते हैं, माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट है क्या?
3: ये माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट ओरिजिनली बुद्धिस्ट फिलोसफी से आया है, और इसका जो है पहले तो इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा था, थेरेपीज़ के लिए यूज़ हो रहा था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि पर्यावरण से संबंधित विषयों में भी माइंडफुलनेस के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं। एक वैम्सलर ने स्वीडन में काफ़ी स्टडी माइंडफुलनेस के कॉन्सेप्ट पर की है। इसका मतलब यह है कि आप जिस परिस्थिति में जहाँ हैं आप वहीं पर हैं, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति मिला तो हम, या किसी हम परिस्थिति में हैं, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत खराब है, ये पर्सन अच्छा नहीं है, इस तरह का जो हमारा एक इवैल्यूएटिव टाइप का, जजमेंटल टाइप का एटीट्यूड जो होता है ना, इसका ऑपोजिट इज माइंडफुलनेस, कि हम हर परिस्थिति को वैसे देखें जैसी वो है। सो तथागत का जैसे कॉन्सेप्ट होता है कि इट इज एज इट इज, तो इसमें हम हर समय इवैल्यूएशन नहीं करते हैं, हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं डालते हैं, क्योंकि बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे भी होते हैं। तो माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट यही है कि हम जो भी परिस्थिति है उसमें खो जाएं, उसी में एब्जॉर्ब हों अपने आप को। तो नेचर में जब हम होते हैं, तो जब हम नेचर बेस्ड माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस बहुत सारी होती हैं, तो उसमें हम जब पेड़ों के साथ हैं, हम जब नदी के किनारे बैठे हैं, नर्मदा के किनारे बैठे हैं, तो हम उस पूरे एनवायरनमेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। तो दिस इज व्हाट माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट। तो इससे हमारा जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं उनसे कनेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, और हम लोग एक परिस्थिति में अपने आप को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं।
2: एक चीज और है कि आपकी बात से ही मुझे वो स्थिति प्रज्ञ हमारे यहाँ बोला जाता था कि स्थिति प्रज्ञ हो जाइए तो सारी स्थितियाँ अपने आप ठीक हो जाती हैं। एक बात और मैडम आती है कि जब हम बहुत थक जाते हैं और ऐसे वक्त पे अगर हम ठंडे पानी में पैर डाल लें या हम किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं, तो कहीं ना कहीं हमें सुकून मिलता है। आजकल आप भी देख ही रहे होंगे इस चीज़ को कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि माइंड रिलैक्स करने के लिए आपको प्रकृति का संगीत सुनना चाहिए, तो ये बात सच है क्या?
3: पर्यावरण मनोविज्ञान में मेरी शिक्षा हुई है, तो मेरा काफ़ी रिसर्च इस फील्ड में रहा है। तो बहुत सारी इस तरह की रिसर्च स्टडीज हुई हैं जो ये बताती हैं कि आप अगर पर्यावरण के साथ हैं तो आपका अवसाद आप में कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, आप आपका स्ट्रेस रिलीव होगा, और इसीलिए लोग पहाड़ों के पास जाते हैं। क्योंकि एक स्टडी मैं आपको कोट करके बताना चाहूंगी कि एक मनोवैज्ञानिक है अलरिच, उन्होंने एक स्टडी की थी, सर्जरी हुई थी पेशेंट्स की। सो उन सर्जरी पेशेंट्स को जब हॉस्पिटल में वो एक रूम में वो लोग थे, तो उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स को ऐसे रूम में रखा जहाँ खिड़की से पेड़ पौधे और हरियाली दिख रही थी, और एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को रखा कि जिनको एक कॉन्क्रीट की वॉल दिख रही थी खिड़की से। तो दोनों ग्रुप्स की उन्होंने फिर बाद में उनकी मनस्थिति को और सर्जरी से उनका पोस्ट सर्जरी जो रिकवरी हुई तो उसको उन्होंने कंपेयर किया, तो उन्होंने देखा कि जो पेशेंट्स हरियाली देख रहे थे खिड़की से उनकी रिकवरी सेम सर्जरी से ज्यादा फास्ट हुई इन कंपैरिजन को वो लोग जिनको कॉन्क्रीट की वॉल दिख रही थी। तो इस रिसर्च से उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि हम लोग जब नेचर के पास होते हैं तब हमारा जो है वो साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों तरह की हेल्थ जो है और वेलबींग को जो है वो नेचर प्रमोट करती है। सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नेचर के साथ रहना हमारे लिए जो है वो खाली एक सुखद अनुभूति नहीं है, बल्कि ये हमारे शारीरिक रोगों को भी कम करती है, रोगों के प्रभाव को कम करती है, और हम एक अच्छी फीलिंग हमारे अंदर जो है ना ये प्रोवाइड करती
2: जी
3: है।
2: मैडम, दूसरी तरफ ये भी सुनने में आता है कि कोई पेड़ मान लीजिए सूख रहा है और उससे आप प्यार से जाकर उस पेड़ पर हाथ फेरने लगें या उससे बातें करने लगें, कई लोग करते भी हैं ये कि पेड़ के नीचे गए और बातें भी कर रहे हैं, क्या पेड़ों का भी कोई मनोविज्ञान होता है?
3: देखिए, इस क्षेत्र में मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए मैं मनुष्यों के मनोविज्ञान के बारे में ही जानती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य जो हैं वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है। सो हम लोग जब पर्यावरण के साथ होते हैं तो पर्यावरण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, उससे हमारी मनस्थिति जो है वो इम्प्रूव करती है। तो मैं ये मानती हूँ कि ऐसा भी होता होगा कि हम अगर पेड़ों के साथ अच्छे तरह से व्यवहार करेंगे और उनका ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस तरह की रिसर्च स्टडीज तो काफी हुई हैं। एक हॉर्टिकल्चर थेरेपी आजकल काफी पॉपुलर है। हॉर्टिकल्चर थेरेपी में यह है कि आप जब पेड़ पौधों के साथ होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, बागवानी करते हैं। एनिमल्स के साथ तो हम लोग देखते ही हैं कि लोग जो पेट्स रखते हैं या गायों का जो है देखभाल करते हैं, तो ये सारा आप देखेंगे कि उनकी साइड से भी एक उसी तरह की रिस्पॉन्स आती है। तो जब हम लोग पेड़ों को प्रभावित करते हैं तो पेड़ भी हमको प्रभावित करते हैं, इस तरह की एक म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो बागवानी वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया हॉर्टिकल्चर थेरेपी, वो यही है कि जो लोग बागवानी में जुड़े रहते हैं, पेड़ों का ध्यान रखते हैं, आपने कई बार सुना होगा, कहते हैं कि माली रखते हैं तो पेड़ उतने अच्छे ग्रो नहीं करते, लेकिन अगर आप खुद भी साथ में देख रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो पेड़ों की ग्रोथ बेटर होती है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स और आपका उनके साथ एक रिश्ता बन जाता है और रिलेशनशिप जो है ये पेड़ों की ग्रोथ को डेफिनेटली प्रभावित करता हूँ
2: जी। मैडम, आपने चूंकि अभी पेट्स की बात की, तो घर में अगर कोई पालतू जानवर रखते हैं तो क्या उससे भी चिड़चिड़ापन मनुष्यों में और कहीं ना कहीं अवसाद कम होता है?
3: मनोविज्ञान तो डेफिनेटली है, क्योंकि आप पेट्स रखते हैं तो आप ज्यादातर हम लोग जो देखते हैं कि कुछ लोग जो जिनका मनुष्यों के साथ बहुत अच्छा जो है वो बातचीत खुल के नहीं कर पाते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, अंतर्मुखी उनका जो व्यवहार होता है, तो उन लोगों को लगता है कि वो अपने आप को बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपना पेट्स के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, और डेफिनेटली पेट्स भी उसको रेसिप्रोकेट उसी तरह से करते हैं। तो मेरा मानता है कि डेफिनेटली ऐसा होता होगा।
2: आपने जो कहानी सुनाई कि कुछ लोगों को बंजर जमीन दिखाई गई, एक वॉल दिखाई गई, और कुछ लोग को हरियाली, ये तो एक थेरेपी के तहत किया गया और रिसर्च के तहत किया गया, लेकिन आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स बने जा रही हैं और हरियाली कम होती जा रही है, तो आपको लगता है जो हिंसा है, जो चिड़चिड़ापन है लोगों में, क्या उसका रीजन कहीं ना कहीं प्रकृति से दूरी है, आप मानती हैं?
3: बिल्कुल है, और ये चीज रिसर्च से प्रूव हो चुकी है। आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज का भी कॉन्सेप्ट आजकल वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो जो वार्म कंट्रीज हैं वहां पर वायलेंस ज्यादा है, और आप देखेंगे कि समर मंथ्स में वायलेंस के इंसिडेंट्स जो हैं वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ये वायलेंस और ज्यादा बढ़ रहा है जितना हम टेक्नोलॉजी के करीब आते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ज्यादातर समय तो वही 24 घंटे है, अब हम उसमें अगर ज्यादातर समय अपने मोबाइल और स्क्रीन के साथ निकालेंगे तो जो समय और वर्क तो आपको करना ही है, जो भी आप काम करते हैं, तो जो समय कम होता है वो प्रकृति के साथ रहने का ही समय कम होता है, और उसी का ही प्रभाव किसी ना किसी तरह से हमारे मनोस्थिति पर पड़ता है, और डेफिनेटली बच्चों में जो चिड़चिड़ापन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बच्चों में क्राइम बढ़ रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, मतलब माँ बाप भी बच्चों को जितना टाइम देते थे वही मोबाइल से ही वही टाइम कर्टेल हो रहा है हर जगह। तो कुल मिला के हम देखें कि आपसी रिश्तों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, प्रकृति के साथ रहने का समय कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ये दो चीजें मुझे मनोवैज्ञानिक की उससे समझ में आ रही है कि हम लोग प्रकृति के साथ स्पेंड करने वाला टाइम और अपने रिश्तों को सुदृढ़ करने में लगने वाला टाइम, ये दो टाइम्स हमारे सबसे ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज हुए हैं और उसके लिए हमको बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है।
2: और यहाँ पर एक बात मैं आपकी बात में और जोड़ना चाहती हूँ कि हम प्रकृति को भी स्क्रीन पे ही देख रहे हैं। कई बार मैंने जब इस तरह की बातें करूँ कि पेड़ों के पास बैठो, तो मैं देखती हूँ कई घरों में बच्चे एक धीमा सा संगीत लगा लेंगे और स्क्रीन पे पेड़ आते रहेंगे या बहुत अच्छी हरियाली या पहाड़ दिखते रहेंगे। तो स्क्रीन की प्रकृति से तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है।
3: बिल्कुल, स्क्रीन की प्रकृति से आप ये मान सकते हैं कि जिन लोगों को ये सुविधा नहीं है, जो ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहाँ पर प्रकृति उपस्थित नहीं है, हालांकि प्रकृति तो सभी जगह उपस्थित होती है, लेकिन इतना आपके पास समय नहीं है कि आप स्पेंड कर सकें, तो एक सब्स्टिट्यूट की तरह से वो लोग यूज करते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअली में प्रकृति के साथ हैं तो जो प्रकृति की सुगंध आप अनुभव करते हैं, जो पक्षियों का कलरव आप उनको साथ में देखते हुए अनुभव करते हैं, वो सारी चीजें स्क्रीन से सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, लेकिन हम कह सकते हैं 10-20% कंपनसेशन उसका जो है वो स्क्रीन के थ्रू हो सकता है।
2: मैडम, आप बच्चों के बीच में बहुत, क्योंकि IFM में है तो बहुत सारे बच्चे आते होंगे, बहुत आपका क्या अनुभव है इन चीज़ों को लेकर, बच्चों को लेकर? क्योंकि आपने पहले भी कहा कि बच्चे आजकल थोड़ा सा बात करने से बचने लगे हैं, कटने लगे, नई जनरेशन जो है उसको डील करना थोड़ा टफ होता जा रहा है, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे?
3: देखिए, बच्चों को आजकल आप टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर सकते, ये स्थिति को आपको समझ लेना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी के साथ ही हम उनको किस तरह से प्रकृति से जोड़ सकते हैं, यही हमको सोचना है। तो ज़्यादातर फैमिलीज में अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट हो कि मॉर्निंग वॉक में कम से कम साथ में जाएं, भोपाल जैसे शहर में तो हम कह सकते हैं इस तरह की बहुत सुविधाएं हमको उपलब्ध हैं कि हम अपने घर से बाहर निकले और आपको एक बहुत छोटे से एरिया में जाके ही आपको प्रकृति के साथ आपका जो है संबंध हो सकता है। तो पेरेंट्स अगर साथ में बच्चों के साथ जाएं, प्रकृति के साथ वॉक करें, वहां पर आप बर्ड्स को रिकॉग्नाइज करें। आजकल बर्ड वॉचिंग भी एक माइंडफुलनेस के लिए हम लोग एज थेरेपी की तरह से यूज करते हैं। आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं या आप किसी भी नेचुरल एरिया में, अर्बन एरिया में जा रहे हैं और वहां पर आप पक्षियों को देख रहे हैं और पक्षियों के फोटो

0: देखते हैं, पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, नदी को देखते हैं, नदी के बहाव को फील करते हैं कि नदी बह रही है, तो उससे हमको लगता है कि हाँ हम एक फ्री वर्ल्ड में जिंदा हैं और एक लाइफ में एक फ्लो हमको फील होता है। तो उससे हमारी मनस्थिति और हमारे व्यवहार और हमारी सोचने समझने और निर्णय करने की क्षमता, इन सारी चीजों में हमारा बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है
1: जी। उन्मुक्तता भी आती है लोगों में वहां जाकर। मैडम, आपने माइंडफुलनेस की एक थेरेपी तो हमको जैसे बर्ड वॉचिंग बताई, माइंडफुलनेस की और भी थेरेपीज होती होंगी, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी।
0: एक ब्रीदिंग माइंडफुलनेस काफी ज्यादा यूज होता है। हम लोग को लगता है सांस लेना एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है और हम दिन भर सांस लेते ही रहते हैं, लेकिन एक माइंडफुलनेस ब्रीदिंग एक टेक्निक है। तो उसमें हम लोग अपनी सांस को फॉलो करते हैं कि जैसे हमने सांस ली तो हमारा पूरा ध्यान जो है वो उस सांस के साथ, हमने जैसे ब्रीद इन किया तो हमारा ध्यान भी हमारी सांस के साथ साथ जो है वो गया, और फिर उसके बाद ब्रीद आउट किया। तो ये सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया के साथ जब हमारी मनस्थिति भी इसके साथ में जुड़ी होती है, सांस लेने और छोड़ने के साथ साथ, तो वो एक माइंडफुलनेस थेरेपी होती है कि हमारा ध्यान इधर उधर जाने की जगह हम अपनी सांस को फील कर रहे हैं और उससे किस तरह से हमको एक ठंडक की अनुभूति हो रही है सांस को बाहर निकालते हुए, और गर्माहट की अनुभूति हो रही है सांस को अंदर लेते हुए। तो इस फीलिंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करना और ऐसे रिपीटिशंस करना, ये भी एक ब्रीदिंग बेस्ड माइंडफुलनेस जो है ये कहलाता है। इसके अलावा वॉकिंग माइंडफुलनेस भी होता है, जिसमें जब आप वॉक कर रहे हैं तो आप अपने एक हर एक स्टेप को फील कर रहे हैं कि आपने जमीन पर एक स्टेप रखा, फिर आपने दूसरा रखा, तो आपका मन उस हर स्टेप के साथ आगे बढ़ रहा है। सो ये एक वॉकिंग माइंडफुलनेस कहलाता है। तो मेरी एक रिसर्च एक मेरे स्टूडेंट ने करी थी, पीएचडी स्कॉलर ने थोड़े साल पहले, तो उन्होंने इस माइंडफुलनेस थेरेपी को पेरेंट्स के साथ यूज किया था जिनके बच्चे हाइपर एक्टिव थे, तो उनको मैनेज करने में उनको बहुत चैलेंजेस आते थे, तो उनको माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज के थ्रू उनको ट्रेन किया था, तो उससे उनका बच्चों के साथ जो व्यवहार था, हाइपर एक्टिव बच्चों को डील करना काफी डिफिकल्ट होता है, उनका व्यवहार बहुत इंप्रूव किया इससे, और उनके जो रिलेशनशिप बच्चों के साथ बहुत स्पॉइल हो गए थे क्योंकि वो हर समय कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते थे जिससे कि वो तनाव में आ जाते थे, तो वो उनका तनाव कम हो गया और बच्चों के साथ डील करने की उनकी एबिलिटी और इंप्रूव करी, और बच्चों के व्यवहार में भी उससे अंतर आया। सो माइंडफुलनेस थेरेपी मल्टीपल फॉर्म्स में जो है वो यूज होती है, और इंडस्ट्रीज में जो यूज होती है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, कि अगर आपके एम्प्लॉइज माइंडफुल हैं, उनको माइंडफुलनेस ट्रेनिंग दी गई है, तो वो बेटर परफॉर्मेंस देंगे, कम समय में बेटर परफॉर्मेंस देंगे।
1: तो मैम, वर्क प्लेस पे ये कैसे काम, क्योंकि 10-10 12-12 घंटे का आपका वर्क स्टेशन पे आपको रहना होता है, ऐसे में लोग क्या कर सकते हैं कि उनके काम में सुधार आए, या क्या ऐसे साइकोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें।
0: देखिए, वर्क प्लेस में आजकल बहुत कॉमनली एक वेलनेस प्रोग्राम्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसी वेलनेस प्रोग्राम में ही माइंडफुलनेस को उन लोगों ने इंटीग्रेट किया है। कुछ अच्छी कंपनीज जो हैं वो इस तरह के प्रोग्राम्स अपने एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशली करवाती हैं जिसमें माइंडफुलनेस ट्रेनिंग देती हैं, तो बहुत ज़्यादा समय का इशू नहीं है, ये बहुत कम समय में, इट्स अ ट्रेनिंग, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि वो एक पर्टिकुलर तरह से सोचने की अपनी आदत बनाए और करंट मनस्थिति में रहे। अदरवाइज तो आपने बाकी इंडियन फिलोसफी में ये बताया हुआ है कि मन एक घोड़े की तरह है, अगर आपने उसको लगाम नहीं लगाई तो वो कहीं भी भागेगा, तो वही स्थिति है। तो हम माइंडफुलनेस के थ्रू बेसिकली अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं और उसको ट्रेन करते हैं, कंट्रोल भी नहीं करते हैं, हम उसको ट्रेन करते हैं कि वो जिस समय जो काम कर रहा है वो उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्व होके उसको करे। सो इससे डेफिनेटली परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि जब वो फिर उसका रिवर्स सिचुएशन ये होगी जब वो वर्क का काम कर रहा है, जब वो अपने ऑफिस में है और ऑफिस में जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज उनको दी गई हैं वो उसमें भी ऑब्जॉर्व होकर काम करेगा। सो ये एक दूसरी परिस्थिति में भी ट्रांसलेट होता है, जब अपने फैमिली के साथ है, अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर रहा है, तो उसमें भी वो एब्जॉर्व होकर करेगा। अदरवाइज आपका वर्क प्लेस का स्ट्रेस घर में ट्रांसफर होता है, घर का स्ट्रेस वर्क प्लेस में ट्रांसफर होता है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट होती है।
1: मैडम, आपकी ही बात में से एक बात अभी मुझे ध्यान आ रही है, और वो ये है कि पहले हम लोग कहते थे कि तेज़ी से भागो, दुनिया के साथ भागो, अभी कुछ एक चीज़ें सुनने में आ रही कि थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा धीमे चलो, थोड़ा धीमे हो जाओ, ज़िंदगी में इतना मत भागो, रुक जाओ, ठहर जाओ। ये जो स्लो का ट्रेंड आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं माइंडफुलनेस को करता है कि आप थोड़ा अपनी जिंदगी में थोड़े धीमे हो जाइए।
0: देखिए, माइंडफुलनेस आपका स्लो और फास्ट से रिलेटेड नहीं है, इट इज जस्ट कि आप जो जैसी स्थिति है आप उसको एक्सेप्ट करें कि यही स्थिति है। जो पॉज का आप कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट।

0: प्रकृति को देखना, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एब्जॉर्व करना, उसके साथ एक खुशी की फीलिंग होना और अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करना, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी है।
1: आपका इंस्टीट्यूट आम लोगों की ज़िंदगी में इस तरह की कोई मदद कर सकता है, जो लोग चाहें कि उन्हें प्रकृति के निकट आकर अपने अवसाद को या किसी भी तरीके के तनाव को दूर करना है, तो उसमें आपके इंस्टीट्यूट की कोई भूमिका होती है?
0: देखिए, भारतीय वन प्रबंध संस्थान, इसका नाम ही है कि ये वन के प्रबंध का संस्थान है, और ये हमारा इंस्टीट्यूट एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और जिसके आसपास काफ़ी जंगल है, और हम लोगों का एक क्लब भी, हम लोगों का एक एडवेंचर क्लब भी है, एक नेचर क्लब है। तो नेचर क्लब इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो करता रहता है, कि जिसमें बर्ड वॉचिंग के लिए जो है वो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स आते हैं, तो उनको भी बर्ड वॉचिंग के लिए उनको गाइडेड विजिट कराना फॉरेस्ट का। एक नेचर ट्रेल हमारे यहाँ बनी हुई है, नेचर ट्रेल में जाके बर्ड वॉचिंग कराना, हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो बर्ड वॉचिंग के एक्सपर्ट्स हैं तो वो, और हमारी फैकल्टीज भी हैं, तो वो साथ में उनको ले जाके एंड गाइडेड टूर इंस्टीट्यूट का कराते हैं। उसके अलावा

0: स्टिंट के अंदर उनको कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप करने होते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को समाज के लिए और पर्यावरण में सुधार के लिए उनको उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है. सो हमारी संस्था जो हमारा जो सेंटर है, सेंटर फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग इन प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं. इतना मनी जो है वो सारे कॉर्पोरेट्स का आता है जो CSR के लिए उनको स्पेंड करना है, लेकिन क्या ये पैसा सही जगह इस्तेमाल हुआ? जिन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने इस पैसे को लगाया उन प्रोजेक्ट्स ने एक्चुअली में सोसाइटी को कुछ इम्पैक्ट दिया या नहीं दिया? तो इसका आकलन जो है ये एक साइंटिफिक टेक्निक रहती है. सोशल साइंटिस्ट जो हैं हम लोग इन प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं. सो बहुत सारी कंपनीज के जो CSR प्रोजेक्ट्स थे सो उनके इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए हम लोगों ने काफ़ी इस सेंटर में पिछले सालों में काम किया. इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग्स भी देते हैं, जैसे कॉर्पोरेट्स में जो लोग काम करते हैं वो CSR के लिए किस तरह से इक्विप्ड हैं, उनको नॉलेज है या नहीं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, किससे सोसाइटी को ज़्यादा बेनिफिट होगा, कैसे उनको बेसलाइन स्टडी करें कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नीड बेस्ड हों, कि जो सोसाइटी के लोग चाहते हैं उसी हिसाब से प्रोजेक्ट्स हों.
1: एक और आखिरी सवाल मैडम, कि कुछ बच्चों को प्रकृति के निकट रहना, बर्ड वॉचिंग, कई बच्चों को बड़ा शौक होता है, लेकिन वो इसे अपना प्रोफेशन कैसे बनाएं, उसमें IFM क्या हेल्प कर सकता है या किस तरह के कोर्सेज हैं, अगर आप उसके बारे में बताना चाहें.
0: देखिए, बर्ड वॉचिंग तो एक हॉबी की तरह से है.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: कुछ लोग इसको प्रोफेशन बना लेते हैं अगर उनकी फोटोग्राफी स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं और उसके अलावा बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन वो लोग कर लेते हैं, उनको पता होता है कि कौन कौन से बर्ड्स का क्या नाम है, क्या उनका नेचर है, किस सीजन में वो आते हैं. जैसे अभी इस सीजन में एशियन फ्लाई कैचर जो है वो भोपाल में आई हुई है, तो सारे बर्ड वॉचर्स जो है वो उनके नेस्टिंग का टाइम है एंड उनके चिक्स वगैरह देखने के लिए काफी जो है, मुझे भी बहुत शौक है, मैं भी जाती हूँ. और पिट्टा इस समय आया हुआ है तो ये साउथ से आता है, तो ये इनके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है. हमारा इंस्टीट्यूट जो है, हम लोगों के यहाँ 4 कोर्सेज MBA प्रोग्राम्स चलते हैं. हमारा इंस्टीट्यूट डीम टू बी यूनिवर्सिटी अभी 2 साल पहले हम लोग डिक्लेयर हुए थे, 3 साल पहले. तो हम लोग एक कोर्स है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम MBA इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एक प्रोग्राम है MBA इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, और 2 प्रोग्राम्स हम लोगों ने नए लास्ट ईयर स्टार्ट किए हैं. एक है डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल फिनेंस और एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो ये प्रोग्राम्स जो हैं इसमें हम लोग मैनेजमेंट एजुकेशन तो स्टूडेंट्स को देते ही हैं, जो कि सारे ही मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस मैनेजमेंट एजुकेशन को हम फॉरेस्ट्री के फील्ड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं
1: जी,
0: इंडस्ट्रीज जो हैं वो सस्टेनेबिलिटी के फील्ड पे कैसे अप्लाई कर सकती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का क्या एप्लीकेशन हो सकता है. आजकल क्लाइमेट फाइनेंस और ग्रीन फाइनेंस के बारे में बहुत बात हो रही है, तो हमारा डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल फाइनेंस का कोर्स जो है वो मैनेजमेंट एजुकेशन बट अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी. सो इस तरह से ये 4 कोर्सेज हमारे हैं और हमारा काफ़ी अच्छा, मैं प्लेसमेंट चेयरपर्सन भी हूँ और काफ़ी अच्छा इंडस्ट्रीज़ का रिस्पांस इसके लिए रहता है. हमारे स्टूडेंट्स जो हैं आजकल सारी इंडस्ट्रीज़ को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करना जो है वो कंपलसरी है. सो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और हमारे एल्यूमिनाय जो हैं पास्ट के वो बहुत कंपनीज़ के, कंसल्टिंग कंपनीज़ के पार्टनर्स हैं और CEOs हैं और सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर्स हैं एंड चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर्स तक हैं या कंपनीज ओन करते हैं. सो बिकॉज इस इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री जो है वो काफ़ी पुरानी है, 1982 का ये इंस्टीट्यूट है. सो काफ़ी अच्छा इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स का सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करने की एक हिस्ट्री रही है.
1: डॉक्टर पारुल ऋषि जी, आप इतने व्यस्त समय में से हमारे लिए इतना समय निकाला और हमें बहुत बहुत सरल शब्दों में ये बताने की कोशिश भी की कि किस तरीके से पर्यावरण हमारे मनोविज्ञान पर असर डालता है. और हमें दोस्तों उम्मीद है कि ये बातचीत सुनने के बाद निश्चित ही आप अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से भले ही आधा घंटा निकालें पर कहीं ना कहीं प्रकृति के करीब जाइए, क्योंकि जैसा आपने मैडम की बातों में सुना कि अगर आप नदी के पास जाते हैं तो आपके भीतर उन्मुक्तता का भाव आता है, जब आप अपनी 4 दीवारी के बीच में से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आप में आज़ादी की भावना आपको अच्छी लगती है और आप उसी की तरीके से जीवन जीने का प्रयास करते हैं. थैंक यू सो मच मैडम, आप यहाँ पर आए और आपने इतना समय दिया. थैंक यू.
0: थैंक यू मनीषा जी.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार. इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा. सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए.
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार. सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 MHz पर.

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: स्वस्थ जीवन का आधार है स्वस्थ मन मस्तिष्क और शरीर। योग हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है और मन मस्तिष्क को भी संवारता है, सहेजता है और उसे सुदृढ़ बनाता है। इसी विषय पर आधारित प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम योग संवाद।
3: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, जब संसार का समस्त वैभव भी मन को तृप्त न कर सके, जीवन प्रश्नों से घिर जाए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल अनुभव और आत्मबोध में दिखाई दे, तब सत्य की खोज आरंभ होती है। और यही खोज अयोध्या के राजकुमार श्री राम को वैराग्य की उस भूमि तक ले आई है, जहां उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के श्री चरणों में बैठकर तत्व ज्ञान की याचना की। योग वासिष्ठ का ये प्रसंग केवल गुरु और शिष्य का संवाद नहीं है, बल्कि मानव चेतना के जागरण की दिव्य यात्रा है। तो आज योग संवाद कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे श्री राम द्वारा तत्व ज्ञान उपदेश हेतु प्रार्थना पर, जहां एक जिज्ञासु शिष्य की विनम्र प्रार्थना आत्मज्ञान के अमृत द्वार खोल रही है। इस बातचीत के लिए हमारे बीच हमेशा की तरह उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग संवाद के आज के अंक में।
4: नमस्कार।
3: श्री राम द्वारा तत्व ज्ञान उपदेश हेतु प्रार्थना, यहाँ पहुंच गए हैं हम योग वासिष्ठ के पन्ने पलटते हुए। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि संसार के विषयों का भोग होता कैसा है?
4: संसार के विषयों का भोग अत्यंत दुखदायी होता है
3: जी।
4: अगर आप अनुभव करें, अपने अनुभव को देखें, तो राम जी जैसे विवेकवान जो लोग हैं, उन्होंने संसार में हमेशा अनित्यता परिवर्तनशीलता का दर्शन किया है
3: जी।
4: और वो ये कह रहे हैं कि संसार का कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिस सुख के बाद दुख की अनुभूति न हो। तो यहाँ जो सुख दुख है ये आगमापाई है, आता जाता है
3: जी।
4: तो ऐसे में राम जी कहते हैं कि इस संसार के दुखद और परिवर्तनशीलता को देखते हुए मेरा चित्त जो है इस विषय भोग रूपी अग्नि में जल करके दग्ध हो गया है और एकदम निर्मल हो गया है
3: जी, जी।
4: तो ऐसे में ये संसार कभी भी सुख प्रदान करने वाला नहीं है, तो मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश दें जिससे कि मेरा चित्त शांत हो सके और संसार के विषयों में जो राग द्वेषात्मक इसकी प्रवृत्ति है
3: जी, जी।
4: इस प्रवृत्ति से सर्वथा मुक्त रह सके।
3: यही भगवान श्री राम महात्माओं के संग पर भी बातचीत कर रहे हैं
4: जी।
3: तो क्या लाभ होता है महात्माओं के संग का?
4: हाँ, महात्माओं के संग को वो कहते हैं कि मुनीश्वर विविध चिंताओं से परिपूर्ण भोग समूहों और राज्यों की अपेक्षा चिंता रहित महात्मा पुरुषों द्वारा स्वीकृत एकांत सेवन ही मेरा सबसे अच्छा स्थान है और ऐसे जगह पर मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूं। अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि एकांत सेवन, एकांत सेवन का अर्थ ये कभी नहीं हुआ कि हम समाज से कटकर अपने को अकेला कर लें
3: जी, जी।
4: क्योंकि चिंता रहित होकर के एकांत में रहना, जबकि आप संसार को अगर देखें तो संसार का व्यक्ति जब एकांत में होता है तो और चिंताग्रस्त होता है, उसका मन और विषयों और तरह की कल्पनाओं में घूमता फिरता है। महात्मा एकांत में एकांत का सेवन करता है क्योंकि वो चिंता रहित रहता है। तो चिंता रहित हुए बिना आप एकांत में रह करके भी भीड़ से भी भयावह स्थिति में रह सकते हैं।
5: जी जी जी।
4: इसलिए आप देखेंगे कि आदमी अकेले होने से डरता है। अकेले होने से डरता क्यों है? क्योंकि जब वो अकेला होता है तब उसके पास ऐसे निरर्थक और ऐसे पता नहीं कितने कितने समय के विचार और कितने भविष्य की योजनाओं को लेकर के वो चिंतित होता रहता है। तो राम जी कहते हैं कि ऐसा महात्मा जो सभी प्रकार की चिंताओं से रहित हो और एकांत का सेवन कर रहा हो, यानी उसका एकांत किसी चिंता से युक्त नहीं है।
5: बहुत ही सुंदर शब्द है एकांत सेवन।
4: जी, जी।
5: बिल्कुल सही आपने कहा कि आज के समय में जो एकाकीपन है उसको एक समस्या की तरह देखा जाता है, अकेले हो जाने को। और कितनी समस्याएं उस अकेलेपन से पैदा होती हैं। लेकिन यहाँ वो एकांत सेवन की जो बात कर रहे हैं वो चुना हुआ एकांत है।
4: बिल्कुल,
5: जिंदगी की परिस्थितियों से आया हुआ एक एकाकीपन नहीं है।
4: नहीं है
5: जी।
4: वो जिंदगी से पलायन किया हुआ एकांत नहीं है।
5: जी, जी, जी।
4: वो एकांत है विषय भोग दुख रूप और अनित्य विषय दोष दर्शन रूपी दावानल से दग्ध होकर के जो चित्त शुद्ध हुआ है उसका एकांत सेवन है वो।
5: जी जी।
4: यानी उस चित्त में निर्मलता है और यहाँ एकांत में हमारा चित्त मलिन होता है।
5: बिल्कुल।
4: इसलिए हम एकांत में जाने से भयभीत होते हैं या एकांत से बचना चाहते हैं।
5: या तो हम समस्याओं में हैं तब एकांत में जाते हैं
4: जी,
5: या एकांत में जाते हैं तो समस्याएं हो जाती
4: हैं। हो जाती हैं जी।
5: दोनों बातें होती हैं जीवन में। लेकिन यहाँ एकांत के सेवन की बात हो रही है।
4: हाँ, एकांत सेवन की बात कहते हैं। ऐसे महात्माओं का संग मुझे प्रिय है। जबकि संसार में हम क्या देखते हैं, संसार में जो विषयों में जितने अधिक डूबे हुए लोग हैं, विषयों का जो जितना अधिक संग्रह किया हुआ
5: जी,
4: है
5: जी।
4: ऐसे व्यक्ति हमारे आदर के योग्य होते हैं या ऐसे व्यक्ति का हम अनुकरण करते हैं। जबकि राम जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति में मेरी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि अंततः वो विषयों में दग्ध ही होगा, अपने चित्त को शुद्ध न करके बल्कि चित्त में एक असंतोष पैदा करेगा। आप कभी विचार करके देखें तो संसार में विषयों का सेवन असंतोष का कारण बनता है,
5: जी, जी,
4: संतोष का कारण कदापि नहीं बनता।
5: जबकि हम संतोष के लिए ये करते हैं
4: जी,
5: लेकिन वो मिलता नहीं।
4: हाँ, क्योंकि संतोष से सुख मिलता है। देखिए, ऋषियों ने कितना गहरा शोध किया है। वो ये कहते हैं कि सुख विषय सेवन में नहीं है, विषय सेवन में तो दुख है, क्योंकि विषय सेवन का परिणाम असंतोष है। और जो सुख है वो संतोष की वजह से मिलता है। और यहाँ पर संसार में जब संतोष की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि एक प्रकार का विकास से कटना हुआ, या फिर आप एक ऐसी उदासीन विचारधारा के साथ अपने आप को विकसित कर रहे हैं जहां पर आप तो अपने पूरे विकास को ही अवरुद्ध कर देंगे। ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर संतोष के परम सुख का अनुभव हो रहा है और वो सुख स्थाई है, क्योंकि संतोष के बिना सुख और शांति कदापि संभव नहीं है।
5: जी, जी,
4: ये ऋषियों का शोध है।
5: अच्छा, मनुष्य हमेशा से ही राज्य आदि भोगों में लिप्त रहा है, उसकी आकांक्षा रहती है
4: जी,
5: तो क्यों संबंध रखना चाहता है वो ऐसे राज्य आदि भोगों से?
4: देखिए, सामान्य तौर पर आपको देखेंगे तो राज्य और जो विषय भोग हैं, ऐसा लगता है कि ये हमारी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए हैं। लेकिन सच ये है कि आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच भेद कर पाना मनुष्य के लिए बड़ा कठिन कार्य है। कई बार हम अपनी इच्छाओं को भी आवश्यकताओं का नाम दे पड़ते हैं।
5: जी, जी, जी।
4: आवश्यकताएं हर जीव की पूरी होती हैं, लेकिन इच्छा और लालच एक आदमी की भी पूरी करने में ब्रह्मांड का सामर्थ्य नहीं है।
5: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य जो है अहंकार वश इन राज्य भोगों में आकर्षित होता है, न कि सुख की आकांक्षा में। राज्य भोगों का सुख जो है वो अहंकार को तुष्ट करता है।
5: जी, जी,
4: तो राम जी कहते हैं अहंकार वश ही मनुष्य इन राज्य आदि से संबंध रखता है, किंतु मेरा अहंकार ही गल गया है, अतः मेरे लिए इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, नहीं बची है अब। क्योंकि जिसका अहंकार नहीं है, अहंकार का आशय ये है कि जिस भी विषय व्यक्ति वस्तु के साथ आप अपने आकार को पुष्ट करते हैं वो अहंकार है।
5: जी,
4: तो
5: जी।
4: ऐसे में हमारे आकार को पुष्ट करने का कोई विषय वस्तु व्यक्ति अब साधन ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा अहंकार ही गल गया है। इन विषयों के साथ मेरा अहं कोई रूप नहीं लेगा, और संसार में लोगों का अहंकार वो रूप लेता है, तो उस रूप के नाते इन विषयों के भोग में लोग आकर्षित होते हैं, जबकि उनको लगता है कि हम अपने आवश्यकता या अपनी इच्छाओं के लिए हम जुड़ रहे हैं। सच ये नहीं है, वो एक प्रकार से आपके अहंकार का पोषण है, और अहंकार का जन्म ही अविद्या से होता है, और अविद्या से जो युक्त पुरुष है वो निश्चित ही अहंकारी होगा, और अहंकारी व्यक्ति को राग द्वेषात्मक वृत्तियों का निरंतर सामना करना पड़ेगा, सतत उसका क्रम चलता रहेगा, उस चक्र से कभी बाहर नहीं आ सकता,
5: वो आनंद की स्थिति में आ नहीं सकता
4: जी।
5: अच्छा, इसमें अज्ञानी जो मनुष्य है उसके मन की स्थिति बताई गई है, किससे बंधा रहता है उसका मन?
4: राम जी कहते हैं विष जो संसार में होता है, इस विष से एक शरीर नष्ट होता है अगर इसका पान कर लिया
5: जी,
4: जाए
5: जी, जी।
4: लेकिन कहते हैं कि विषय रूपी विष जन्म जन्मांतर तक मृत्यु का कारण बनते हैं। तो उन्होंने विषय को विष का नाम दिया और वो कह रहे हैं कि जो अज्ञानी का मन है वो इस संसार में सुख दुख, मित्र भाई बंधु, जीवन और मरण, इन बंधनों से बंधा रहता है। अब आप देखें तो हम इन्हीं को पुष्ट करने और इन्हीं को बनाए रखने के लिए पूरे जीवन यत्न करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर रामचरितमानस में भरत जी के माध्यम से वो बात कही है कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार। वो कहते हैं कि अज्ञानी जो लोगों का मन है वो हाँ निलाभ जीवन मरण यश अपयश इसी से बधा रहता है। और चूंकि इससे क्या होता है, इसका जुड़ाव किससे है, अहंकार से। तो ऐसे में अहंकारी होने के नाते यानी अविद्या से अहंकार जन्म लेता है और अहंकारी होने के नाते हम संसार के इन विषयों में जुड़े रहते हैं, बधे रहते हैं। जो ज्ञानी का मन है वो ऐसा नहीं होता, वो इनसे बिल्कुल मुक्त रहता है। ज्ञानी पुरुष के चित्त को ये बांधते नहीं है जिसमें अज्ञानी पुरुष का चित्त बंधा रहता
5: जी,
4: है।
5: जी जी जी। तो एक तरह से भगवान श्री राम के मन में बहुत से प्रश्न हैं और स्वयं वो देखकर भी बहुत कुछ समझ रहे हैं और एक विचलन की स्थिति है
4: जी, जी,
5: और
4: जी।
5: वो गुरु वशिष्ठ से तत्व ज्ञान की प्रार्थना करते हैं। तो मेरे मन में एक सवाल था कि तत्व ज्ञान से क्या आशय है?
4: देखिये, तत्व ज्ञान से आशय ये है कि आप उस तत्व का अनुसंधान करें जो तत्व का ज्ञान नहीं होने की वजह से भूत और भविष्य का बराबर हम चिंतन करते रहते हैं और वर्तमान में जिसमें हम रहते हैं उसको हम जी ही नहीं पाते।
5: अच्छा।
4: और हमारा पूरा समय जिसको हम कहें काल, काल को हम मृत्यु से भी परिभाषित करते हैं। तो काल का मतलब ये हुआ जिसने आपके समय को नष्ट कर दिया। तो आप देखें तो आपके समय को नष्ट किसने किया, आने वाले कल ने या बीते हुए कल ने? तो बीता हुआ कल जिसे हम भूत कहते हैं और आने वाला कल जिसे हम भविष्य कहते हैं, ये कल हमारे समय का काल बन गया और हमारे वर्तमान को खा गया और वर्तमान में हमने जीने का कौशल ही पैदा नहीं कर पाया अपने जीवन में और हम पूरे समय इसी में उलझे रहते हैं। इसीलिए राम जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप प्राचीन और अर्वाचीन बातों को जानने वाले महात्माओं में श्रेष्ठ हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि भूत को भी आप जान रहे हैं और आने वाला जो समय है उसको भी जान रहे हैं। तो उनसे उन्होंने तत्व ज्ञान को जानने की चेष्टा की। ऐसे लोगों से तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त नहीं किया जा सकता जो न भूत को जान रहे हैं न भविष्य को जान रहे हैं, बल्कि भूत और भविष्य को न जानने के कारण भूत और भविष्य के चिंतन में ही उलझे हुए हैं, है ना। और संसार का आदमी देखें तो अपने भूत की स्मृतियों को लेकर के अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए ऐसे गुणीजन या ऐसे ज्ञानियों के पास, ज्योतिषियों के पास जाता है कि मेरा भविष्य क्या है और पहले ये हुआ और ऐसी इस पर बातें होती हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे लोग तत्वदर्शी नहीं हैं। तो पहले तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को ही कहा कि आप तत्वदर्शी हैं क्योंकि आप प्राचीन अर्वाचीन बातों को जानने वाले महात्माओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए जिस प्रकार में शोक भय और खेद से मुक्त होकर यथार्थ ज्ञान से संपन्न हो जाऊं वैसा उपदेश मुझे शीघ्र प्रदान कीजिए। राम जी के चित्त में अब इतनी निर्मलता आ गई है कि वो कहते हैं कि अब तो ये संसार के विषय अब हमारे चित्त में कोई स्थान तो पा नहीं रहे हैं। तो ऐसे में जिससे मेरा शोक भय और खेद ये पूरी तरह से नष्ट हो जाए, और ये तभी होगा जब हम यथार्थ ज्ञान से संपन्न होंगे। अब एक चीज देखिए, यथार्थ ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा ज्ञान जिसका संबंध भूत और भविष्य से नहीं है
5: जी।
4: वो जो वर्तमान में है जिसको आपको जीना चाहिए लेकिन आप जीना इसलिए नहीं जानते क्योंकि पूरे समय में आपने भूत और भविष्य को अपने वर्तमान का काल बना दिया। गोस्वामी जी ने भी यही लिखा था मीरा जी को शायद कि अबलो नसानी अबना नसही हो। तो अभी तक तो हमने मतलब अपना नाश्ट किया किसमें, भूत के चिंतन और भविष्य के योजनाओं में। तो अब इसको नष्ट नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए और वो तत्व ज्ञान दीजिए। तो तत्व ज्ञान का वो प्रार्थना करते हैं कि जिससे हम यथार्थ ज्ञान से संपन्न हो सकें और ऐसी काल्पनिक ज्ञान जो अभी है ही नहीं जिसके बारे में सोच करके भविष्य की कितनी भी योजनाएं आज आप बना लें, क्या आप भविष्य में जो योजनाएं आज आपने बनाई हैं उसका सामना करने के लिए ऐसे ही रहेंगे? मन स्थिति बदल सकती है, परिस्थितियों के बारे में तो आपने सोचा, लेकिन जिस मन स्थिति में सोचा उस मन स्थिति के बदल जाने के बाद वो उन परिस्थितियों का सोचा हुआ ज्ञान काम नहीं आता, मेल नहीं होता। यही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो मन स्थिति और परिस्थितियों के बीच तालमेल बनाना नहीं जानता। अर्जुन को भी विषाद इसी स्थिति में हुई है, है ना, कि वो युद्ध का कौशल तो जानते हैं लेकिन ऐसा कौशल जिसमें अपने ही युद्ध क्षेत्र में विपरीत पक्ष में खड़े हो जाएं, तो इसलिए वो विषाद से ग्रस्त हो गए। राम जी ने जगत को देखा कि जगत में कैसे व्यक्ति इस संसार के विषय विसूचिका में, इसमें वाल्मीकि जी कहते हैं विषय विसूचिका, विषय का हैजा फैला हुआ है, हैजा जिसको कहते हैं, लगातार वो संक्रमित होता जा रहा है व्यक्ति, हैजा एक संक्रमण की बीमारी है। तो ऐसे ही संसार के व्यक्तियों का सानिध्य जो है वो विष की विसूचिका है, वो विष का संक्रमण करेगी। एक व्यक्ति अगर जिसने आपसे अधिक अर्जित कर लिया वो आपको और अधिक अर्जित करने के लिए प्रेरित करेगा, संक्रमित करेगा। तो इसीलिए राम जी कहते हैं कि चिंता रहित महात्मा का संग मुझे प्रिय है, क्योंकि संसार में तो चिंतित लोग ही मिलेंगे और चिंतित लोग आपको चिंतित करने के संक्रमण से ग्रसित करेंगे, संक्रमित होंगे आप, और इसलिए संसार में चिंता मुक्ति नहीं होती,
5: चिंतित व्यक्ति चिंता ही फैलाएगा,
4: और हम लोग चिंतित का सानिध्य करके और अपनी चिंता बढ़ाते हैं, न कि चिंता से मुक्त होने का प्रयास करते हैं।
5: अच्छा, ये बताएं कि संसार की जो सारी दुश्चिंताएं हैं कैसे नष्ट होती हैं?
4: संसार की सारी जो दुश्चिंताएं हैं वो नष्ट होती हैं उत्तम अंतःकरण के महात्माओं के संग से।
5: अच्छा,
4: हाँ, जो राम जी ने कहा मुझे प्रिय है, क्योंकि इसी संसार में हमारे ही जैसा शरीर लेकर के वो महात्मा भी है, लेकिन उसके जीने का ढंग, उसके किसी चीज को परसीव करने का जो प्रोसेस है
5: जी।
4: वो हम

0: आई हुई मेघों की घटा से झरते हुए जल बिंदु के समान क्षणभंगुर है। अब देखिए कितनी बड़ी सुंदर उपमा देगी। आयु को कहते हैं कि जैसे मेघों की घटा से झरते हुए जलबिंदु के समान क्षणभंगुर है, और हमारे कई संतों ने भी इसको कहा है कि ये कागज की नाव जैसा है, मतलब ये जीवन जिसको हम बहुत स्थायी समझते हैं कि कब वो पानी पड़ा और डूब गया उसमें,
1: या पानी के
0: बुलबुले की तरह है। लेकिन ये सब हम लोग एक दूसरे को सुनने और सुनाने के लिए कहते हैं, सुनता कोई नहीं है, इसे अमल कोई नहीं करता। तो कहते हैं कि जब इन महात्माओं का संग मिलता है तो उनके संग में, उन महात्माओं के जीवन में इस ज्ञान का दृश्य दिखाई देता है कि इस ज्ञान के साथ कैसे वो जीते हैं।
1: यानी सत्संग बहुत आवश्यक है।
0: हाँ, सत्संग, लेकिन सत्संग उन तत्वदर्शी महात्माओं के संग में होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति सत्संग कर रहा हो जो उन्हीं चीजों से ग्रस्त है जिससे आप ग्रस्त तो हैं, तो वो फिर वो बातचीत का विषय बन के रह जाएगा, वो व्यवहार का विषय नहीं बनेगा। और कोई भी ज्ञान जब तक आपके व्यवहार को परिमार्जित और परिवर्तित नहीं करता, तब तक वो ज्ञान महज एक बोझ है। जिसको कई बार कई संतों ने कहा भी है कि जैसे गधे के ऊपर चारों वेद लाद देने के बाद भी वो गधा ज्ञानी नहीं हो सकता, ऐसे ही ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान को सिर्फ आपने ढो रखा है, ढो रहे हैं, क्योंकि वो परंपरा से चली आ रही है, सदशास्त्रों का ज्ञान है, और उसका कोई आपके जीवन में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म में वो ज्ञान है ही नहीं आपके, तो फिर ऐसे में वो ज्ञान आपके लिए भी बोझ है। बल्कि और तो बात छोड़िए, मैंने तो ये तक देखा है कि कई बार ऐसे लोगों से ज्ञान भी लोगों की अरुचि का कारण बन जाता है जो लोग उस ज्ञान से अपने जीवन को प्रकाशित नहीं कर पाते।
1: बिल्कुल, देखिए ये अंतःकरण, उत्तम अंतःकरण के जो संत हैं
0: जी,
1: उनके सानिध्य की बात हुई, तो इसे मैं इसी तरह से देख पा रही हूँ जैसे हम संगीत के जो लोग हैं
0: जी।
1: कहा जाता है कि संगीत कितना भी सीखा जाए लेकिन गुरु के साथ मंच पर बैठकर जब तक उनके साथ न गाया जाए
0: जी,
1: तो वो बात नहीं बनती है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये वैसा ही है कि ऐसे उत्तम अंतःकरण के जो महात्मा, उनके साथ जीवन के संगीत को गाया जाए, तभी हम उसको सही तरीके से गा सकेंगे।
0: क्योंकि जीवन का संगीत सुर में उनके जीवन से परिलक्षित होता है।
1: जी जी,
0: मुझे एक प्रसंग याद आ गया, समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी के बीच का है वो, कि एक बार क्या हुआ कि शिवाजी को, छात्रपति शिवाजी को, उनको शिक्षा देने के लिए कि राजा को राज्य कैसे करना चाहिए, समर्थ गुरु रामदास उनके ही राज्य में भिक्षाटन करने आए
1: जी,
0: और भिक्षा मांग रहे हैं। तो उनको बड़ा कोफ्त हुआ कि हमारा गुरु जिसका शिष्य इस राज्य का राजा है, वो जाकर के प्रजा के, वो भी ऐसे अंत्यज लोग जहां उनके पास खुद खाने की किल्लत है, उनसे मांग रहे हैं। तो वो इतने क्रोध में आए, उन्होंने कहा गुरुजी को क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि राज्य ही उठा करके अपने गुरुजी को दे दिया। हाँ, कहा कि लीजिए राज्य मैं आपको देता हूँ, ताकि अब आपको मांगने की जरूरत नहीं है इस राज्य में। तो वो समझ गए कि देखो इसका अहंकार जो मैं समझ रहा था वही इसके अंदर
1: है।
0: अब छात्रपति शिवाजी जैसा राजा और गुरु का देखिए प्रेम कैसे, ये जो संतों का संग है, मुक्त पुरुष कैसे शिक्षित करते हैं, दीक्षित करते हैं। तो कहते हैं दे दिया। अब अगले दिन जब वो समझ गए, बीमारी जब गुरु को पकड़ में आ गई, तो गुरु उस बीमारी के इलाज के लिए और अब उनके अब सामने, राज्य के सामने ही जिसे वो देख सके, वहां वो भिक्षा मांगने गए। और उन्होंने अपने परिचारकों को लगा दिया कि आप पता करो ये कहां जा रहे हैं, अब तो राज्य इनको मैंने डोनेट कर दिया। तो देखते हैं भिक्षा मांगते हुए, तो फिर अब उनसे रहा नहीं गया और वो गए, उन्होंने कहा कि आपको मैंने राज्य ही पूरा दान दे दिया, अब इस पूरे राज्य के आप राजा हैं, तो ऐसे में आप भिक्षाटन कर रहे हैं, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो वो हंसने लगे, तो वो कहते हैं कि जब तुमने मुझे राज्य दे दिया तो मैं अपने राज्य में क्या करूं, इसको नियंत्रित करने वाले तुम कौन होते हो तुम कौन होते हो। तो वो कहते हैं कि अगर राजा भिक्षाटन करेगा तो फिर राज्य की प्रजा का क्या होगा, राजकोष का क्या होगा, और जो पड़ोस के जो अन्य राज्य हैं उनसे सुरक्षा कैसे होगी। तो वो हंसते हुए कहे कि ये दायित्व मैं तुम्हें देता हूँ, ये तुम करो। तो उस समय वो उनके आंखों में आंसू आ गया, उन्होंने कहा कि राज्य ये तुम्हारा नहीं है, तुम इसके ट्रस्टी हो, ये दायित्व है इन लोगों की रक्षा का, इन लोगों के भरण पोषण का। राजा का पद इतना निश्चिंत पद नहीं है, आप एक परिवार का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं तो आपको अपने जीवन की परवाह नहीं होती।
1: जी, जी,
0: तो जहां बहुत सारे परिवार की खुशी और दुख का कारण आपको बनना है, वहां कितना बड़ा दायित्व आपके ऊपर है, क्या आप वहां लापरवाह हो सकते हैं, वहां तो और आपको फिक्रमंद होने की आवश्यकता है और सजग होने की जरूरत है। तो इसलिए महात्माओं का संग बहुत आवश्यक है, महात्मा उसका यथार्थ तत्व दर्शन कराते हैं।
1: बिल्कुल जी। अच्छा, एक बात मेरे मन में है कि ये जो शाश्वत शांति की स्थिति होती है मनुष्य के जीवन में, ये किस तरह से प्रतिष्ठित होती है?
0: जी, ये कहते हैं राम जी कि अतः महात्मन जन्म मरण आदि दुखों से रहित देह आदि उपाधियों से शून्य तथा भ्रांति रहित वह महान विश्रांतिदायक परम पद कौन सा है जहां पहुंचने से शोक का सर्वथा अभाव हो जाता है, यानी शोक का सर्वथा अभाव शाश्वत शांति प्रदान करता है। राम जी कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि को इस प्रकार मतलब बना ली है कि वो शाश्वत शांति ऐसा विचार करके हमने सबको त्याग दिया और चिरकाल तक बनी रहने वाली शांति को आज अपने चित्त पर शासन करने के लिए सुदृढ़ अधिकार मुद्रा समर्पित कर दी। तो राम जी कहते हैं कि मेरे चित्त ने संसार के सत्य का ऐसा दर्शन किया कि वो सत्य जान लेने के बाद, जैसे राजा की मुद्रा लग जाने के बाद वो राजाज्ञा हो जाती है, तो ऐसे कहते हैं कि चिरकाल तक बनी रहने वाली शांति को आज से अपने चित्त पर शासन करने के लिए अधिकार मुद्रा समर्पित कर दी है। तो राम जी ने कहा कि वो चीज मैंने समर्पित कर दी है। और इसके लिए कहते हैं कि भोग मेघमाला के बीच में चमकती हुई बिजली के समान चंचल है। राम जी का देखिए उपमा देखिए, वो कहते हैं कि जैसे मेघमाला में चमकती हुई बिजली है, ऐसे ही संसार के जो समस्त भोग हैं वो उस बिजली के समान हैं। और कहते हैं युवा अवस्था के जो मनोरंजन हैं वो जल के वेग के समान चपल हैं, यानी जैसे जल का वेग चपल है ऐसे ही युवा अवस्था के जो मनोरंजन हैं वो चपल हैं। ऐसा विचार करके मैंने अपने चित्त को शाश्वत शांति के लिए उस पर अधिकार मुद्रा लगा दी है जिससे मैं शाश्वत शांति की प्राप्ति कर सकूं। तो ये दृष्टि है, जब तक ये दृष्टि नहीं आएगी तब तक जो है ये चिरकाल तक बनी रहने वाली शांति नहीं आएगी, और जो शोक से मुक्त अवस्था है जो चिरकाल तक आपको मुक्ति प्रदान करे वो स्थिति भी हम आसानी से अर्जित नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम इस दृष्टिकोण के साथ दृश्य को न देखने लगे।
1: अच्छा, भगवान श्री राम की दृष्टि में जो ब्रह्मा जी द्वारा रचित ये जगत है वो कैसा है?
0: जगत को हम लोग कहते हैं कि जगत में एक प्रकार का अनुशासन है, पदार्थिक जगत जो है वो अनुशासन के साथ है, सूर्य का उगना डूबना, धरती का अपने अक्ष पर घूमना। तो राम जी कहते हैं कि प्रभो जो मैंने देखा है इस ब्रह्मा जी के सृष्टि को, ये अव्यवस्थित जगत का आदि अंत कैसे समझ सकूं मैं, ऐसा मुझे ज्ञान दीजिए। क्योंकि ये जो अव्यवस्थित उनको दिखाई दे रही है, ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है ये अव्यवस्थित है, यहाँ कुछ भी व्यवस्थित नहीं। अगर व्यवस्थित होता तो आज देखिए मनुष्य अपने मनोकामना को पूरा करने के लिए पूरी तन्मयता से जीवन भर लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी न उसकी तन्मयता कभी समाप्त हो रही है न उसकी कामना कभी पूरी हो रही है। इसका मतलब एक प्रकार की अव्यवस्था का वो शिकार हो रहा है। तो राम जी कहते हैं कि ये सृष्टि अव्यवस्थित है और इसके पूर्वा पर आदि अंत को मैं समझ सकूं ऐसा मुझे ज्ञान दीजिए, क्योंकि इस संसार में ग्रहण करने योग्य कोई वस्तु नहीं है, सब त्याज्य ही मुझे दिखाई देता है। तो वो तत्व ज्ञान का उपदेश इसलिए चाह रहे हैं कि वो इस संसार के सत्य को जानने के बाद इससे मुक्त रह करके जीवन मुक्त की तरह विचरण कर सके।
1: चूंकि समय बहुत कम रह गया है तो मैं चाहती हूँ कि बहुत संक्षेप में आप दो मेरे प्रश्न है उनका उत्तर दे दें
0: जी,
1: कि दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल का विनाश कैसे होता है, क्या बताया इस ग्रंथ में, और मन की सत्ता किस रूप में है।
0: आपने दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए। तो मैं कहूंगा कि राम जी कहते हैं कि जो जीव है सामान्य तौर पर मनुष्य, वो दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल की इच्छा के लिए कर्म करता है। आप देखें तो हम लोग कर्म करते ही हैं कर्म फल के लिए। राम जी कहते हैं कि कर्म फल की इच्छा से किया जाने वाला कर्म हमेशा बंधनकारी होगा या अज्ञानी का कर्म है ये, जो उसके चित्त को बांधेगा, मन को बांध देगा। तो वो कहते हैं निष्काम भाव से अगर कर्म करना आप जानते हैं, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने पूरी गीता कही अर्जुन से, तो उस निष्काम भाव के साथ कर्म करके आप कर्म फल के आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं, और वो दृष्ट अदृष्ट कर्म फल का जो आसक्ति या अनासक्ति है उस दोनों से आप बाहर आ सकते हैं
1: जी।
0: और जो आपने कहा कि मन की सत्ता किस रूप में है, तो राम जी कहते हैं कि ये जो मन है ये तीनों काल में मन की जो मनन शालिनी सत्ता है, मनन शालिनी का अर्थ होता है विषय चिंतन रूप को अस्तित्व करने वाली सत्ता, यानी विषयों का चिंतन करके उसको अस्तित्व प्रदान करने वाली या उस अस्तित्व से अपने अस्तित्व को सिद्ध करने वाली मन की सत्ता। मन कभी भी देखिए, मन का आधार आप देखें तो स्वयं कोई आधार नहीं है, वो किसी आधार के आधार पर टिका है। इसीलिए हमारे जितने भी संबंध हैं वो परस्पर आधारित हैं, कोई संबंध अकेले नहीं होता। माता पिता पिता पुत्र, माता पुत्र, ऐसे देखें तो सारे संबंध ये द्वंद्वात्मक हैं, जो भगवान कहते हैं कि द्वंद्व समास में हूं। तो वो जानते हैं कि ये बिना दो की सत्ता के ये मन खड़ा नहीं होगा। तो ये मन की जो मननशील प्रकृति है, यही इसकी सत्ता है। अगर इस द्वैत को मिटा दिया जाए तो मन ही शून्य हो जाएगा। मन का जो मननशील या मननशालिनी जो शक्ति सत्ता है, उससे मुक्ति मिलेगी। तो इसीलिए आचार्य शंकर ने कहा कि जो भारतीय भारत का जो ज्ञान परंपरा का जो मूल धरोहर है वो अद्वैत है। जहां पर द्वैत नहीं है, यानी मन के अमन होने की अवस्था, मैंने इसलिए इसी इस ग्रंथ में भी कहा गया है कि मन से मनन करके अमन की स्थिति में आओ। तो मन से ऐसा मनन करें कि इसके मननशील सत्ता का साक्षात्कार हो जाए, ताकि इस साक्षात्कार के बाद आप मन से मुक्त हो सके या मन को शांत कर सके। मन से मुक्त होने का अर्थ ये कदापि नहीं हुआ कि मन की सत्ता मिट जाएगी, उसका अर्थ ये हुआ शांत होना। क्योंकि जब मन मननशील होता है तो वो विषमता के नाते सुख और दुख के चक्र में फंस जाता है और उसी लूप में घूमता रहता है।
1: जी जी, तो शशिकांत जी, बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज की। आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हम आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की श्री राम द्वारा तत्व ज्ञान उपदेश हेतु प्रार्थना विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश पाथम का, और आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: ये मेरा इंडिया।
2: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम।

0: ये इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग है।
1: अब आपके सम्मुख दो निर्गुणी पद सुनाती हूँ। पहला पद गोरखनाथ जी का है। दोनों ही पद ऐसे हैं जिन्हें मालवा

आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भक्ति पदों का गायन। कलाकार थीं कलापिनी कोमकली। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: छेड़ देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है रेडियो रिपोर्ट।
3: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त रेडियो रिपोर्ट का है, आपके साथ में हूँ फराज। रेडियो रिपोर्ट में आज हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन के अंतरंग सभागार में, जहां रविवार को डॉक्टर सोनल मानसिंह द्वारा परिकल्पित और निर्देशित अनुपम नृत्य संरचना कथा सियाराम की प्रस्तुति हुई। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए भारत भवन के अंतरंग सभागार में।

क्या मांगते हैं तुलसीदास जी? धन संपत्ति ऐश्वर्य कोई बड़ी कुर्सी कुछ नहीं, क्या मांग रहे हैं? हे प्रभु मेरे हृदय में आप सदा निवास करो और मेरे मन में जो सारे दुष्प्रभाव हैं दुर्विचार हैं वो खल दल ये दुश्मनों को मेरे अंदर से उनका नाश करो, बस।

कुछ चतुर्विष्टि यज्ञ, यज्ञ के पश्चात तीनों महारानियों के पुत्र हुए। सबसे अग्रज है राम, फिर भरत, और फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न चुड़ैल भाई। श्री राम तो स्वयं नारायण के अवतार हैं, सभी उनके पीछे दौड़ रहे हैं। वायु वेग से ये समाचार फैल गए हैं पूरे अवध में। दौड़ दौड़ के लोग आ रहे हैं चारों दिशाओं से। उत्सव मनाना है, बधाई गीत गाना है, बधाई गीत गा रहे हैं, मंगल बाजे बज रहे हैं।

0: ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। अगली रेडियो रिपोर्ट तक की दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम रेडियो रिपोर्ट। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: वर्ष

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
2: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: ये

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: आजाद हिंद फौज का विश्व इतिहास में विशेष महत्व है। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। किसी भी राष्ट्र में किसी सेनानी या जन नेता द्वारा आजादी के लिए साहसी लोगों की इस तरह की सेना तैयार करने के उदाहरण बिरले ही मिलते हैं। इस फौज की स्थापना भारत से विदेशी शासकों को निकालने की खातिर की गई थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा मलाया और सिंगापुर के भारतीय सैनिकों को एकत्र करके बनाई गई आजाद हिंद फौज का कार्य 4 जून 1943 को सिंगापुर में शुरू हो गया था, जहां स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार भी बनाई गई थी। नेताजी के साथ हजारों भारतीयों ने देश को स्वतंत्र करने का प्रण लिया था। हिंद की सेनाओं ने इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश फौजों से लड़ाई की। इस सेना की कार्यशैली ने लाखों लाख लोगों को प्रेरणा दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आजाद हिंद फौज की बदौलत नए अर्थ मिले थे। आजाद हिंद सरकार को संसार की 3 बड़ी ताकतों जर्मनी, जापान और इटली के साथ 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। मन में नए भारत के निर्माण का सपना लिए आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस भारत की गौरवमयी शख्सियत के रूप में विश्व का अविस्मरणीय इतिहास बन गए।
2: अरे राजू, क्या कर रहा है?
3: समोसे का मसाला बना रहा हूँ काका।
2: अच्छा, नमक मिर्च जरा कम डालना समोसे में। 2 दिन में कम से कम 10 ग्राहक ज्यादा मिर्ची की शिकायत कर चुके हैं।
3: अरे काका, ये मुकेश रोज बातों में उलझा रहता है, मैं क्या करूं? ना तो खुद काम करता है, ना मुझे करने देता है।
2: अरे क्यों बेचारे उस गरीब को दोष देता है? ये क्यों नहीं कहता कि रेडियो के इन ऊल जलूल गानों पर ध्यान ज्यादा रहता है तेरा?
4: राम राम काका।
2: नमस्कार बेटा, नमस्कार।
5: चाय पिलवा दीजिए काका जल्दी से।
2: हाँ बेटा, अभी लगवाता हूँ। अरे राजू, 2 बढ़िया सी चाय बना दे। और बताओ कैसे हो तुम लोग? अरे बहुत दिनों बाद आना हुआ तुम लोगों का।
4: हाँ काका, आजकल थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई में लगे।
2: अरे वो तुम्हारा साथी वही क्यों खड़ा है?
5: अरे वो, उसको तो काका दिन रात कान में हेडफोन लगा के एफएम रेडियो सुनने की आदत लग गई है। पढ़ाई भी करता है तो गाने सुनते सुनते।
4: हाँ काका, और इसलिए हमने उसका नाम राकेश रंजन से राकेश रेडियो रंजन रख दिया है।
2: जिसको देखो रेडियो, जहाँ देखो रेडियो। ये भी कोई बात है भला?
5: बात तो है काका, रेडियो ने तो जैसे आजकल क्रांति ला दी है।
2: अरे रेडियो से तो क्रांति तब आई थी जब आजाद हिंद रेडियो से नेताजी बोलते थे।
4: आजाद हिंद रेडियो?
2: हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चलाया रेडियो, जिस पर उनके जोशीले भाषण प्रसारित होते थे और उनसे जैसे पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ जाती थी।
5: अच्छा,
4: लीजो ये चाय।
2: हाँ लो चाय, आ गई, चाय पियो तुम लोग। मैं जरा भट्टी देख कर आता हूँ।
4: अरे नहीं काका, अब तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी।
5: हाँ काका, आज तो हम नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज के बारे में जानकर रहेंगे।
2: ठीक है ठीक है, जरा अपने तीसरे साथी को भी बुला लो, जरा उसे भी तो पता चले उस रेडियो की महिमा।
5: अरे रंजन आजा, ले चाय ले ले।
4: अरे भाई, ओ राकेश रंजन रेडियो।
2: बात असल में द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है। नेताजी तब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में ही थे। उस समय इंग्लैंड युद्ध की मार झेल रहा था और ऐसे में भारतीय 2 खेमों में बट गए, एक वो जो इंग्लैंड का समर्थन करना चाहते थे और एक वो जो मौका देखकर अंग्रेजों पर वार करना चाहते थे, और नेताजी उन्हीं दूसरे लोगों में से थे।
4: तो क्या नेताजी के इस रवैये पर किसी को कोई एतराज नहीं था?
2: बिल्कुल था, और इसीलिए पार्टी से वो अलग भी हो गए थे। लेकिन ये उनकी लोकप्रियता का ही असर था कि पार्टी से बाहर होने के बावजूद उन्हें उस महत्वपूर्ण बैठक में बुलाया गया।
6: आप लोग समझते क्यों नहीं, यही सही समय है अंग्रेजों पर वार करने का।
7: देखो, तुम स्वतंत्रता प्राप्ति का जो मार्ग अपनाना चाहते हो उसका कोई छोर नहीं है। आजादी का मार्ग अहिंसा से ही प्रशस्त हो सकता है।
6: महानुभाव, क्षमा कीजिए, मैं भी कोई हिंसा का अनुगामी नहीं, लेकिन देश हित के लिए शस्त्र उठाना कोई गलत बात भी नहीं। और फिर
8: क्या सुभाष बाबू, अंग्रेज पहले ही जर्मनों से घिरे हैं, यही ना। पर आप ये क्यों नहीं समझते कि हम हिंदुस्तानी तब भी उनसे लड़कर मुकाबला नहीं कर सकते?
6: क्यों नहीं कर सकते? देखिए ना, इस समय जर्मनी का हिटलर इंग्लैंड पर लगातार हमले कर रहा है। वो एक तरफ से बुरी तरह घिरे हुए हैं और इस दूसरी तरफ से हम उन्हें घेर कर ज्यादा मुसीबत में डाल सकते हैं।
7: नहीं नहीं, ऐसे में तो हम स्वयं ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरा विचार तो यह है कि मुश्किल की इस घड़ी में यदि हम अंग्रेजों का साथ दें, उनका संबल बने, तो हमें अवश्य ही कुछ प्रतिसाद मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है?
6: यदि आप सब ऐसा ही सोचते हैं तब भी मैं आपके साथ नहीं हूं। अब हमारे मार्ग अलग होंगे। आप अपनी तरफ से स्वतंत्रता प्राप्ति की कोशिश करें और मैं अपने मार्ग पर चलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।
9: क्यों भाई, पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष बाबू तो अलग ही पड़ गए।
4: वो अलग पड़ने वालों में नहीं है भाई।
10: मैंने सुना है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया है
4: और अब तो उनसे लोग जुड़ने भी शुरू हो गए हैं।
8: सुना आपने, सुभाष अब खुद ही नेताजी हो गए हैं। उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया है और अब तो उनकी बातों का असर जनता पर भी होने लगा है।
7: लेकिन कितने लोगों पर होगा? मुट्ठी भर लोगों का साथ पाकर भला अंग्रेजों का मुकाबला तो नहीं किया जा सकता। आप तो ये बताइए कि 20 मार्च को होने वाले अधिवेशन की क्या तैयारी है?
8: उस अधिवेशन का सारा कार्य मौलाना अबुल साहब को सौंप दिया गया है। वे ही उस दिन जनता को संबोधित करेंगे और ये बताएंगे कि इस समय अंग्रेजों का साथ देने में ही हमारा हित है।
7: कौन है भाई?
11: जी पत्र है।
7: लाइए।
8: क्या बात है?
7: लिखा है कि हमारे अधिवेशन के ही दिन सुभाष बाबू भी रामगढ़ में जनता को संबोधित करने वाले हैं और उनका यह उद्बोधन समझौता विरोधी होगा। पता नहीं अब क्या होगा।
8: अब हम तो कुछ कर नहीं सकते, उनके अपने विचार हैं, वो जब चाहे व्यक्त करें। चलिए देखते हैं क्या होगा 20 तारीख को।
12: शांत हो जाइए सब लोग। आप लोग बैठ जाइए, कृपया शांति बनाए रखें। सभा को अब हमारे नेताजी संबोधित करेंगे।
6: यहां उपस्थित भारत माता के वीर सैनिकों, आप सब जानते हैं कि हम यहां क्यों इकट्ठा हुए हैं। हम अंग्रेजों का साथ देने की नीति का विरोध करते हैं। अंग्रेजों से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भीख मांगने से स्वाधीनता कभी नहीं मिलेगी। स्वाधीनता प्राप्त करने का एक ही हथियार है और वो है युद्ध। अब यूरोप की हर एक चोट के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की भारत में पकड़ ढीली होती जाएगी। इस समय भारतवासियों को अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जय हिंद,
13: जय हिंद।
4: नेताजी को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समर्थन मिल ही गया?
2: नहीं, उनके साथ कार्यकर्ता तो बहुत जुड़ गए थे पर बाकी कहीं से भी उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा था। ऊपर से उस वक्त उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया।
12: तब तो सारा आंदोलन ठप पड़ गया होगा।
4: और काका, वो रेडियो वाली बात का क्या हुआ?
2: हाँ, बताता हूँ भाई। असल में नेताजी ने तो जेल में ये कहकर भूख हड़ताल शुरू कर दी कि या तो रिहाई दो या मौत। बहुत मनाने पर भी वो नहीं माने। ऐसे में अंग्रेजों ने उन्हें उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया। नेताजी तो नेताजी थे, कड़े पहरे के बावजूद वो अपने घर से ही नहीं बल्कि आश्चर्यजनक रूप से हिंदुस्तान से गायब हो गए और सीधे जर्मनी पहुंचे। और यहीं से शुरू हुआ आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद रेडियो का सफर।
8: सर, आपसे कोई इंडियन मिलने आया है।
13: इंडियन?
8: हाँ, कहता है जरूरी काम है।
13: ठीक है, भेजो।
8: जी
13: आइए आइए, कहिए।
14: जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है, मैं एक भारतीय हूं। अंग्रेजों से अपने देश को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं और इसी संबंध में आपसे कुछ मदद चाहता हूं।
13: मुझसे मदद? कैसी मदद चाहते हैं?
14: देखिए, आपकी जर्मन जेलों में जो भारतीय कैदी हैं, आप उन्हें रिहा कर दीजिए।
13: क्या?
14: जी, मैं उन बंदियों का इस्तेमाल ब्रिटिश सेना के खिलाफ संघर्ष में करूंगा।
13: लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं?
14: आप कृपया मेरी बात को समझें। देखिए, एक तरफ आपके देश की सेना ने अंग्रेजों को पहले से ही घेर रखा है, दूसरी तरफ मैं अगर इन साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला करूं तो अंग्रेज काफी कमजोर हो जाएंगे।
13: तो आपका मतलब है कि ये हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ेंगे?
14: जी बिल्कुल।
13: ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा।
14: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
12: सारे भारतीय बंदियों को आज और अभी रिहा किया जाता है। जाइए, आप लोग जा सकते हैं।
9: अरे, ये अचानक जर्मन सरकार को हम भारतीयों पर इतनी दया कैसे आ गई?
8: कोई बात तो जरूर है। हाँ, एकदम से उन्होंने हमें क्यों रिहा किया जबकि हमारी सजा तो अभी पूरी नहीं हुई?
9: लगता है इसके पीछे अवश्य कोई ना कोई

0: करें, इतने समय बाद आजाद हुए हैं तो आज आराम कर लें, कल सभी एक जगह इकट्ठा होकर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, इतना तो मैंने कल आप सबको बता ही दिया था कि एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको रिहा कराया गया है। मैं अब चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ मिलकर भारत माता को स्वतंत्र कराने में मेरी मदद करें। हम सब मिलकर अंग्रेजों का सामना करेंगे।
1: लेकिन हम तो केवल 30-35 लोग हैं।
2: और हाँ भाई, फिर इतनी दूर जर्मनी से हम भला भारत को कैसे आजाद करा सकते हैं?
0: साथियों, जहां चाह है वहां राह है। देखिए, बात यदि संख्या की ही है तो आपकी ही तरह हमारे हजारों साथी इटली और यूरोप के देशों में बंदी हैं। हम उन्हें भी किसी ना किसी तरह छुड़ा लेंगे। और रही बात दूरी की, तो हौसला होने पर क्या कुछ नहीं किया जा सकता। कहिए, क्या कहते हैं आप लोग, देंगे मेरा साथ? बताइए, क्या आप अपनी मातृभूमि का ऋण अदा नहीं करेंगे? तो ठीक है साथियों, आज से हम सब एक हैं, हमारा उद्देश्य भी एक है। हम सब जब भी मिलेंगे तो नमस्ते नहीं कहेंगे, जय हिंद बोलेंगे। और हमारा नारा होगा, आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद
3: जिंदाबाद,
0: आजाद हिंद
3: जिंदाबाद।
2: और हम सब आपको नेताजी कहेंगे, हमारे नेताजी। नेताजी
3: जिंदाबाद,
2: नेताजी
3: जिंदाबाद,
2: नेताजी
3: जिंदाबाद।
1: पर नेताजी, हमारे संगठन का पहला उद्देश्य तो और साथियों को जोड़ना ही तो होगा ना?
0: नहीं, हमें सबसे पहले अपनी आवाज हिंदुस्तान के हर एक बाशिंदे तक पहुंचानी होगी, ताकि दूसरे हजारों हिंदुस्तानी भाई भी आजादी की राह पर चलने के लिए प्रेरित हो सकें।
1: नेताजी, लेकिन ये सब जर्मनी में रहकर कैसे संभव है?
0: हम अपनी बातों को अपने देश तक पहुंचाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करेंगे।
4: रेडियो का? रेडियो का?
0: हाँ साथियों, हमारे रेडियो का नाम होगा आजाद हिंद रेडियो, जिससे कहीं हमारी हर बात आजादी का एक नया द्वार खोलेगी और सात समंदर पार होते हुए भी हर एक हिंदुस्तानी को झकझोरेगी। आजाद हिंद
3: जिंदाबाद,
0: आजाद हिंद
3: जिंदाबाद।
5: नमस्कार, हम आजाद हिंद रेडियो बर्लिन से बोल रहे हैं और अब आपसे मुखातिब होंगे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्यारे भारतवासियों, अब वो समय आ गया है जब हम सबको मिलकर आवाज बुलंद करनी होगी। देश को आजाद कराने का मार्ग हमें स्वयं बनाना होगा। अब ये समय अनुनय विनय का नहीं, गोरों को मौन की भाषा समझ नहीं आती। हमें अपनी चुप्पी तोड़ना ही होगी और मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराना ही होगा। जय हिंद।
6: अभी आप सुन रहे थे बर्लिन से आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण, जिसमें नेताजी ने बताया कि भारतवासियों के लिए
7: कौन है?
8: अरे भाई, मैं हूँ, मैं बनवारी।
7: अच्छा, तू है? रुक जा, खोलता हूँ।
8: हाँ, क्यों, क्या हुआ? अच्छा, लगता है तू चुपके आजाद हिंद रेडियो सुन रहा था।
7: हाँ भैया, छुपके ही सुनना पड़ता है, कहीं अंग्रेजों ने सुन लिया तो
8: क्या कर लेंगे। अब तो हम ही नहीं, आजाद होने की चाहत में पूरा हिंदुस्तान आज नेताजी का आजाद हिंद रेडियो सुनता है।
7: हाँ, सो तो है। देखना, नेताजी देश को जरूर आजाद करा के रहेंगे।
0: जी नेताजी, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। आप क्या कह रहे थे
2: नेताजी? खबर मिली है कि हमारे प्रसारण का असर हिंदुस्तान में अब दिखने लगा है।
1: जी, एक तरफ जहां आज हिंदुस्तानी हमारी बातों से प्रेरित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज सरकार की नींद उड़ गई है।
0: ये सब तो ठीक है, याद रखें यह हमारे उद्देश्य का पहला चरण है। हमारा प्रसारण नियमित अंतराल पर होता रहेगा। अब हमारा अगला काम है अपने साथ और भी साथियों को जोड़ना, और इसके लिए हमें परदेश में ही दूसरे हिंदुस्तानी भाइयों को ढूंढ निकालना होगा।
2: नेताजी, एक जानकारी के मुताबिक हमारे 10,000 हिंदुस्तानी भाई जर्मनी के ही एनाबर्ग कैदखाने में कैद हैं।
1: जी, और इसी तरह इटली की जेलों में भी कई भारतीय बंदी हैं। यदि ये सब हमारे साथ मिल जाए तो हमारा संगठन बेहद मजबूत हो जाएगा।
0: बहुत अच्छे, तो फिर मैं जल्दी ही इसके लिए इटली और जर्मनी सरकार से बात करता हूँ। आजाद हिंद
3: जिंदाबाद,
0: आजाद हिंद
3: जिंदाबाद।
7: आइए नेताजी, कहिए कैसे आना हुआ?
0: बस फिर एक बार आप लोगों को मदद करनी होगी।
7: किस तरह की मदद चाहते हैं आप?
0: जिस तरह आपने पहले हमारी मदद की थी।
7: तो ये मतलब कोई कैदी बचे नहीं?
0: मैं आपकी जेल में बंद कैदियों की मदद, जैसे आप कहेंगे
5: बर्लिन से आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण है। समस्त हिंदुस्तानियों को यह जानकर हर्ष होगा कि आजाद हिंद फौज का विस्तार हो चुका है। जर्मनी और इटली की जेलों में बंद हजारों भारतीय बंदी अब नेताजी के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाएंगे और भारत को आजादी का सूरज दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।
0: आजाद हिंद फौज में आए नए सैनिकों का स्वागत है। आइए हम सब प्रण लें कि हम अपनी आखिरी सांसों तक मातृभूमि की रक्षा करेंगे। हम अपना जीवन स्वतंत्रता पथ पर न्यौछावर कर देंगे। आप सबका नेता होने के नाते मैं आप सबसे वादा करता हूं कि हम आजाद होकर ही रहेंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद
3: जिंदाबाद!
0: आजाद हिंद
3: जिंदाबाद!
0: नेताजी
3: जिंदाबाद!
0: नेताजी
3: जिंदाबाद!
0: ये सही है कि अब हमारा संगठन काफी बड़ा हो गया है, लेकिन हम सबको यह याद रखना होगा कि बिना तैयारी के इम्तिहान नहीं दिया जाता। युद्ध के पहले हम सबको कठिन प्रशिक्षण के दौर से गुजरना होगा, और मैंने इसके लिए जर्मन सैन्य अधिकारियों से बात भी कर ली है। मैं यह भी जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग सेना में या फिर कहीं दूसरे स्थान में बड़े पदों पर आसीन रहे होंगे, लेकिन यहां हम सबको एक सैनिक की तरह काम करना होगा। हम में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा। हम सबका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आजादी है, और इससे परे हमें कोई सरोकार नहीं।
3: आजाद हिंद जिंदाबाद!
0: आजाद हिंद
3: जिंदाबाद!
0: नेताजी
3: जिंदाबाद!
0: नेताजी
3: जिंदाबाद!
1: नेताजी किस सोच में पड़े? क्या तबीयत ठीक नहीं है आपकी?
0: नहीं नहीं, मैं श्री रास बिहारी बोस के बारे में सोच रहा था।
1: वो कौमी वीर रास बिहारी बोस जी?
0: हाँ, वो पिछले काफी समय से जापान में रहकर हमारी तरह ही भारत माता को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि हम उनसे मिल जाएं, तो हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी।
1: और हम यहाँ जर्मनी में और वो जापान में?
9: नेताजी सुबह पत्र आया था आपके लिए।
0: देखो तो जरा किसका पत्र है।
1: अरे नेताजी, ये उन्हीं राज बिहारी बोस जी का पत्र है जापान से।
0: क्या?
1: हाँ, लिखते हैं कि आप ही की तरह उन्होंने भी जापान में एक बड़ी फौज तैयार की है।
0: अच्छा।
1: और अब बुजुर्गियत के चलते वो इसकी कमान आपको सौंपना चाहते हैं, और इसीलिए आपको जापान बुलाया है।
0: और आगे पढ़ो।
1: आगे लिखते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया के 30 लाख भारतीय तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। आओ और मुझे मुक्ति दो।
0: मैं सोचता हूं यही ठीक भी रहेगा, क्योंकि जापान से भारत की गतिविधियों पर नजर भी आसानी से रखी जा सकती है। हम जल्द से जल्द अब जापान जाएंगे।
1: लेकिन आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? विश्व युद्ध के चलते आपकी यात्रा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।
0: वैसे भी प्राणों के संरक्षण के बाद त्याग ही होता है, तो फिर त्याग से बचाव कैसा? जर्मन सरकार को लिख दो कि हम अपनी जिम्मेदारी पर जापान जाने के लिए तैयार हैं। हमारी यात्रा का प्रबंध जल्द से जल्द किया जाए।
1: जैसा आप कहें।
0: आजाद हिंद फौज की ताकत बढ़ाने और एशिया के देशों का समर्थन हासिल करने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं होगा। और फिर अब मैं मातृभूमि के और भी पास हो जाऊंगा।
10: आज की ताजा खबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे।
11: आज की ताजा खबर नेताजी नहीं रहे। जापान जाते वक्त नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त और
12: अरे ना दिखाना दिखाना इधर। अच्छा विमान।

0: रेडियो
1: नमस्कार, ये आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण है। अब आप सुनिए स्वयं नेताजी को। मैं सुभाष बोल रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश संवाददाता ने संपूर्ण विश्व में प्रचार किया है कि मैं टोक्यो जाते समय एक विमान दुर्घटना में मारा गया हूं। मैं मर जाऊं इस बात की उन्हें खुशी होगी और वे यही चाहते भी हैं, परंतु उनका दुर्भाग्य है कि मैं आज भी जिंदा
2: हूं।
3: मतलब वो खबर अंग्रेजों की एक चाल थी।
4: हाँ भाई हाँ,
5: यानी कि नेताजी सुरक्षित जापान पहुंच गए थे।
4: हाँ, न सिर्फ वो जापान पहुंचे बल्कि उन्होंने जल्द ही वहां पर काम करना शुरू भी कर दिया। एक सम्मेलन में राजबिहारी बोस ने संपूर्ण आंदोलन की बागडोर नेताजी के हाथों में सौंप दी।
6: मित्रों, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए आज तक सेना की कमी थी, आपने वो कमी पूरी कर दी। स्वाधीनता की लड़ाई में सबसे बड़ी लड़ाई आजाद हिंद फौज की ही होगी। हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। दिल्ली चलो का नारा लगाते अब हमें तब तक चलते जाना है जब तक कि हमारा राष्ट्रीय झंडा नई दिल्ली के वॉइसराय भवन पर नहीं फहराने लगे और आजाद हिंद फौज पुराने लाल किले के अंदर विजय परेड ना करे।
7: भारत माता की जय, भारत माता की जय।

0: जल्द ही आजाद हिंद फौज ने ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अरे हाँ, उसके पहले नेताजी की बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही कि उनकी कोशिशों के चलते आजाद हिंद फौज को आजाद हिंद सरकार घोषित कर दिया गया। फौज को सबसे पहले जापान ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के रूप में मान्यता दी। उसके बाद चीन, इटली, आयरलैंड और सिंगापुर ने भी आजाद हिंद सरकार को अपनी मान्यता दी।
1: अरे वाह, मतलब देश की आजादी के पहले सरकार भी बन गई और दूसरे देशों का समर्थन भी हासिल कर लिया।
2: तो फिर क्या हुआ काका?
0: और उसके बाद भी कई लड़ाइयां लड़ी नेताजी ने और उनकी आजाद हिंद फौज ने, और लगातार कोशिश करते रहे आजादी के लिए। पर उसके बाद नेताजी का क्या हुआ, ये तो आज तक भी एक रहस्य ही बना हुआ है।
1: मतलब
0: भाई, कोई कहता है कुछ घटना दुर्घटना हो गई, तो कोई उनके गुमशुदा होने की बात कहता है।
1: सच काका, देश प्रेम की ऐसी मिसाल कहां मिलेगी जहां एक अकेले आदमी ने न सिर्फ अपने दम पर देश की सरहदों को पार किया बल्कि लाखों लोगों को देश प्रेम की राह पर चलने के लिए प्रेरित भी किया।
0: हाँ, तो असली रेडियो का मतलब अब समझ में आ गया होगा, क्यों भाई रेडियो रंजन?
3: चलिए काका, अब हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई।
0: अरे बेटा, तुम जैसे नौजवानों को ये सब बताना तो मेरा फर्ज है।
1: तो फिर काका, अगली बार भी फर्ज निभाने के लिए तैयार रहिएगा, हम जल्दी आएंगे।
0: जरूर आना। नमस्कार, जरूर काका। नमस्कार नमस्कार।
4: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए।
6: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को नाज़ मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा, और स्वास्थ्य चर्चा में आज बात होगी जंक फूड पर। इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता आनंद जी। श्वेता जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: श्वेता जी, जंक फूड इस वक्त बहुत ज्यादा प्रचलन में है। हम आपसे जानना चाहेंगे पहले तो कि जंक फूड किस श्रेणी में आया, इसकी क्या डेफिनेशन है, और फिर इसके प्रभाव पर बात करेंगे।
2: जंक फूड्स ऐसे बोले डेफिनेशन में, ऐसे खाने जिसमें हाई मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, शुगर, ऑयल्स होते हैं। अब जंक फूड के अलावा आजकल एक शब्द और चला, जंक्स फूड। अच्छा। जंक्स फूड का आधार है या मतलब है कि जंक फूड, जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें बहुत हाई मात्रा में शुगर, फैट, ऑयल्स होना। इसके अलावा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स मीन्स ऐसे फूड जिसमें हमने खूब सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए लेकिन साथ में एडिटिव फ्लेवर्स, कलर्स मिलाए। दे आर न्यूट्रिशनली वेरी डिप्राइव्ड। जो आज की बातों में हमें विटामिन, मिनरल्स जो बहुत हेल्प करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, इस जंक फूड्स में ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कैफीन, टी, शुगर्स, एडेड जो भी हमारे फ्लेवर्ड ड्रिंक्स होते हैं, इसे कार्बोनेटेड बोलते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात, जो स्वीटेंड ड्रिंक्स होते हैं, स्वीटेंड बेवरेजेस होते हैं, ये सब जंक फूड की श्रेणी में आते हैं। तो अब जंक फूड एक तरह से कहा जाए तो जंक फूड हो गया है।
1: जंक फूड की श्रेणी में कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी भी आ गई है।
2: केवल ये शुगर, टी वाली जो चीजें, जो पेय के अलावा, हाँ। इवन जो हम फ्रेश जूसेस समझते हैं जो पैकेट में आते हैं, वो भी जंक फूड की श्रेणी में आते हैं क्योंकि उसमें एडिटिव फ्लेवर्स डले हुए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रूट्स के जूसेस होते हैं, हाँ। उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज बहुत बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगे एज कम्पेयर टू ये प्रिजर्व्ड फूड ड्रिंक्स और जूसेस।
1: चूंकि आपने बताया कि प्रिजर्वेटिव उसमें होते हैं, शुगर एडेड होते हैं, तो ये भी जंक उसी श्रेणी में आ गए और नुकसान लगभग उतना ही करते हैं।
2: बिल्कुल। सडन राइज, कोई भी खाना जो सडन सुक्रोज देगा, फ्रक्टोज देगा, वो हमेशा शरीर के लिए हानिकारक रहेगा। तो जितने स्वीटेंड होते हैं इसमें हाई मात्रा में शुगर होती है, तो ये अभी जंक फूड के श्रेणी में आएंगे।
1: क्या जंक फूड की कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू भी होती है, और अगर होती है तो क्या?
2: न्यूट्रिटिव वैल्यूज में कैलोरीज बोले तो इट इज फुल ऑफ हाई कैलोरी डेंस फूड, बट यदि हम विटामिन्स, मिनरल्स बोले तो ऑलमोस्ट निल, दे डोंट हैव एनी विटामिन मिनरल्स। तो न्यूट्रिशनली ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और ये शरीर को हानि पहुंचाते हैं।
1: ऑलमोस्ट जंक फूड तो शायद हर इंसान खा रहा है, तो इससे कैसे बचा जाए, और फिर ये चीज सोसाइटी में जिस तरह से फैली है बुराई, तो उसको कैसे बाहर आया जाए इससे?
2: देखिए, चीटिंग डे सबने सुना है, तो सर्विंग पर वीक हफ्ते का एक, शायद एक मील अलाउ कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। ऑलवेज ऑलवेज वी शुड गो विथ होम बेस्ड फूड। और यदि हम बच्चों के लिए एनफोर्स करें नहीं तुम जंक फूड मत खाओ, तो पहले हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ही घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। बच्चों को यदि हमने आदत डाली है तो हमें काम रहना पड़ेगा, हम एनफोर्स नहीं कर सकते। स्लोली चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, फोर्स फीडिंग नहीं कर सकते, बट विद टाइम बेबी एडजस्ट होता है एंड दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद द होम फूड। बट सबसे पहले हमसे शुरुआत होगी, तो हमें भी हफ्ते का एक, यस, नेग्लिजिबल, वो भी उसमें हमें देखना चाहिए कि एनर्जी जो कंटेंट है, दैट शुड बी लेस देन 10%, द फैट कंटेंट शुड बी लेस देन 10% ऑफ द टोटल एनर्जी इनटेक। तो आइडियली जंक फूड को हमारे से ना शुरुआत होगी, तब बच्चों को हम ना कर पाए। होम बेस्ड फूड बनना चाहिए, घर पे बनना है, पैक्ड फूड मना करना। इवन जितने आपके चिप्स पे होते हैं, ये पाम ऑयल में बनते हैं। पाम ऑयल सबसे घटिया क्वालिटी का ऑयल होता है एज कम्पेयर टू, यदि हम यूएसए के देखें, दे मेक द एवरी चिप्स इन सनफ्लावर ऑयल, और ये हमारे पाम ऑयल जो कई बार यूज होके रिफाइंड कुकिंग हो चुकी होती है शायद, तो ये हमें सबसे जरूरी है। हम लीफलेट्स देखेंगे तो दे आर मेड ऑफ पाम ऑयल, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल एंड विथ लो ग्रेड। एक आपने सुना होगा सैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स आगे लॉन्ग टर्म में हार्ट डिजीजेस कराते हैं, और पाम ऑयल एक तरह का सैचुरेटेड फैट है जिसे सबसे कम मात्रा में करना चाहिए। यही सनफ्लावर देखेंगे, वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है जिसमें हार्ट डिजीज की चांसेस कम रहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ऑयल्स चेंज करके खाना चाहिए। हाँ। पर ये जितने जंक फूड्स हैं, इसकी जो ऑयल कंटेंट है, दे आर ऑफ वेरी बैड क्वालिटी, सो वन शुड अवॉइड।
1: जंक फूड जो लोग खा रहे हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं अगर जंक फूड जो लोग खा रहे हैं उन्हें?
2: जैसे जंक फूड का मैंने बताया हाई कैलोरी डेंस, हाई एनर्जी है, तो जब बच्चा ज्यादा एनर्जी ड्रिंक फूड्स, एनर्जी खाना खाएगा, तो ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा, और यदि बच्चे में मोटापा होगा, आज की लाइफ में आप देख रहे हैं फिजिकल जो एक्टिविटी ऑलमोस्ट ना, सेडेंट्री लाइफ ज़्यादा हो गई है क्योंकि मोबाइल्स हो गए. तो चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी बच्चों में ओबेसिटी की मात्रा बहुत बढ़ गई. ओबेसिटी यानी मोटापा. ओबेसिटी लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ कराना, हाइपरटेंशन कराना, हार्ट डिजीजेस कराना, ये नोन है. इन सबको एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोला जाता है. तो आइडियली इसीलिए हाई कैलोरी डेंस फूड हटाना चाहिए. जो हम खाना खाते हैं ऑलमोस्ट उसमें मान के चलिए कि 10-15% प्रोटीन होना चाहिए, 10-15% फैट होना चाहिए, 55% आपका कैलोरी होना चाहिए यानी एनर्जी होनी चाहिए. तो यदि हम बहुत फैट फूड खाएंगे, जो ये जंक फूड्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ये मोटापा कराएगा. मोटापा से लॉन्ग टर्म में अडल्ट डिजीजेस लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ये बहुत कॉमन है. दूसरी और चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, स्वीटेंड ड्रिंक्स होते हैं. स्वीटेंड ड्रिंक्स डेफिनेटली डेंटल कैरीज यानी दांतों में नुकसान पहुँचाएंगे. जैसे मैंने आपको प्रिजर्वेटिव्स हैं, यदि प्रिजर्वेटिव्स होंगे तो एलर्जीज कराएंगे. इसके साथ में कितना अनहाइजीनिक खाना हम कई बार खाते हैं, जैसे आपने बताया पिस्ता पास्ता, ये सब हम जब ठेले या ऐसे भी कोई जगह से खाएंगे तो हमें स्वाभाविक से दस्त, उल्टी, जीआई इन्फेक्शंस के भी रिस्क रहेंगे. तो ये जंक फूड्स के इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं कि आइडियली यदि हमें अडल्ट लाइफ अच्छी जीनी है तो शुरुआत से हमारी लाइफ में ऐसे इनकलकेट करना चाहिए जिसमें होम बेस्ड फूड खाएं.
1: ठीक है जी. जंक फूड के कुछ अल्टरनेटिव्स बता सकते हैं कि जंक फूड जो कि लोगों में बहुत आदत पड़ती है, अल्टरनेटिव फूड है कोई जंक फूड?
2: यस, यदि हमें जैसे घर पे है छोटा बच्चा है जो 2-3 साल का, तो उपमा है, इडली है, मैश्ड पोटैटोज है, खीर है, साबूदाने की खीर बना सके देख सकते हैं. यदि थोड़ा बच्चा बड़ा है तो वेजिटेबल्स. तो हमें घर के ही फूड में डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स को इनकलकेट करना चाहिए. यदि हम घर पे हलवा बना रहे हैं या हम थोड़ा हैवी फैट ले रहे हैं तो उसे मान के चलिए 10% होना चाहिए टोटल एनर्जी का, पर ये देना है. तो हमें घर के बने खाने जैसे मैंने आपको बताया ये ज़्यादा ऑल्टरनेटिव है रादर देन.
1: आज का जो परिवेश रहन सहन है, माता पिता भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि जिसके कारण शायद वो भी बहुत जंक फूड खा रहे हैं और इसीलिए उनके बच्चे भी खा रहे हैं.
2: बिल्कुल, दोनों वर्किंग पेरेंट्स रहने लग गए, मुश्किल होती है घर पे बनाए कौन. तो ये एक रीजन है, लेकिन फिर भी हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए. तो हमें किसी तरह समय निकाल कर घर का बना खाने की हमें भी हैबिट और बच्चों में भी डालनी पड़ेगी.
1: जो हम घर का खाना खाते हैं उसमें दाल चावल रोटी सब्जी आती है, वो कितनी अच्छी है, कितनी स्वास्थ्य के लिए बेहतर है कंपेयर अगर जंक फूड से करें तो?
2: एक शब्द है कंप्लीट फूड. कंप्लीट फूड यानी कि एक ऐसा फूड जो रेनबो, आपने सुना होगा 7 रंग. तो हमारे खाने में कुछ रंग कैलोरीज के, कुछ रंग फैट, कुछ रंग प्रोटीन के, कुछ विटामिन मिनरल और सबसे ज़रूरी पानी. तो मैं जो आपको बोल रही थी कि बेस्ट ड्रिंक जो आज की दुनिया में प्योर क्लीन वाटर है.
1: ठीक है,
2: जितना पानी हम पिएंगे ये सब जो जूसेस छोड़कर, यदि फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं है तो ये पानी हमारे लिए पूरे हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को निकालता है. तो ये पानी ही सबसे अच्छा पेयजल है जो बेस्ट है इन सब फूड्स को रिप्लेस करता है.
1: घर की बनी हुई पूरी है या हलवा है उसको कैसे देखें, क्या उसको जंक फूड की श्रेणी में रखें या नहीं रखें, या वो कैसी है बच्चों की?
2: बस फैट का ध्यान रखना है. घी हमारे लिए भी जरूरी है, घी इतनी मात्रा में रहे कि 10% रहे जैसा मैंने आपको बोला. तो देना है कम फैट में पर देना है.
1: जैसे आपने जिक्र करा था कि डायबिटीज कहा आपने, कैंसर का भी नाम लिया, तो क्या इस तरह की बीमारियां जो हैं वो जंक फूड के कारण होती हैं?
2: yes.
1: और वो बच्चों में भी होती हैं?
2: अभी रिसर्च स्टडीज, रिसर्च ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन अडल्ट्स में नोन रिजल्ट्स मिल गए हैं कि कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स ने ब्रेस्ट कार्सिनोमा, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमास में एसोसिएशन. अभी बच्चों में स्टडीज नहीं आई, पर क्योंकि हम जब लॉन्ग टर्म में क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, जब हम लंबे समय वही प्रिजर्वेटिव खाएंगे तो हमें कैंसर के रिस्क ज्यादा है. बच्चों में अभी नहीं पाया गया.
1: बहुत कम उम्र के 12-13-14 साल के रेगुलर कॉफ़ी पीने लगे हैं या चाय पी रहे हैं या इस तरह के, तो उनका मसला था कि तो उसकी आदत पड़ गई, अब मैं क्या करूं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
2: जो बच्चे आजकल पढ़ाई में इतना ध्यान दे रहे हैं, जो स्ट्रेस्ड आउट है, नींद भगाने के लिए वो चाहते हैं कि शायद मैं कॉफ़ी पी लूँगा, चाय पी लूँगा, मेरी नींद भाग जाए. ये बिल्कुल उल्टा होता है क्योंकि हम फॉल एस्लिप होंगे क्योंकि हमारी निद्रा तो हमें ज़रूरी है. अब प्रॉब्लम क्या होती है, इस टी कैफीन ये सबसे हार्ट रेट में इफेक्ट करता है, रिदम डिस्टर्बेंसेस कराता है, इवन कुछ बच्चों में डिप्रेशन साइकोसिस भी कराता है. तो यदि हमें कभी ऐसा लग रहा है तो चाय कॉफ़ी से अच्छा हमारा पानी या फ्रेश जूसेस है. सो टी एंड कैफिनेटेड शुगर्स, कॉफ़ी शुड बी अवॉइडेड, स्पेशली इन एडोलेसेंट एज ग्रुप जो 13-14 साल के हैं, जहाँ हमें पता है कि इसके साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा है और कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा. ये हमारी भावना है कि अरे मैं पी लूँगा तो मेरी नींद भागेगी. नींद नहीं भागेगी, 2-3 घंटे में आप फिर स्लीप होने लगोगे. तो नुकसानदेह ज़्यादा है, इससे बेहतर है कि हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड जूसेस और ड्रिंक्स करें, मतलब दैट इज प्योर क्लीन वाटर।
1: आप पेरेंट्स को क्या सलाह देंगी, वो क्या हैबिट्स या किस तरह के तरीके अपनाएं जिससे जंक फूड से निजात मिले?
2: कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगी, जैसे सबसे पहले तो स्टे काम। बच्चा नहीं खा रहा तो ये नहीं कि आप एंग्री हो जाओ, गुस्सा हो जाओ। कभी भी आप फोर्स फीडिंग नहीं करेंगे, नेवर ट्राई। धीरे धीरे समय लगता है, हर चीज की आदत बदलने में समय लगेगा, तो ये ना सोचे कि आज ही किया और अगले दिन से नहीं। धीरे धीरे इंटरमिटेंटली हमें कम करना पड़ेगा। हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमें हेल्दी फूड अराउंड रखना है, हमें वो जंक फूड घर पे रखना ही नहीं है, ताकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट इज, जैसे मैंने आपको पता है, हमें रोल मॉडल बनना, बी अ रोल मॉडल। चिल्ड्रन हमें साइलेंटली ऑब्जर्व करते रहते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, वो साइलेंटली वही देख रहे हैं। तो यदि हम हेल्दी फूड लेंगे तो बच्चे भी ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड। हमेशा एक हेल्दी फूड से स्टार्ट करिए, नहीं कि मल्टीपल एक साथ बॉम्बार्ड कर दे। ऑलवेज स्टार्ट विथ वन हेल्दी फूड एट वन टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चीयरफुल वे में इंट्रोड्यूस किया जाए, एंजॉयमेंट के साथ में। हमेशा एक अपीयरेंस ऑफ टेस्ट जो, और दिखने में थोड़ी कलरफुल, अच्छे से उसको सुंदर बनाया जाए, ताकि वो बच्चे को लगे हाँ ये खाने में उसे इंटरेस्ट तो आए। तो हमें घर पे ही टेस्टी एंड अपीयरेंस टू बी मॉडिफाइड। इंटरमिटेंट स्नैकिंग, अरे बीच में दे रहे हैं, नहीं वो नहीं, अवॉइड करना है। 3 हेल्दी मील डाइट्स होने चाहिए, 2 टाइम के स्नैक्स होने चाहिए। ये एक बेसिक हम रूटीन खाने का रखना चाहिए। एंड ऑलवेज बच्चे को भी आप इन्वॉल्व करो खाना बनवाने में। यदि हमने उसको इन्वॉल्व कर लिया तो उसे लगा हाँ मैंने हेल्प की है, मैंने बनाया। तो शायद ये सब टिप्स जब हम इनकलकेट करें हमारी लाइफ में, तो बच्चे शायद जंक फूड से दूर हो जाएंगे।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, जब बच्चा खुद बनाने जाएगा तो शायद समझ में आएगा कि अगर वो फॉर एग्जांपल लें कि वो पत्ता गोभी को काटते हैं तो कई बार उसमें कोई कीड़ा निकलता है, तो संभवतः वो खुद ही समझ पाएगा कि अगर हम घर बना रहे हैं तो हम उस कीड़े को या सब्जी को अलग कर देते हैं। सामान्यतः बाजार में ऐसा ना होता हो, इस पर क्या कहेंगे?
2: इवन वॉशिंग ऑफ आपकी सब्जियां हो रही कि नहीं वो भी नहीं हमें पता है। इतनी बीमारियां जैसे कि एल्बेंडाजॉल, जो हम आजकल एक डेली वॉर्म के लिए एनुअल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम स्टार्ट की है कि एंटी हेलमिंथिक, यानी बच्चों को जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, हम साल में हर बच्चों को स्कूल से टैबलेट्स मिलती हैं। क्योंकि ये हम मान के चलते हैं कि ये जो सब्जियां नहीं धुली हुई हों, अंदर कीड़े चले गए तो बच्चे को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि बाहर का खाना कितना साफ होगा, यू डोंट नो।
1: आइसक्रीम जंक फूड की श्रेणी में है या नहीं है? अगर है तो क्या उसके नुकसान है?
2: बिल्कुल, आइसक्रीम भी प्रिजर्वेटिव है। अच्छा। क्योंकि वो एक तरह से जो भी प्रिजर्वेटिव है जंक फूड्स में आते हैं। आइसक्रीम आप देखेंगे तो सडन सुक्रोज या सडन फ्रक्टोज रिलीज करते हैं। जो भी खाना तुरंत सुक्रोज या फ्रक्टोज रिलीज करेगा वो हानिकारक होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक शब्द होता है जिसमें हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाले खाने वो बहुत अच्छा, और आइसक्रीम सिंपल कार्बोहाइड्रेट सडन ग्लूकोज रिलीज करती है, हमारे इंसुलिन को बॉम्बार्ड करती है और वो नुकसानदेह। इवन आइसक्रीम यदि हम घर पे बनाए विद फ्लेवरिंग एजेंट्स ना डालें, जैसे हमें लगता है वनीला फ्लेवर एसेंस डालते हैं उसमें भी प्रिजर्वेटिव है, तो हम घर पे ही मतलब बना सके तो बिल्कुल खाना।
1: आपने जोर जो दिया वो घूम फिर के ही आ रहा है कि स्ट्रेस बर्ड्स होते हैं, चाहे वो मीठा हो, नमकीन हो, ठंडा हो, ये सामान्यतः पसंद आते हैं और इन्हीं टेस्ट बर्ड्स के कारण ही आदमी जंक फूड की तरफ जाता है।
2: बिल्कुल।
1: उनके अल्टरनेटिव्स आपने कुछ बताए, हम चाहेंगे कि वो आप अल्टरनेटिव्स और विस्तार से बताएं कि लोगों को एक सीधा संदेश जाए कि ये ना खाओ, ये तो हम कह रहे हैं लेकिन क्या क्या खाओ।
2: आपने एक बहुत अच्छी बात कही टेस्ट बर्ड्स की। क्या होता है, शुरुआत के 6 माह तक सब माए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, यानी बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे है। जैसे ही बच्चा 6 माह का होता है तो उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो माँ के दूध से पूरी नहीं हो सकती है। तो ऐसे समय में एक कॉम्प्लीमेंट्री आहार, यानी बच्चे को अपार्ट फ्रॉम मिल्क कुछ ऐसे खाने देने होंगे जो उसको मिल्क के अलावा जो उसको कैलोरीज दें, उसकी पूर्ति बाकी कर सकें। ऐसे समय में सबसे ज़रूरी होता है कि हम फूड इंट्रोड्यूस करें। जो बच्चे 6 माह के बाद धीरे धीरे, कई माँ होती हैं जो 9-10 महीने तक दूध कर रही हैं और खाना ही नहीं खिलाया, उन्हें लगता है दूध ही पूर्ति कर, ऐसे बच्चे फसी ईटर होता है। जब ये फसी ईटर होता है मतलब ये बच्चे खान, क्योंकि टेस्ट बर्ड डेवलप नहीं हुए जो 6 माह में होने थे, तो ऐसे फसी ईटर्स वाले बच्चे जंक फूड की तरफ, माँ को लगता है लाओ ये तो खा लेगा। और क्या होता है, मैंने आपको बताया ना ये एडिटिव फ्लेवर या एडिक्शन का काम करता है। एक बार बच्चे को लत लग गई तो उसको वो पैकेट पैकेट, वो पैकेट क्यों खा रहा है, क्योंकि वो एडिटिव ड्रग्स जो एडिटिव उसमें डाली जाती है चीज़ें, वो एडिक्शन है। तो हमें यदि शुरू के 6 माह में यदि हमने कॉम्प्लीमेंट्री फूड ढंग से स्टार्ट किया जिसमें बच्चे के टेस्ट बर्ड डेवलप हो गए, चाहे वो मीठा हो गया, नमकीन जैसा आपने बोला, ये हमें शुरुआत में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मैं आपको कुछ एक मतलब कुछ खान पान आप जो मेरे से पूछ रहे हैं, जैसे आपसे मैंने कुछ बताया था कि खिचड़ी हो गई, दलिया, सूजी, खीर हो गई, मैश्ड पोटैटोज हो जाएंगे, बनाना, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, उपमा हो गया, मैश इडली हो गई, दही, ये सब हम यंग बच्चों में स्टार्ट कर सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम जितनी जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चा पूरा खाना उतनी जल्दी या वो प्रेरित रहेगा कि हाँ मुझे अच्छा खाना खाना है। हमने लेट इंट्रोड्यूस किया कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग तो बच्चा मोर ऑफ अ जंक फूड की तरफ डाइवर्ट होता है। थोड़े और बच्चे बड़े हों तो रोटी, दाल, चावल, थाली का पूरा खाना, जैसे मैंने आपको सात रंगों का बताया, वो हमें जोड़ना चाहिए।
1: अगर हम बात करें, अगर दो धड़ों में बात है, जैसा कि हमारा देश बटा हुआ है एक अर्बन और रूरल में, गांव और शहरों में, तो जंक फूड का असर आप कहाँ ज़्यादा देखते हैं और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल, ये सवाल बहुत अच्छा है। रूरल और अर्बन डिविजन्स थे, पर अब ओबेसिटी, जैसा मैंने आपको बताया, जंक फूड ओबेसिटी कराता है ना। रूरल कम्युनिटी जो बच्चे हैं वो भी ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जंक फूड ने अपने पाँव रूरल एरिया में भी नहीं छोड़े, वहाँ भी एनक्रोच कर लिया। तो आप फूड पैकेट्स कहीं पर भी देखोगे, जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं वहाँ भी अवेलेबल हैं। तो बच्चे तो वही हैं, टेस्ट बड्स भी वही हैं। तो यदि हमने वहाँ तक रूरल एरिया भी नहीं छूटा है जहाँ पे हम पैक फूड्स हर जगह मिल रहे हैं, तो बच्चे वहाँ पर भी, हाँ, क्योंकि अर्बन पहले से स्ट्रीमलाइन है, यहाँ ऑनलाइन डिलीवरीज ज़्यादा होती हैं, तो जंक फूड की मात्रा नो डाउट अर्बन में, पर ये नहीं है कि रूरल वाला वंचित है। आज वहाँ पर भी जंक फूड्स की इंसिडेंसेस खूब हैं। एक मैं और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी, जैसे कुछ लोग को लगता है रेडी टू यूज़ फूड्स लाइक जो कॉर्न, मक्के के उसके साथ कॉर्न सिरप डलता है। अच्छा। कॉर्न सिरप जैसे ही डलता है तो वो एक तरह से सुक्रोज और फ्रक्टोज का काम करता है। ब्रेड, ब्रेड क्या होती है, ये भी एक तुरंत रिलीज करती है शुगर्स को। अच्छा। और ब्रेड्स भी बिल्कुल हानिकारक है, ब्रेड्स मैदा से बनती है, जितनी मैदा वाली चीज़ें होंगी वो भी एक तरह से जंक फूड में श्रेणी में आती है। तो इसीलिए रोटी या जो हम गेहूँ से बनाई चीज़ें थी वो बेनिफिटेड रहती है।
1: हिंदुस्तानी जो बाहरी खाना था, मसलन जैसे हमने बात करी कचौरी, समोसे या चाट की, उनके ही नुकसान बताए जाते थे, तो लेकिन अब पैक्ड फूड उनके का अगर कंपैरिजन करें इनका, तो वो क्या कंपैरिजन होगा?
2: वो भी जंक फूड में ही आएंगे जो पैक्ड फूड्स है। हाँ। मैंने आपको जंक्स फूड बताया, जंक्स में इतनी बड़ी कैडर हो गई है जो सडन रिलीज, देखिए समोसा मैदा का बना है, उसके अंदर भरा है आलू, तो एक तरह से वो हानिकारक होगा। उसकी आप कैलोरी डेंसिटी देखोगे बहुत हाई है, और सडन वही मैदा से बना है, तो ये सारी चीज़ें जो सडन रिलीज करती है हमारे इंसुलिन लेवल्स को, वो कहीं ना कहीं जंक फूड्स में आते हैं, तो समोसा भी उसी कैडर में आता है।
1: तो मैडम, चलते चलते आप संदेश क्या देना चाहेंगी जंक फूड खाने वालों को?
2: जंक फूड्स खाने वालों का मेरा एक बहुत बड़ा मैसेज, की होम मैसेज है, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लंबा जीवन जीना चाहते हैं, दीर्घायु रहना चाहते हैं, तो घर का बना खाना खाएं, खूब सारा पानी पिएं, जूसेस पीना हो तो घर के फ्रेश जूसेस निकाल के, फ्रेश फ्रूट्स के निकाल के जूसेस पिएं। और बहुत लगता है नहीं कभी तो खाना है, तो हफ्ते का एक डे अलाउड है, वंस अ वीक।
1: तो डॉक्टर श्वेता आनंद हमारे साथ मौजूद थी और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतने विस्तार से बड़े डेफिनेट शब्दों में मैडम ने अपनी बात कही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी स्टूडियो आने के लिए।
2: थैंक यू।
1: तो आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम की परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और मैं था आपके साथ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। सुनते रहिए FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: दावा है हर आन हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा।

0: कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आज़ाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद रेडियो रूपक।
3: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: एक विदेशी इतिहासकार ने लिखा है कि इस संसार में महापुरुषों को पहचानना आसान है, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि करना कठिन है। स्वामी विवेकानंद के संबंध में ये उक्ति विशेष रूप से सटीक प्रतीत होती है।
1: साधारणतः लोग उन्हें श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक मानस पुत्र, सर्वत्यागी सन्यासी, श्री रामकृष्ण मठ और मिशन के प्रतिष्ठाता तथा हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में ही भक्ति करते और पूजते हैं। यद्यपि यही स्वामी जी का वास्तविक परिचय है, तथापि ये उनके अनन्य अपूर्व व्यक्तित्व का केवल एक श्रेष्ठ अंश मात्र है।
0: धर्म जगत के बाहर भी देश तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो उनका अमूल्य अवदान है, वो सर्वदा हम स्मरण नहीं रख पाते। लेकिन बिना इसे जाने स्वामी जी के अपूर्व व्यक्तित्व के संबंध में ठीक ठीक धारणा बनाना संभव नहीं।
1: वैसे तो स्वामी जी के जीवन काल में ही देश और विदेशों में उनके अनेकों गुणग्रही बने थे, परंतु उनका स्वदेश प्रेम, देशात्म बोध और राष्ट्रीय चेतना उनके भाषण और रचनावली में इतने स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है कि उसके परवर्ती काल के भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों के मानस में उनका प्रभाव उन्होंने अनुप्रेरित किया था।
0: स्वामी जी का देश प्रेम केवल मानसिक भावावेग नहीं था, उन्होंने देश की स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए युवकों को ललकारा। सन 1901 में ढाका के युवकों का एक दल उनसे उपदेश सुनने आया। उन्होंने उनसे कहा,
2: बंकिम चंद्र की पुस्तकों को पढ़ो, आनंद मठ की संतानों के समान देशभक्त बनो। तुम लोगों का प्रधान कर्तव्य जन्मभूमि की सेवा है, सबसे पहले चाहिए राजनैतिक स्वतंत्रता।
1: उन्होंने कहा था कि हमारी गरियसी भारत माता ही हमारी आराध्या देवी है।
0: स्वामी जी के संपूर्ण चिंतन और आदर्श ने 20वीं सदी के कई श्रेष्ठ भारतीयों पर किस प्रकार प्रभाव डाला था, इसे हम प्रायः भूल जाते हैं। आज स्वाधीन हुए अधिक समय बीत चुका है। स्वामी जी के समय में जो बहुत सी राष्ट्रीय समस्याएं थीं, वो आज भी हैं। लेकिन देश की समस्त जनता, विशेषकर तरुण वर्ग, मार्गदर्शन के लिए स्वामी जी को अपने पथ प्रदर्शक के रूप में उस प्रकार स्मरण नहीं करता।
1: स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे नेताओं के सामने स्वामी विवेकानंद आदर्श स्वरूप थे। सभी नेता आंदोलन में कूद पड़े थे। हम उन्हीं नेताओं और परवर्ती काल के विद्वानों और मनीषियों के लेख से स्वामी जी के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे।
0: सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण देव के उद्गार सुनेंगे। उन्होंने उनके प्रिय शिष्य नरेंद्र नाथ यानी कि स्वामी जी के लिए कहा था,
3: नरेन शुद्ध सत्वगुणी है, मैंने देखा है कि वो अखंड के घर के चार में से एक तथा सप्त ऋषियों में से एक है। नरेन ध्यान सिद्ध महापुरुष है, मैंने देखा केशव चंद्र सेन जिस प्रकार एक शक्ति के विकास के द्वारा संसार में विख्यात हुआ है, नरेन के भीतर उस प्रकार की 18 शक्तियां पूर्ण रूप में विद्यमान हैं। नरेन सा एक भी लड़का मुझे दिखाई नहीं पड़ा, जैसा गाने बजाने में, वैसा पढ़ने लिखने में, वैसा ही बातचीत में और फिर धर्म विषय में भी। वो रात भर ध्यान करता है, ध्यान करते करते भोर हो जाती है, होश नहीं रहता। मेरे नरेन में थोड़ी भी कृत्रिमता नहीं है। बजाकर देखो वो ठन ठन शब्द होता है। वो ब्रह्म समाज में भी जाता है, वहां गाता है, परंतु दूसरे ब्राह्मणों की तरह नहीं। वह यथार्थ ब्रह्म ज्ञानी है। ध्यान करने के लिए बैठते ही उसे ज्योति दर्शन होता है। उसे मैं यूं ही प्यार नहीं करता।
1: महात्मा गांधी ने स्वयं स्वीकार किया है कि स्वामी जी की रचनावली पढ़कर उनके स्वदेश प्रेम में हजार गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा था,
4: मैंने उनके द्वारा सृजित साहित्य का आद्योपांत अध्ययन किया है और तत्पश्चात अपने देश के प्रति मुझे जो प्रेम था वो हजार गुना बढ़ गया है। नौजवानों, मैं तुमको आवाहन करता हूँ, जहाँ स्वामी विवेकानंद जिए और मृत्यु को प्राप्त हुए, उस स्थान के कुछ प्रभाव को धारण किए बिना खाली मत चले जाना। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद के लेखों को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं अपने आप को स्थापित करते हैं तथा निर्विरोध रूप से चित्त को आकर्षित करते हैं।
0: राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका न निभाते हुए भी राजनीतिक दृष्टि में बहुत अधिक दूरगामी थे स्वामी जी।
5: भिक्षा के द्वारा देश की स्वतंत्रता अर्जित नहीं की जा सकती, हमें अपनी शक्ति पर निर्भर होना होगा।
1: एक अन्य विषय में भी स्वामी जी ने नेताओं की अपेक्षा अधिकतम ज्ञान और दूरदृष्टि का परिचय दिया था। शिक्षित मध्यवर्ती समुदायों के प्रतिनिधियों को लेकर हुआ था, लेकिन स्वामी जी ने ही सर्वप्रथम घोषणा की कि भारत के पिछड़े वर्ग, मूर्ख, दरिद्र, किसान, श्रमजीवी यानी समग्र जनशक्ति के जागरण के बिना भारत की स्वाधीनता संभव नहीं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से भारत के भविष्य को देखते हुए घोषणा की थी कि ये मछुआरे, बनिए और श्रमिक लोग ही भारत में स्वतंत्रता लाएंगे और भविष्य में प्रमुख पद प्राप्त कर भारत की उन्नति का पथ प्रशस्त करेंगे।
0: सामान्य लोगों की धारणा है कि महात्मा गांधी ने सर्व प्रमुख राष्ट्र जागरण तथा मुक्ति संग्राम में निम्नतर श्रेणी के जन साधारण की सहभागिता पर जोर दिया था, किंतु उसके बहुत पहले ही विवेकानंद ने इसकी घोषणा कर दी थी। रोमा रोला ने लिखा है,
6: गांधी जी ने स्वतः यह स्वीकार किया है कि विवेकानंद की रचनाओं से उन्होंने प्रचुर सहायता पाई है तथा भारत को और भी चाहने तथा और अच्छी तरह समझने में उनसे सहायता मिली है।
7: उनकी जड़ें अतीत में थीं तथा भारत के सम्मान के प्रति उनमें पर्याप्त अभिमान था, तथापि जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु विवेकानंद आधुनिक थे तथा अतीत एवं वर्तमान भारत के बीच एक सेतु थे। स्वामी जी ने जो कुछ लिखा और कहा वो कल्याणकारी है, हितकारी है और वो आने वाले लंबे समय तक हमें प्रभावित करता रहेगा। साधारण शब्द के अर्थ में वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, तथापि मेरे विचार से वे महान संस्थापकों में से एक थे। आंशिक या संपूर्ण रूप से भारत के आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वालों ने स्वामी जी से प्रेरणा प्राप्त की थी। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी विवेकानंद ने भारत को संपूर्ण शक्ति से प्रभावित किया है। स्वामी विवेकानंद द्वारा विवेक, उत्साह एवं अग्नि का जो उद्गम प्रवाहित किया गया है, मैं समझता हूं युवा पीढ़ी उससे संपूर्ण लाभ प्राप्त करेगी।
0: श्री अरविंद ने एक लेख में लिखा था,
4: यदि किसी को विराट हृदय सम्राट के रूप में स्वीकार किया जा सकता है तो वे एकमात्र विवेकानंद हैं, नर केसरी विवेकानंद। हमने देखा है कि उनका प्रभाव आज भी प्रबल रूप से कार्य कर रहा है। उसी प्रभाव ने भारत की आत्मा को आंदोलित किया है।
1: श्री अरविंद आगे लिखते हैं,
4: स्वामी विवेकानंद की अमेरिका यात्रा और उनके द्वारा उत्तरोत्तर कार्यों ने भारत के लिए लंदन में आयोजित अधिक प्रभावशाली कार्य किया। हमारी अनुभूति है कि उनका प्रभाव अलौकिक रूप से अब भी कार्यरत है और हम कहते हैं, स्वामी विवेकानंद को देखो जो अब भी अपनी भारत माँ और भारत माँ की संतति की आत्मा में विद्यमान है।
0: कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर पर भी स्वामी जी का प्रभाव देखा जा सकता है। उन्होंने लिखा है,
8: वैराग्य साधना द्वारा मुक्ति मुझे स्वीकार नहीं, मैं मनुष्यों के बीच बचे रहना चाहता हूँ।
1: रविंद्रनाथ जी की अपमानित नामक कविता में भी इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण मिलता है। कवि कहते हैं,
8: हे मेरे भाग्यहीन देशवासी, तुमने जिनका अपमान किया है उसी प्रकार तुम्हें भी समान रूप से अपमानित होना होगा। जिनको तुमने मानव अधिकार से वंचित किया है उन्हीं से तुम्हें उसका प्रतिदान मिलेगा। छुआछूत के नाम पर अपने से दूर रखकर तुमने मनुष्य के भीतर अवस्थित ईश्वर से घृणा की है। उन्हें दूर धकेल कर मानो अपनी ही शक्ति की अवहेलना कर निर्वासित किया है।
0: टैगोर ने रोमा रोला को लिखा था,
8: विवेकानंद में सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं। राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि तुम में से प्रत्येक के अंदर ईश्वर की शक्ति है। दीन व दुखी के अंदर का ईश्वर तुमसे अपनी सेवा की अपेक्षा करता है। उनके इस संदेश ने नवयुवकों के हृदय को पूर्ण व्यापकता के साथ झकझोरा है। यही कारण है कि ये संदेश राष्ट्र की सेवा में विविध प्रकारों एवं बलिदान की विभिन्न शक्लों के रूप में फलदायी सिद्ध हुआ है।
0: रोमा रोला ने भी उल्लेख किया है कि रविंद्रनाथ पर स्वामी जी का कितना प्रभाव था।
6: रविंद्रनाथ में ब्रह्म समाज तथा विवेकानंद के नव वेदांतवाद की मानो दो धाराएं मिलकर एक ही हो गई थी। विवेकानंद के समान एक अग्रदूत का प्रभाव उनके मानसिक विकास में काफी हद तक प्रभावी था, ये निसंदेह है।

0: नेताजी ने लिखा था,
1: स्वामी विवेकानंद की बहुमुखी प्रतिभा का वर्णन करना कठिन है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी कृतियों एवं व्याख्यानों से हमारे समय के छात्रों को जितना प्रभावित किया है, वो देश के किसी भी नेता को काफी पीछे छोड़ गया है। स्वामी जी ने उनकी आशाओं एवं आकांक्षाओं को पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त किया है। स्वामी जी का अध्ययन स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस देव जी के साथ किए बिना उन्हें यथोचित रूप से समझना कठिन है। वर्तमान स्वतंत्रता आंदोलन की आधारशिला अपने उद्भव के लिए स्वामी जी के संदेह की ऋणी है। यदि भारत को स्वतंत्र होना है तो ये मात्र हिंदुवाद अथवा इस्लाम की एकल भूमि नहीं हो सकता। राष्ट्रवादी आदर्शों से अभिप्रेरित विभिन्न धार्मिक समुदायों की संगठित भूमि होना चाहिए। भारतवासियों को धर्मों की समता के उपदेश को पूर्ण हार्दिकता से स्वीकार करना चाहिए। यही रामकृष्ण विवेकानंद का उपदेश है। स्वामी जी ने पूर्व और पश्चिम को, धर्म और विज्ञान को, अतीत एवं वर्तमान को समन्वित किया है और इसलिए वे महान हैं। हमारे देशवासियों ने उनकी शिक्षाओं से अभूतपूर्व आत्मसम्मान, आत्मविश्वास एवं आत्मअभिव्यक्ति को प्राप्त किया है।
0: भगिनी निवेदिता ने स्वामी जी को बहुत करीब से देखा था। वे निवेदिता के गुरु थे। उन्होंने स्वामी जी की देशभक्ति के बारे में लिखा है,
2: स्वामी जी एक ओर धर्म की उदात्त अभिव्यक्ति थे, वहीं दूसरी ओर वे सबसे महान देशभक्तों में से थे। वे उस समय जन्मे जब राष्ट्रीय विखंडन प्रारंभ हो चुका था, पर वे नवीनता से भयभीत नहीं थे। वे उस समय हुए जब लोग अपनी विरासत को त्याग रहे थे, परंतु वे पुरातन के अनन्य उपासक बने रहे। उनमें राष्ट्र के लक्ष्य ने परिपूर्णता प्राप्त की। राष्ट्र का लक्ष्य कहता है कि राष्ट्रीय चेतना की प्रत्येक नवीन लहर का प्रारंभ सदैव धर्माचार्यों द्वारा होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति में हो सकता है कि हमें भविष्य का समूचा वेद प्राप्त हो। वैसे यह बात हमें अवश्य याद रखनी चाहिए कि विवेकानंद के धार्मिक महत्व को आंकने का समय अभी नहीं आया है। धर्म एक जीवित बीज है और वे अभी अभी इस बीज को बोकर गए हैं। अभी उनकी फसल पकी नहीं है, परंतु यह एक सत्य है कि देशभक्त अपनी मृत्यु से यथार्थ रूप में देश का हो जाता है। आज जब गुरुदेव अपने शिष्यों के बीच से महाप्रयाण कर चुके हैं, आज जब शमशान घाट में अनेक आलोचकों की आवाजें बंद है, स्वाधीनता की घोषणा करने वाली वो महान ध्वनि अप्रतिहत रूप से गूंज रही है और सारा राष्ट्र एक स्वर में उसका उत्तर दे रहा है।
0: स्वामी विवेकानंद की दूसरी शिष्या भगिनी क्रिस्टिन ने लिखा है,
3: काल के दीर्घ अंतराल के बाद बीच बीच में एक व्यक्ति हमारे इस भूमंडल पर आ पहुंचता है, जो असंदिग्ध रूप से किसी अन्य लोक से आया हुआ है। एक पर्यटक होता है जो इस दुखपूर्ण संसार में भी अपने उस सुदूरवर्ती लोक की महिमा, शक्ति तथा दीप्ति का कुछ अंश ले आता है। इस मृत्यु लोक का न होकर भी वो मनुष्यों के बीच विचरता है। वो मानो एक तीर्थयात्री है, एक अजनबी जो केवल एक रात ही यहां ठहरता है। वह अपने आसपास के लोगों के जीवन से स्वयं को संबद्ध पाता है, उनके हर्ष विषाद का भागीदारी बनता है, उनके साथ सुखी और दुखी भी होता है, परंतु इन सब का बीच वह यह कभी नहीं भूलता कि वह कौन है।

0: कहां से आया है और उनके यहां आने का उद्देश्य क्या है। अपने दिव्यत्व की बात उसे कभी विस्मृत नहीं होती, उसे सदैव स्मरण रहता है कि वह महान तेजोमय तथा महिमामय आत्मा है। ऐसे एक मनुष्य को मैंने देखा है, उनकी वाणी सुनी है और उनके प्रति मैंने अपनी श्रद्धा निवेदित की है। उन्हीं के चरणों में झुककर मैंने अपने आत्मा का अनुराग अर्पित किया।
1: हमारे आचार्य विनोबा भावे भी स्वामी जी के प्रभाव से नहीं बचे। उन्होंने लिखा है,
2: स्वामी विवेकानंद ने हमें मात्र अपने पौरुष के प्रति जागरूक नहीं बनाया, वरन हमारे दोषों और कमजोरियों को भी रेखांकित किया। उन्होंने हमें सिखाया सभी में एक ही आत्मा का वास है। यदि तुम इससे आश्वस्त हो तो सभी को भाई मानना एवं मानवता की सेवा करना। अतः उन्होंने हमें दरिद्र नारायण की सेवा में स्वयं को समर्पित करने का आह्वान किया। ईश्वर भूखों और असंख्य अनाथों में दृष्टिगोचर है एवं उनकी प्रगति एवं नैतिक उत्थान के लिए ईश्वर ने उनकी संरचना की है। स्वामी विवेकानंद द्वारा दरिद्र नारायण शब्द गढ़ा गया एवं गांधी जी द्वारा उसे जन जन तक पहुंचाया गया।
0: फ्रांसीसी चिंतक रोमारोला की बातें बार बार याद आती हैं। वे भारत प्रेमी थे और स्वामी विवेकानंद के प्रबल अनुगामी थे। उन्होंने लिखा है,
3: संपूर्ण शरीर में बिजली के झटके की भांति रोमांच पाए बिना मैं उनके इन वचनों को, जो इतने वर्ष पूर्व लिखी गई पुस्तकों के पृष्ठों पर बिखरे पड़े हैं, स्पर्श नहीं कर सकता। और कैसे झोंके एवं तूफान उत्पन्न हुए होंगे जब वे ज्वलंत शब्द उस नायक के अधरों से प्रस्फुटित हुए होंगे।
1: दूसरों की तरह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी स्वामी जी के संबंध में लिखा है,
4: स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और भारत की रक्षा की। उनके अवतरित न होने पर हम अपना धर्म खो चुके होते और अपनी स्वतंत्रता को पाने में असफल हो गए होते। हम इसलिए हर प्रकार से स्वामी विवेकानंद के ऋणी हैं। उनका साहस, उनका विश्वास, उनकी विद्वता हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी, ताकि जो विरासत हमें उनसे मिली है हम उसे सुरक्षित रख सकें। कुछ ही दिनों पूर्व के इतिहास पर नजर डालने पर ज्ञात होता है कि हम स्वामी विवेकानंद के कितने ऋणी हैं। उन्होंने भारत की यथार्थ महत्ता को हमारे समक्ष रख कर हमारी आंखें खोल दी। उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकीकरण किया। हम अंधकार में थे, उन्होंने हमें राह दिखाई। वे भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वाधीनता के जनक है।
0: हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने भी स्वामी जी की बातों को ही दोहराया है। वे अपनी पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स में लिखते हैं,
5: स्वामी जी ने अपने विख्यात स्वदेश मंत्र में जिस परानुकरण, परानुवाद पर निर्भरता और दासलोम मनोवृत्ति के लिए भारतीयों को फटकारा है, ये नकारात्मक शिक्षा या कुशिक्षा का ही परिणाम है। स्वामी जी शिक्षित भारतवासियों में देश प्रेम और राष्ट्रीयता का अभाव देख मर्माहत हुए थे। हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं? हमारे पास अधिकांश तौर पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हैं। संभवतः हम लोगों के मनोभाव में ही कोई समस्या है। सहयोग केवल सीमाबद्ध घेरे में ही सफल होने में सक्षम है। लगता है इस धारणा को हम उतार कर फेंक नहीं पा रहे हैं। एक जड़ता ने हमारे राष्ट्र की मानसिकता को जकड़ रखा है। वैश्वीकरण, अर्थनैतिक संकट, मुद्रास्फीति, आंचलिक विद्रोह, राजनैतिक अस्थिरता इत्यादि बाहरी समस्याओं से अधिक मैं हमारी राष्ट्रीय मानस को जकड़ी हुई इस जड़ता, इस पराजित मनोवृत्ति को लेकर अधिक चिंतित हूँ।
0: विदेशी पत्रकार मार्क टली, जो एक भारत प्रेमी है, स्वामी जी के विचारों से प्रभावित हुए थे। उन्होंने भी स्वामी जी की बातों को दोहराया है। उन्होंने भारत को बहुत करीब से देखा और महसूस किया,
6: जैसा कि स्वामी जी ने कहा था, भारतवर्ष आज भी उपनिवेश युग के प्रभाव तथा उत्तराधिकार से मुक्त नहीं हो सका है। इसलिए भारतवर्ष के उच्च वर्ग में भारतीय सभ्यता का तथा भारतीयत्व के प्रति अश्रद्धा का भाव झलकता है। इसके अलावा उसमें एक और प्रवृत्ति है, वो है भारत की समस्याओं का समाधान भारत में न खोजकर भारतवर्ष के बाहर खोजना।
1: अंत में इसी के समतुल्य भारत के संबंध में स्वामी जी के दृष्टिकोण का भगिनी निवेदिता द्वारा किया गया विश्लेषण याद किया जा सकता है।
7: स्वामी जी सोचते थे कि उनके स्वदेश की आशा, विश्वास उसके भीतर ही है, बाहरी किसी देश में नहीं। वे कभी किसी पर निर्भर नहीं रहे। देश के नवीन होने का अर्थ है अभ्यंतरीन शक्ति से देश

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: वायदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: कुछ यादें उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जो लौट के घर न आए।
3: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: ये मेरा इंडिया।
3: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए। रात्रि के 10 बज चुके हैं। आज का प्रसारण बस यहीं तक, आज का सफर हम यहीं समाप्त करते हैं। कल प्रातः 7 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपनी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती को दीजिए अनुमति। जय हिंद।